मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:48 हो चुके हैं। इसके साथ ही आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन, आलेख एवं वाचन स्वर सुरेंद्र झा का है।
1: स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मनक निवास होइ छ। स्वस्थ मनक हेतु शारीरिक स्वस्थता आवश्यक कहल गेल छैक। जँ एक कहबी के सत्य मानल जाए तखन तो मनक अपेक्षा शरीरक श्रेष्ठता स्वीकार करय पड़त। शरीर प्रधान आ मन गण भ जायत तखन तो मन के शरीरक अनुगामी मानय पड़त। कैक दृष्टिया ई धारणा जे जेहन शारीरिक स्थिति तेहन मानसिक स्थिति आब भ्र

0: आमक सिद्ध भ चुकल अछि। देखल जाइ छै जे शारीरिक दृष्टियां स्वस्थ आ सबल व्यक्ति मानसिक विकार रुग्णता वा अशक्तता सँ पीड़ित होइ छथि आ शारीरिक दृष्टियां निर्बल व्यक्ति सबल स्वस्थ सुंदर मनक स्वामी होइ छथि। मानसिक स्वास्थ्य ककरा कहब? शरीर शास्त्री कहता जे जँ मस्तिष्क विभिन्न परिस्थिति में सामान्य ढंगक प्रतिक्रिया करे तो एहन मस्तिष्क वाला व्यक्ति के कहल जते जे ओ मानसिक रूप में स्वस्थ अछि। जथा जँ मन शीत उष्णता क्लेश आदिक अनुभव करे, परिस्थितिक अनुसार मन में भय घृणा द्वेष दया प्रेम आदि संवेगक स्फुरण होइक मन बाह्य जगतक प्रति सामान्य प्रतिक्रिया व्यक्त करे तो ई स्वस्थ मनक परिचायक भेल। किंतु विचारणीय जे कि यह पर्याप्त अछि? हमरा बुझना स्वस्थ मनक अर्थ अछि जे मन में कोनो विकार नहीं हो, ककरो प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं हो, छल छद्म सँ मन सर्वथा रहित हो, सभक प्रति स्नेह सद्भाव सँ भरल हो, मन में सदैव नीक उच्च विचारक उद्भव भेल करे। जँ एहि अंग्रेजी लोकोक्ति आ शरीर शास्त्री लोकनिक मत के मानल जाए तो संसार में अहन शारीरिक दृष्टियां स्वस्थ क्या गोटे भेटता है जिनका मन में सदैव सद्विचारे उत्पन्न होइत होइन, कखनो कोनो दुर्विचार नहीं उत्पन्न होइत होइन, जे कखनो ककरो अपकार नहीं करैत होइत, सदिखन सबक उपकारे करैत होइत। उत्तर प्रायशः नकारात्मके है। तखन तो ई सिद्ध भेल जे यद्यपि मनक निवास शरीरे में होइ छै तथापि ओकर अपन भिन्न सत्ता छैक। एहिसँ इहो सिद्ध होइ छै जे मन शरीरक अनुगामी नहि होइ छै अपितु मन ओ सत्ता थिक जे शरीर पर शासन करै छै। मने प्रधान थिक शरीर गौण। आब तो शरीर शास्त्रियो लोकनि स्वीकार करै छथि जे शारीरिक स्वास्थ्यक लेल मानसिक स्वास्थ्य अपेक्षित अछि। जँ मन तनाव मुक्त शांत स्थिर आ प्रसन्न अछि तो शरीरो स्वस्थ रहत सबल रहत। जँ मन विकारग्रस्त अछि तो शरीर निश्चित रूपे रुग्ण भ जायत। चिकित्सक लोकनि कहब छनि जे रक्तचाप हृदय रोग मधुमेह आ कैंसर सदृश व्याधिक कारण मानसिक तनाव अछि। भारतीय तत्वदर्शी लोकनि एहि सत्य सँ परिचित छलाह। सांख्य दर्शन त्रिविध तापक मूल विकृत मनस्थिति के मानै छै। संसारक आनो आनो देश में प्राचीन कालहि सँ शारीरिक व्याधिक उपचार मानसिक उपचार द्वारा करबाक प्रथा छल। अरस्तु अपन ग्रंथ साइकोड्रामा में लिखै छथि जे दुखद स्थिति सँ त्राण पेबाक एकमात्र उपाय अछि जे मन के शुद्ध आ पवित्र बनाओल जाए। ईसा सँ 500 वर्ष पूर्व ग्रीसक एपिडोरसक मंदिर में शारीरिक व्याधि सँ ग्रस्त रोगीक मानसिक उपचार कयल जाय छलेक आ एहि सँ रोगी स्वस्थ भ जाय छलेक। कहबाक आशय ई जे मने प्रधान थिक आ विवेकी मनुष्य मन में सद्विचार आनी मन आ शरीर दुनू के स्वस्थ रखै छथि।
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे चिंतन, और लीजिए अपने प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं किसान भाइयों के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा।
2: आजुक कृषि चर्चा के संग हम शांतनु कुमार मिश्र। किसान भाई दुधारू पशु के देखभाल के लेल संतुलित आहार स्वच्छ पानी साफ सुथरा हवादार आवास प्रदान करबा के चाही। गर्मी में ठंडा पानी से नहलेबा के चाही और ऐसा नियमित टीकाकरण सेहो करेबा के चाही। संगे पूर्व में देल गेल देखभाल के अलावा गर्मी के मौसम में लू लगवा के संभावना बेसी रहत अछि तो दुधारू पशु के देखभाल में ओकरा पर्याप्त छायादार स्थान पर रखबा के चाही, सीधा धूप से बचेबा के चाही, बेर बेर पानी पिलेबा के चाही, ओकर बाद शरीर पर पानी के छिड़काव करी, हरा चारा के मात्रा बढ़ेबा के चाही, संगे चारा में नमक के मात्रा मिला कर दी। ऐसा पशु के हीट स्ट्रेस लू लगवा के संभावना कम बनत अछि। गर्मी में पशु के देखभाल के किछ प्रमुख उपाय अछि जना कि आवास सुरक्षा

0: सुरक्षा किसान भाई दुधारू पशु में के शेड में राखी जता हवा के निक आवागमन हुआ शेड के खिड़की दरवाजा टाट के बोरी लटका कर पानी छिड़कबा के चाही। दुधारू पशु के दोपहरिया के धूप 10 बजे से 4 बजे धर बाहर चराव नहीं लो जबा के चाही क्योंकि इस समय में धूप तेज होते आ पशु के लू लगवा के संभावना रहते रौद लगला से दूध में कमी आब जाते यदि दूध में कमी आब जाए तो तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह से ओकरा उपचार में लग जेबा के चाही। पानी आ पोषण सही मात्रा में देबा के चाही। किसान भाई पशु के पास हमेशा ठंडा आ स्वच्छ पानी उपलब्ध राखी हरा चारा बेसी से बेसी क्योंकि दुधारू पशु के लेल सुपाच्य होते दाना के संग थोड़े नमक अवश्य मिलाबी ऐसे गाय भैंस के प्यास लागत आ पाचन निक रहते किसान भाई ठंडक बनाकर रखवा के चाही। जाय स्थान पर दुधारू पशु रह रहल वही स्थान के ठंडा बनाकर रखवा के लेल दिन में 3 से 4 बेर ठंडा पानी से नहलेबा के चाही या स्प्रे करो वाला मशीन से दुधारू पशु के नहेबा के चाही। भैंस के तालाब या पोखर में बैठ के सुविधा देवा के चाही। स्वस्थ पशु के देखभाल पशु के शरीर पर जू चीचड़ या किलनी हुआ पर पशु चिकित्सक के सलाह से दवाई जना कि E2 साबुन के प्रयोग करवा के चाही। हीट स्ट्रोक के लक्षण में दुधारू पशु के हाफब लार टपकैब दिखाब तुरंत डॉक्टर से देखलेबा के चाही। दुधारू पशु के नहाव के लेल सुबह या शाम के समय सबसे निक होत है। पशु के ताजा आ गुणवत्तापूर्ण हवा के लेल पंखा या कूलर के व्यवस्था करी ऐसा पशु ठंडक महसूस करते है। संगे दुधारू पशु के दूध में कमी आब जाए तो तुरंत पशु चिकित्सक से देखेबा के चाही। किसान भाई गर्मी में पशु जना कि गाय भेल भैंस भेल बकरी भेल आन जे दुधारू पशु है ओकर देखभाल के लेल ओकरा सीधा धूप से बचेबा के लेल छायादार हवादार स्थान पर रखबा के चाही। सांझ के समय में बाहर बनबा के चाही संगे जखन रौद रहे तो ओकरा घर क देबा के चाही। पर्याप्त ठंडा पानी दिन में 3 से 4 बेर पिलेबा के चाही। ओकर शरीर पर पानी के छिड़काव करित रहबा के चाही। हरा चारा के मात्रा बढ़ेबा के चाही संगे चारा में नमक के मात्रा मिला कर दी ऐसा पशु के हीट स्ट्रोक लू से बचाएल जा सकते है। किसान भाई यदि पशु स्वस्थ रहत तखने नीक से दूध दे सकते है। एहि लेल हमरा लोकन के चाही जे पशु के देखभाल पर विशेष से विशेष ध्यान देवा के चाही। पशु निमून धन होत है एकरा यदि बढ़िया से देखभाल कैल जाए तो ई बेसी दिन धरि दुधारू पशु दूध दैत है। संगे सर्दी आ गर्मी दुनू मौसम में एकरा से बचा कर रखबा के लेल आवश्यक होत है जे ठंड में घर गर्म हेबा के चाही आ गर्मी के मौसम में ठंड ठंडा हेबा के चाही। ई दुनू पर ध्यान देब बेसी आवश्यक भ जात। एहि के संग आजुक कृषि चर्चा संपन्न भेल। शांतनु कुमार मिश्र के आज्ञा देल जाओ। नमस्कार
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों के लिए हमारा प्रातःकालीन दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा। इसके अंतर्गत आप जानकारी ले रहे थे गर्मी में दुधारू पशुओं की देखभाल, जानकारी दे रहे थे शांतनु कुमार मिश्र। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र

0: परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिल वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचार के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों में। श्रोताओं, लीजिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं स्वास्थ्य चर्चा। इसके अंतर्गत अभी आप जानकारी प्राप्त करेंगे शिशु आहार। जानकारी दे रही हैं डॉक्टर नंदिनी सिन्हा।
3: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदिनी सिन्हा, जो यहाँ की एक जानी मानी डाइटिशियन हैं। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। हमारी बातचीत का विषय होगा शिशु आहार। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि जो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका उस समय आहार क्या होना चाहिए?
4: सबसे पहले तो जब बच्चा जन्म लेता है उसका आहार, तो जैसे सबको पता है कि माँ का दूध ही सबसे सर्वोच्च होता है उसके लिए,

0: जब बच्चा जन्म लेता है उसके आधे घंटे बाद ही हम बोलते हैं कि माँ का दूध देना चाहिए। 6 महीने तक माँ के दूध पे ही बच्चे रहे तो सबसे बेस्ट है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ को दूध नहीं आ पाता या दूध कम आता है, तो उस समय पे फिर हम लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप बच्चे को गाय का दूध आप दे सकते हैं।
1: माँ का दूध सबसे अच्छा आहार होता है, लेकिन यदि किसी माँ के स्तन में दूध यदि नहीं है तो उस परिस्थिति में कोई पाउडर मिल्क वगैरह कोई ले सकता है?
0: हाँ, पाउडर मिल्क वगैरह ले सकता है। अच्छा। लेकिन आप एक बार अगर अपने मन से कुछ ना करें, डॉक्टर से एक बार पूछ के ही करें। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप अगर पाउडर मिल्क भी नहीं तो फिर गाय का जो दूध है वो सबसे बेस्ट है।
1: अच्छा, तो गाय का दूध सीधा रहना चाहिए, उसमें कुछ पानी मिला
0: नहीं, उसमें हम कुछ पानी मिला के देंगे, बिना मलाई वाला देंगे। अच्छा। और उसको एक बार छान के भी देंगे, ऐसा नहीं है कि बस दूध गर्म किया और दे दिया, उसको हम लोग छाने तो सबसे बेस्ट है।
1: सीधे देने से वो गरिष्ठ हो सकता है ना?
0: हाँ, गरिष्ठ हो सकता है, पचाने में बच्चे को परेशानी होगी इसलिए।
1: अच्छा, पानी के बारे में भी डॉक्टर साहब बहुत कंफ्यूजन होता है कि छोटे बच्चों को पहले कुछ दिनों तक पानी अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका?
0: नहीं, पानी अवॉइड करने को ही बोलते हैं हम लोग, छोटे बच्चों को हम लोग कभी नहीं बोलते हैं कि आप उनको पानी दें। पानी अगर आपको बच्चे को देना भी है तो आफ्टर 5 मंथ्स आप स्टार्ट करें, जब बच्चा 5 महीने का हो जाए उसके बाद आप पानी दें तो बेस्ट है।
1: 5 महीने तक बिल्कुल ना पानी
0: नहीं, आप मिल्क पे ही रखें बच्चे को। अच्छा। मिल्क पे ही रखें या मदर मिल्क पे है तो सबसे अच्छा, अगर नहीं भी है तो पानी नहीं देते। लेकिन हाँ, अगर कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हमको देना पड़ता है तब उस टाइम पे हम बच्चे को जो है पानी दे सकते हैं, लेकिन कुछ भी उसमें ऐड ना करें। जो बहुत लोग कुछ कुछ चीजें ऐड कर देते हैं, मिश्री विश्री ये वो, उन चीजों को हम ऐड ना करें तो अच्छा है।
1: जैसे मान लीजिए बहुत गर्मी है, बच्चा परेशान है, तो उस केस में पानी देने में कोई हर्ज नहीं है?
0: उस चीज में हर्ज नहीं है, लेकिन हम बहुत मतलब कम क्वांटिटी में हम पानी दें, ज्यादा उस तरीके से नहीं कि हम बस पानी पिलाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना।
1: पानी तो नहीं, नल का पानी
0: नहीं, नल का पानी नहीं, वो हाँ फिल्टर्ड वाटर हो, बॉइल्ड वाटर हो तो वो अच्छा है।
1: ठीक है, तो 6 महीने तक तो आपने कहा कि माँ का दूध जो है सर्वोत्तम आहार है, उसके बाद आहार में क्या परिवर्तन आ सकता है?
0: उसके बाद जो हम बोलते हैं कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो हम एक फूड स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फूड उसको बोला जाता है, कि जो कि फूड बहुत जरूरी है, क्योंकि बस माँ के दूध से बच्चे का जो एक डेवलपमेंट है वो 6 महीने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे को जो है फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट चाहिए। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमको बच्चे को अनाज जो है, जो घर का जो खाना है, सिंपल सी बात है, उसको हमको स्टार्ट करना है। लेकिन बस ये देखना है कि हमको उसको कैसे शुरू करना है। बच्चा 6 महीने का है, हम उसको लिक्विड से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि दाल का पानी है, राइस वाटर है, सूप आप दे सकते हैं सारी सब्जियों को छान के। पालक का सूप बच्चे को दे तो बेटर है, क्योंकि आयरन की नीड बहुत ज्यादा होती है, विटामिन सी की नीड बहुत ज्यादा होती है उस टाइम पे। तो आप सब सब्जियों को सूप बना के छान के पतला करके 6 महीने में आप ऐसे बच्चे को दे सकते हैं। फ्रूट जूस भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये स्टार्ट हम बहुत कम करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे 1/2 to 1 teaspoon।
1: अच्छा,
0: इस तरीके से स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं है कि बच्चा ले रहा है तो हम इसको दिए जा रहे हैं, इस तरीके से नहीं करना है। स्टार्ट विद मतलब स्मॉल फीडिंग मींस 1/2 teaspoon to 1 teaspoon।
1: यानी कि जो हम लोग जो चावल खाते हैं जो काफी बड़े बड़े दाने होते हैं, या दाल गाढ़ी दाल खाते हैं, उस तरह का उसको
0: नहीं,
1: भोजन
0: बिल्कुल नहीं। स्टार्ट विद क्लियर लिक्विड डाइट, उसके बाद हम फुल लिक्विड डाइट पे आएंगे। जब 7वें महीने में बच्चा आएगा तो हम बच्चे को दूध वाली जो आइटम है, जैसे खीर का आइटम है, सूजी का पॉरिज हो गया बिल्कुल पतला बना के, कस्टर्ड हो गया बिल्कुल पतला बना के, ये खिचड़ी बिल्कुल पतली सी खिचड़ी, या दाल आप उस टाइम दाल का सूप थोड़ा सा, इस तरीके से हम बच्चे को स्टार्ट कर सकते हैं।
1: तो कितने दिनों के बाद हम उसको जो है पूर्ण आहार दे सकते हैं?
0: पूर्ण आहार जो सॉलिड फूड देंगे वो हम बच्चे को 1 साल के बाद देंगे, 12 महीने। नहीं तो जो 8 से 9 महीने का जो है वो भी पूरा सेमी सॉलिड डाइट पे रहेगा, बच्चे का खिचड़ी हो गया, मैस पोटैटो हो गया, सब्जियां मिक्स करके दें आप। 10-11 महीने का है तो दलिया है, ओट्स है, आप ये चीजें आप बच्चे को दे सकते हैं। रोटी जो है पूरा उबाल के, बॉइल करके, पीस के वैसे दे सकते हैं।
1: अच्छा, 1 साल हो जाने के बाद आपने कहा कि उसको जो है भोजन जो है स्टार्ट कर सकते हैं, परंतु कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो 1 साल तक के शिशु को नहीं दिया जाना चाहिए?
0: सबसे पहला चीज तो ये है कि जो हैवी स्पाइसी फूड दी है, ज्यादा फ्राइड आइटम नहीं बच्चे को देना है, ज्यादा स्पाइसी आइटम बच्चे को नहीं देना है, ज्यादा फ्लेवर आइटम नहीं देना है, जैसे बिस्किट वगैरह अपना दें तो बेस्ट है। जो हमने बताया कि एक नॉर्मल घर का अनाज, सब्जी, फल और दूध पे बच्चे को रखना है हमको 1 साल तक।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को शिशु आहार के बारे में अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। अब हम अपने इस प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम चिंतन, क्षमा करेंगे, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आरंभ में आप सुनेंगे मातृभूमि को समर्पित समवेत स्वर में देशगान, उसके पश्चात आप सुनेंगे विभिन्न कलाकारों द्वारा गाए गए कुछ

ये है नया हिंदुस्तान। जी हां श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वर में मातृभूमि को समर्पित देशगान, और लीजिए अब सुनिए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए अब सुनिए रामचरितमानस गान। आज के अंक में मुख्य स्वर सुरेश वाडकर का है।
1: एपिसोड नंबर 375 375।

भगवान शिव पार्वती को काकभुशुंड की सिद्धत्व प्राप्ति की कथा सुना रहे हैं। सुमेरु पर्वत के और उत्तर में एक अत्यंत सुंदर और मनोहारी नील पर्वत है। इस पावन स्थल पर काकभुशुंडी हरि का भजन, जप और यज्ञ तथा मानस पूजा करते हैं और वहां पहुंचे श्रद्धालु पशु पक्षियों को हरि कथा सुनाते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। आज के अंक में मुख्य स्वर सुरेश वाडकर का था। श्रोताओं, अब आप जानकारी प्राप्त करेंगे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में।

0: रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों के रंग। लोक गीतों का विशेष कार्यक्रम लोक माधुरी आप सुनेंगे रात्रि 10:00। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है। मैथिली कार्यक्रम सिंगर हर आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। लेंगे आनंद फिल्मी गीतों का प्रसारण समय होगा संध्या 7:52 पर। खेती गृहस्थी आप सुनेंगे संध्या 7:00। 6:30 पर आप सुनेंगे गाम घर। मैथिली संवाद आप सुनेंगे संध्या 6:25 पर। संध्या 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। फिल्म संगीत आप सुनेंगे संध्या 5:40 पर। संध्या 5:00 आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवानी तरुण कुसुम। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है और आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में। अभी आप सुन रहे थे आज दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार है। अपराह्न 3:00 आप सुनेंगे सुगम संगीत। लेंगे आनंद फिल्मी गीतों का प्रसारण समय होगा 2:30 पर। 1:15 पर भी आप सुनेंगे फिल्म संगीत। देशभक्ति गीत आप सुनेंगे 1:10 पर। महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा नारी संसार, प्रसारण समय होगा 2:12 पर। लेंगे आनंद फिल्मी गीतों का 2:12 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे दिन के 11:30 पर। 11:00 आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। 10:30 पर आप सुनेंगे लोकगीत। लेंगे आनंद फिल्मी गीतों का दिन के 10:00 और अभी से थोड़ी देर बाद अर्थात 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे समाचार।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन अस्य वर्षस्य राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG इत्यस्याः आयोजने प्रश्नपत्रम् अनधिकृतरीत्या बहिरागमन विषयमालक्ष्य प्रकरणं पञ्जीकृतम्। शिक्षा मन्त्रालयस्य उच्च शिक्षा विभागात् प्राप्तस्य लिखित परिवादस्य आधारे संस्थया एतत् प्रकरणं पञ्जीकृतम्। संस्थया संसूचितं यत् विशेषाणां केन्द्रीयावेषणाभिकरणदलानां निर्माणं जातं तथा प्रकरणम् अन्वेषणार्थं विभिन्नेषु स्थानेषु एतानि दलानि प्रेषितानि सन्ति। एषा नीट परीक्षा अस्य मासस्य तृतीयदिनाङ्के राष्ट्रिय परीक्षण संस्थया आयोजिता आसीत्। नवदिल्ल्यां नीट परीक्षायाः निरस्तीकरण विषये वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् राष्ट्रिय परीक्षण संस्थायाः महानिदेशकः अभिषेक सिंहः अवदत् यत् राष्ट्रिय परीक्षण संस्था छात्रेभ्यः पुनः परीक्षाम् आयोजयिष्यति, सा च परीक्षा निष्पक्षरूपेण भविष्यति, पुनः परीक्षायै अतिरिक्त शुल्कं न भविष्यति इति।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवीके सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच कराने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के

0: निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसिलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान दौरे पर रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अल्पकालीन अनुमानों और चौथी तिमाही के अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि 7 जून को अवकाश होने पर अंतिम अनुमान पिछले कार्य वर्ष पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में है। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचार। समाचार के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने प्रातःकालीन प्रसारण में। तो लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला।
1: नमस्कार मिथिला के आजुक अंक में हम छी मणिकांत झा
0: और साथ में मैं हूँ कल्याण कुमार झा।
1: कल्याण जी, कार्यक्रमक शुभारंभ हम सब करै छी सुविचार से।
0: सुविचार से पहले मणिकांत जी, आपको भी मेरी ओर से नमस्कार। और सुविचार आज का हमने लिया है बिहारी के दोहे से, कनक कनक ते सौ गुने मादकता अधिकाय, वा पाए बौड़ाए नर वा।

0: आए बौर आए नर या पाए बौर आए, अर्थात यहां पर कनक दो बार है और दोनों ही जगह इसका अर्थ अलग अलग है। एक जगह कनक के अर्थात धतूरा और एक दूसरी जगह कनक अर्थात सोना, दोनों ही को नशा से परिपूरित बताया है कवि ने। कहा है कि दोनों नशे से परिपूर्ण है, एक को खा करके लोग बौरा जाते हैं यानी विक्षिप्त हो जाते हैं और दूसरे को पा करके विक्षिप्त हो जाते हैं। यानी क्या करना चाहिए, क्या उचित क्या अनुचित, अपने आप में मशगूल हो जाते हैं, उचित अनुचित का कोई ध्यान नहीं रहता है।
1: तो इच्छल सुविचार और सुविचार के बाद इतिहासक पन्ना उनटबी छी। इतिहासक पन्ना में अजका तिथि अर्थात 13 मई क्या विशेष रूप से जानल जाइए ते पर एक नज़र घुमा लीजिए।
0: 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण किए। 1995 में चेल्सी स्मिथ मिस यूनिवर्स 1995 बनी। 1999 की बात करें तो जापानी छात्र के नागुई विश्व की 7 सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र अर्थात 25 वर्षीय पर्वतारोही बना। 2000 ईस्वी में मिस इंडिया लारा दत्ता ने साइप्रस में संपन्न प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। 2010 में भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता इला भट्ट को 2010 के निवानो शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और एक नज़र कुछ महान हस्तियों के आज के दिन जन्म पर, यानी 13 मई के दिन 1901 में मथुरा प्रसाद मिश्र वैद्य जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका जन्म हुआ था। 1905 में फखरुद्दीन अली अहमद जो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे उनका जन्म हुआ था। 1916 में सच्चिदानंद राउत राय उड़िया साहित्य के साहित्यकार थे जाने माने, उनका जन्म हुआ था। 1917 की बात करें तो असित सेन जो हिंदी फिल्मों के हास्य अभिनेता जाने माने अभिनेता थे उनका जन्म हुआ था। और 1918 में टी बाला सरस्वती ये भारतनाट्यम की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना थी इनका जन्म हुआ था। और हल्की दृष्टि निधन पर तो 1950 में रामकृष्ण देवदत्त भंडारकर ये प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। 1951 में निधन हुआ हसरत मोहानी का जो प्रसिद्ध शायर थे। और 2011 में बादल सरकार ये प्रसिद्ध अभिनेता व नाटककार थे। तो ये था आज का इतिहास।
1: और इतिहास के बाद अब हम सब आबि जाए वर्तमान में। वर्तमान में नमस्कार मिथिला कार्यक्रम में एखन आब बेर भ रहल है मैथिली सुगम संगीत के। तो आओ सुनी सुंदर सनक ई गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जय जय गणपति, जय गणनायक। कुंज बिहारी मिश्र के स्वर में ये गणेश वंदना सुन रहे थे विज्ञापन से पूर्व। और श्रोताओं, अब समय हो चला है सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित हालचाल का। हालचाल लेकर उपस्थित हैं मणिकांत झा।
2: नमस्कार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA 3 मई के आयोजित भेल मेडिकल प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय पात्रता आ प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 के रद्द कऽ दोबारा करेबाक फैसला लेलक है। एहि बीच केंद्र सरकार एहि परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होवा के आरोप के जांच CBI के सौंप देलक है, जाहि पर जांच एजेंसी मंगल के FIR दर्ज कऽ लेलक। मामला में NTA काल्हि कहलक जे ओकरा भेटल इनपुट आ जांच एजेंसी द्वारा सजिया कयल गेल जानकारी के देखैत वर्तमान परीक्षा प्रक्रिया के जारी राखब उचित नहि होयत। जांच में NTA CBI के पूरा सहयोग करबाक आ सब जरूरी सामग्री रिकॉर्ड आ सहायता उपलब्ध करबाक बात कहलक है। बिजली बिल भुगतान के नाम पर साइबर फ्रॉड के समस्या एकटा गंभीर चुनौती भऽ गेल है। एकरा सँ समाधान के लेल बिजली विभाग के अधिकारी आ कर्मी के सजग रहब आवश्यक अछि। दरभंगा शहर में भूमिगत बिजली सप्लाई आ उच्च क्षमता के पावर ग्रिड के स्थापना के लेल बिजली विभाग के अभियंता मिशन मोड में काज शुरू करैत सुदूर देहाती क्षेत्र तक 24 घंटा में बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित हर हाल में कैल जाए, ई बात दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलन है। बिहार के जेल के कैदी पेट्रोल पंप चलौता, गृह कारा विभाग एकरा लकर विस्तृत प्रारूप तैयार कलक है। जेल प्रशासन के खाली पड़ल जमीन पर पेट्रोल पंप स्थापित कैल जाएत। एहि पेट्रोल पंप पर संचालन के दायित्व ओहि जेल में रह वाला कैदी लोकन के देल जतन। गृह विभाग प्रस्ताव के वित्त विभाग के मंजूरी के लेल पठा दलक है। एकरा बाद विधि विभाग सँ सेहो मंजूरी लेल जाएत। राज्य मंत्रिपरिषद के मंजूरी के बाद ई लागू भ जाएत। राज्य सरकार के मंजूरी के बाद गृह विभाग पेट्रोलियम कंपनी के संग पेट्रोल पंप संचालन के लेल समझौता करत। राज्य में 126 ग्रामीण हाट बनेबाक रास्ता आब साफ भ गेल है। जिला में 126 स्थल सबके चिन्हित कऽ कऽ ग्रामीण विकास विभाग के जानकारी दऽ देल गेल है। ग्रामीण हाट में किसान के उपज के संग संग जीविका दीदी उत्पाद के बिक्री सेहो होयत। एहि में किसान के आमदनी बढ़त आ स्थानीय स्तर पर रोजी रोजगार के अवसर सृजित कयल जायत। जिलावार बनौवला ग्रामीण हाट में बांका में 16, भागलपुर में 5, दरभंगा में 4, गया में 1, गोपालगंज में 7, कटिहार में 13, खगड़िया में 9, मधुबनी में 14, मुजफ्फरपुर में 10, पश्चिम चंपारण में 17, सारण में 11, शिवहर में 1, सुपौल में 16 आ वैशाली में 2 ग्रामीण हाट निर्माण के बाद कहल गया। कृषि मंत्री विजय सिन्हा कहलन है जे किसान पहचान

अपन पत्र फार्मर आईडी से खाद बीया ऋण आ फसल सहायता योजना के लाभ बिना अर्चन के उनका बैंक खाता में पहुंच जाएत। मौसम पूर्वानुमान में कहल गया है जे आई के मौसम शुष्क रहत, अंधर बिहारक संग दरभंगा आ लग पास में हल्लुक वर्षा हेबाक संभावना सेहो व्यक्त कयल गेल। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहबाक संभावना है, जहन कि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रह सकैए। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार के अध्यक्षता में काल्हि CMR अधिप्राप्ति एवं जिला में LPG गैस आपूर्ति आदि के लऽ कऽ समीक्षा बैसार कयल गेल। एहि मे अभिप्राप्त काज के प्रगति, गोदामक उपलब्धता आ जिला में LPG गैस के सुचारू आपूर्तिक विस्तृत समीक्षा कयल गेल। हालचाल अपने आकाशवाणी दरभंगा सँ सुनि रहल छी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हाल चाल में पुनः अपने स्वागत है। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड में रामभद्रपुर से हायाघाट हुए थलवारा तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के लकर काल मेगा ब्लॉक लेल गेल। मेगा ब्लॉक में दुपहरिया 12 बजे से दोपहर 4 बजे तक काज होत रहल। मेगा ब्लॉक के कारण नव दिल्ली से दरभंगा पहुँचा वाला बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट 12:566 अपन निर्धारित समय 9:15 से 2 घंटा विलम्ब से दरभंगा पहुँचा। केवटिक विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा काल्हि उच्च विद्यालय पैगम्बरपुर के प्रबंध समिति के बैसार में भाग लेलन। मध्य ओ विद्यालय के शैक्षणिक व्यवस्था संसाधन के उपलब्धता आ छात्रक प्रगति गहन समीक्षा कयलन। विधायक शिक्षा के स्तर के और नीक बनेबाक पर जोर दलन। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के दिस काल फ्लोरेंस नाइटेंगल के जन्मदिन पर जन्मदिन के धूमधाम से मनाओल गेल। एहि अवसर पर अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्र, उपाधीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार आदि अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित छलाह। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में काल्हि ग्रीष्म ऋतु के में स्वास्थ्य देखभाल विषय पर ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। मुख्य वक्ता बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के प्रोफेसर कुसुम कुमारी ग्रीष्म ऋतु में स्वास्थ्य बनौने रखब पर व्यवहारिक उपाय सब की है तैसे पर विस्तार से चर्चा कयलन। ओम्हर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संगीत एवं नाट्य विभाग में काल्हि विषय विशेषज्ञ रंगकर्मी हेमेंद्र कुमार लाभ भारतेंदु के नाट्य यात्रा विषय पर व्याख्यान दलन। ओ भारतेंदु के हिंदी रंगमंच के निर्माता जनौलन आ हुनक जीवन के बारे में छात्र लोकन के विस्तृत जानकारी दलन। मैथिली के प्रखर सर्वोदयी विचारक आ मूर्धन्य साहित्यकार स्वर्गीय उग्रनारायण मिश्र कनक के दशम पुण्यतिथि काल मनाओल गेल। एहि अवसर पर रामबाग स्थित खादी भंडार परिसर में कविगोष्ठी के आयोजन कयल गेल। कनक जी के पुत्र विनोद कुमार मिश्र अतिथि लोकन के स्वागत कयलनि। कार्यक्रमक अध्यक्षता साहित्यकार विनोद कुमार झा आ संचालन प्रसिद्ध मैथिली कवि हरिश्चंद्र हरित कऽ रहल छलाह। एहि अवसर पर प्रसिद्ध युवा कवि प्रिय रंजन, विजय शंकर झा, प्रतिभा स्मृति मुन्नी

मधु, भास्कर नाथ ठाकुर, ऋतु प्रज्ञा, डॉली कुमारी, अपर्णा मिश्र, वंदना कुमारी, विनोद कुमार हसौरा, अतुल कुमार मिश्र, मुकेश कुमार सोनू, संत कुमार मंडल, वाचस्पति ठाकुर आदि कवि लोकन भाग लेलन। छोट छोट अणु से जुड़ के नम्हर अणु के निर्माण में पॉलीमर बनत है, में बिना आधुनिक मानव जीवन असंभव है। स्मार्ट पॉलीमर से हमर भविष्य उज्जवल हैत, किएक एकर दोबारा प्रयोग से होत प्रदूषण नहीं पसारबाक बायोडिग्रेडेबल से हो एकरा कहल गेल है। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग में कल पॉलीमर कल आज और कल विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य वक्ता MR महिला कॉलेज के पूर्व रसायन शास्त्र विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विवेकानंद झा ई गप कहलन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय क्षेत्रांतर्गत विभिन्न प्रखंड में स्थापित 30 नव डिग्री कॉलेज के एक एक शिक्षक के पोस्टिंग तत्काल कह दिल गया है। विभिन्न कॉलेज में सौ शिक्षक के स्थानांतरण करें उनका नव डिग्री कॉलेज में तैनात कैल गया है, ताकि आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा आरंभ भ सके। एक से संबंधित अधिसूचना कल जारी कह दिल गया। एक संग आजुक हालचाल सम्पन्न भेल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओ, विज्ञापन से पूर्व आप अवगत हो रहे थे सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित हालचाल से। हालचाल लेकर उपस्थित थे मणिकांत झा और कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं। मणिकांत जी, जीवन में शांति की अभिलाषा हर एक व्यक्ति के मन में होती है और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जीवन में शांति, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक तंदुरुस्ती और समग्र खुशी के लिए अनिवार्य है। यह तनाव कम करती है, विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाती है और रचनात्मकता को भी बढ़ावा देती है। अर्थात सच्चे सुख और प्रगति के लिए बाहरी सुख सुविधाओं से अधिक आंतरिक शांति अर्थात मन की शांति आवश्यक है, जो रिश्तों में सामंजस्य भी लाती है।
2: शांति जो छे से एकटा अभूतपूर्व चीज छे।
1: बिल्कुल।
2: और जीवन में अगर अहाँ के शांति आए तो सब कुछ हुए। अगर अहाँ अशांत छी तो कतबो धन संपत्ति टाका सुख समृद्धि अहाँ लग में उपलब्ध है, ओकर उपयोग अहाँ नहीं कऽ पाबि सकै छी। किए तऽ मोने जहन अशांत रहत अहाँ के तहन अहाँ के लेल सबटा व्यर्थ हो लागत।
1: बिल्कुल।
2: तैं जीवन में शांति के आनब जे छै से एकटा महत्वपूर्ण कार्य छै और ओकरा लेल तन्मयता बहुत आवश्यक छै, धैर्य बहुत आवश्यक छै, आत्मविश्वास बहुत आवश्यक छै, दीर्घ संकल्प बहुत आवश्यक छै।
1: बिल्कुल।
2: ई सब मूल मंत्र छै जीवन में शांति अनबाक लेल। और अगर अहाँ जीवन में शांति अनै छी तो अपने तो निश्चिंत रहते छी, अपने तो आनंदपूर्वक रहते छी, अहाँ के जे अगल बगल लोक छथि ओहो आनंदपूर्वक रहै छथि, अहाँ पर जे आश्रित लोक छथि ओहो आनंदपूर्वक रहै छथि, अहाँ से संबंधित जे लोक छथि ओहो आनंदपूर्वक रहै छथि। नहि अगर अहीं के हलचल अइ, अहीं के मन में जे छै से शांति नहि अइ, अहीं अगर विकृत भऽ गेल छी तऽ ओ जे छै से ओ असरि मात्र अहीं टा पर नहि पड़ैए, ओ असरि अगल बगल के लोक पर, आंगन घर के लोक पर, पड़ोसिया पर, समाज पर सेहो ओकर
1: माने प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
2: बिल्कुल। हाँ, ते जीवन में शांति आनब आ शांति में रहब बहुत आवश्यक छे, एकरा सर्वोपरि मानल जाए।
1: आपने तो बहुत कुछ शांति के लिए कहा ही है और भी बहुत सारी बातें हैं।

मन की शांति, जो जीवन की शांति की बात करते हैं तो मन की पवित्रता और संतोष से भी शांति आती है। संतोष अगर मन में है तो हम थोड़े में भी शांत और संतुष्ट रह सकते हैं, और संतुष्टि में ही शांति है। संतोष या संतुष्टि कहें, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और पर्यायवाची भी कह सकते हैं हिसाब से। तो संतुष्टि अगर मन में है तो शांति है, शांति है तो सुख है, और सुख है तो प्रगति है। वास्तविक प्रगति तभी है जब हमारे मन में शांति आती है।

0: संतुष्टि अगर मन में है तो शांति है, शांति है तो सुख है, और सुख है तो प्रगति है। वास्तविक प्रगति तभी है जब हमारे मन में शांति आती है। आपने कहा ही है मणिकांत जी कि कितने ही पैसे हो, धन संपत्ति हो, बीघे के बीघे जमीन हो, वगैरह वगैरह, जो भी सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी अगर मन में शांति नहीं है तो उनके रहने ना रहने का कोई अभिप्राय ही नहीं रह जाता है। अब प्रश्न उठता है कि शांति प्राप्ति के लिए मन को पवित्र कैसे करें। तो आंतरिक विकास से मन पवित्र होता है, यानी अंतर का जो विकास है। बाह्य विकास तो हम करते हैं, लेकिन अंदर के विकास यानी मन के विकासों को हम मन के विकास के पीछे बहुत कम ध्यान देते हैं। और मन का विकास होता है सकारात्मक विचारों से, और सकारात्मक विचारों से ही शांति का माहौल बनता है। जबकि मन में अगर नकारात्मकता हो तो अशांति पैदा करती है। मन को पवित्र रखने में प्रकृति और संगीत की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल, तो
1: जी वातावरण में रह तेहन मनस्थिति अहाँ के बनल रहत।
0: बिल्कुल,
1: तो प्रकृति से जुड़ के अगर अहाँ रहब तो प्रकृति के हर एक चीज मन के संतृप्त करवा के लेल जे छै से बहुत विविधता पूर्वक बनाओल गेल छै। और ईश्वर प्रदत्त जे चीज सब छै, अगर कोनो नदी के कात में अहाँ चलि जाओ, ओहि पोखरि कात में चलि जाओ, कोनो वन में चलि जाओ, कतौ एकांत में बैस जाओ, तो ओहिठाम अहाँ के
0: अद्भुत शांति का एहसास होता है।
1: तो वो हलचल मन में नहीं रहे कखनो, ई बातक ध्यान हरदम हेबाक चाहिए। और शांति अनबा के लेल एकटा जे बात अहाँ कहलिए वो बहुत महत्वपूर्ण बात छे, जे संतुष्टि संतोष। लालसा जे छे से जीवन में अनंत छे, और वो लालसा अगर अहाँ के मन में ठीक छे, एहनो नहीं छे जे लक्ष्य प्राप्ति के
0: बिल्कुल
1: लालसा नहीं हेबाक चाहिए, लेकिन एहन लालसा नहीं राखी मन में जेकरा लेल अहाँ के जीवन अशांत भ जाए। वो लालसा नहीं राखी, उतबे साईं इतना दीजिए
0: जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधनों भूखा जाए।
1: तो ई जे सूक्ति छे या वाक्य छे, तो ई सब वाक्य के ध्यान सिर्फ ई कहबा के लेल नहीं छे, एकरा पालन करबा के छे, ई अपना में आत्मसात करबा के छे। और से जे कह लै छथि हुनका जीवन में कहियो कतौ कोनो असुविधा नहीं रहै छनि। ओना नहीं तो आइ अहाँ के अगर पैरे चलै छी तो साइकिल पर चढ़वा के लालसा है, साइकिल पर चलै छी तो मोटरसाइकिल पर चलवा के लालसा है, मोटरसाइकिल पर चलै छी तो
0: कार की लालसा होगी,
1: ओकरा बाद अहाँ के हेलीकॉप्टर के भऽ जाए, हवाई जहाज के भऽ जाए, ओकरा बाद हुआ लागत जे अपने हवाई जहाज रहते हैं, अपने हेलीकॉप्टर रहते हैं, तो मुझे वो अनंत छे,
0: इच्छाएं अनंत होती है।
1: और ओ पाछा अगर अहाँ भाग रहल छी
0: तो फिर जीवन में शांति मिलना
1: मुश्किल, ओकरा लेल अहाँ बेचैन नहीं,
0: बेचैन न हो।
1: हाँ, अगर प्रयास हो जाए, अगर अहाँ कह रहा छी प्रयास और निक से निक सफलता अहाँ के प्राप्त भ रहा है तो बहुत बढ़िया छे, लेकिन ओकरा लेल अशांत नहीं हो। अशांत अगर भ जाए छी अहाँ तो तहन फिर ओकर कोनो महत्व नहीं रह जाए छी, किछ जे प्राप्तो अहाँ लगे ओकरो जे छे से अहाँ उपभोग बढ़िया से नहीं कर,
0: शांतिपूर्वक नहीं कर पाते।
1: मूल मंत्र ई राखी जे प्राप्त है से पर्याप्त है, तो ई मूल मंत्र के अगर अहाँ संग में चलै छी तो हमरा लगैए जे शांति, मन शांति अहाँ के बहुत बेसी भेटत।
0: बिल्कुल,
1: और जीवन में अगर शांति है तो सब कुछ है।
0: बिल्कुल, आप एक चीज बहुत अच्छी बात कहे हैं मणिकांत जी कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।
1: हाँ,
0: वास्तव में जो प्राप्त हो गया वही पर्याप्त है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन सबधन धूरी समान। जब ये संतोष यानी जो प्राप्त है वही पर्याप्त है कि भावना जब विकसित हो जाती है मन में, तो वही शांति का मूल मंत्र है, शांति का आधार है, शांति की नींव है।
1: तो ऐ सब पर में जे छे से बहुत बेसी मंथन नहीं कह कर संतोष में रही और मन स्थिति के शांत कह कर राखी, विचलित नहीं हुई कोनो चीज के लेल,
0: और किसी भी प्रकार की समस्या आए तो उसमें अशांत न होकर के शांति से उसका निवारण के उपाय
1: कखनो नहीं करी, चिंतन करी,
0: चिंतन करें। हाँ, बिल्कुल,
1: जे ई के केना कोनो समस्या अगर सोझा में ठार भ गेलै तो एकर समाधान केना है ओकरा लेल चिंतन करी, नहीं कि चिंतित भ क
0: माता पर हाथ रख करके जैसे अब साधग्रस्त हो जाए,
1: से नहीं हेबाक चाहिए। अगर अहाँ चिंतन करब तो हर समस्या के समाधान चिंतन से छे।
0: बिल्कुल,
1: और वही समाधान के बाद अहाँ जे छे से अपना जीवन के सुखी बना सके छी।
0: बिल्कुल,
1: देखू आब हम सब

0: चिंता में हमू सब नहीं पड़ी और चिंता भी चली
1: बिल्कुल। और प्रकृति तथा संगीत भी शांति का प्रतीक है, तो हम संगीत की ओर चलते हैं और सुनते हैं ये, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जब मन का विश्वास कमजोर नहीं होगा तो शांति मिलेगी ही।
0: सुनिए सुंदर सनक की फिल्म संगीत।

0: इतनी शक्ति हमें देना दाता। बहुत सुंदर एखन फिल्म संगीत हम सब सुन रहा छो। वास्तव में ऊपर के जे शक्ति है, जे बाह्य शक्ति कहियो या आंतरिक शक्ति कहियो या
1: सर्वोच्च शक्ति
0: कहियो या थर्ड पावर लोग कहे छे, जे थर्ड पावर छे, तो वो तो सर्वोपरि छे। ई बात के बहुत लोग नहीं मानक के लिए तैयार होइ छथि, लेकिन जहन बेर अबै छै तहन माना पड़ै छै और मानै छथि। ओहि काल में जना कि किछु दिन पहले देह सिहरि जाइ छै चर्चा कऽ कऽ, जहन कोरोना के काल छलै ओहि काल में जे छै से मानऽ पड़लै जे नहि तेसरो शक्ति अदृश्य शक्ति किछु एहन छै जे काज करै छै। बहुत बेर एहन अबै छै जीवन में अहाँ देखबै जहन डेग डेग पर अहाँ के लागत जे ई काज हम नहीं कर सकै छलहुँ हैं, लेकिन ई स्वतः भ गेलै। तो ओहि काल में बुझाए लगै छै जे नहि कोनो आंतरिक शक्ति जे छै से काज करै छै और होइ छै। तो अहाँ के जीवन में शांति के लेल सेहो आंतरिक शक्ति के काज आवश्यक है और ओकरा लेल ध्यान चिंतन मनन
1: योग
0: ई सब चीज जे छै से माध्यम छै ओहि मंजिल तक पहुँचऽ के लेल। ई सड़क एकरा अहाँ बुझि सकै छियै, मार्ग एकरा बुझि सकै छियै। एहि मार्ग सँ पहुँच कऽ अहाँ अपना जीवन में शांति आनि सकै छियै
1: और परम शक्ति से एकाकार हो सकै।
0: हाँ, और जीवन में अगर शांति आबि गेल तऽ अहाँ के खुशियारी आबि जायत, और अगर खुशियारी आबि गेल अहाँ के जीवन में तऽ अहाँ के कोनो चीज के कमी नहीं है। मात्र टाका सँ कि सम्पत्ति सँ जीवन में खुशी नहीं होइ छै। एहनो अहाँ के बहुत लोग भेटता जिनका टाका कौड़ी कहूँ तो नगण्य छनि कि नहिए छनि, लेकिन वो अपना आप में बहुत खुशी जीवन बिता रहल छथि, खुश सुखचैन, हाँ सुखचैन के जिंदगी वो जी रहल छथि। तो ई एकटा बहुत महत्वपूर्ण चीज छे और बहुत नम्हर कहूँ तो योग छे। जे अगर अहाँ लग में किछु नहीं हो तैयो अहाँ अगर हंसी खुशी से जी रहल छी तो
1: उससे बढ़कर आनंद और हाँ, कभी भी नहीं मिलती हाँ, और कहीं भी नहीं है।
0: ओना देखियो ना जे केओ खरपैत छथि कि अरपैत छथि कि कतबो पाई छन उनका लग में, तो वो तो भाते रोटी खाई छे ना।
1: हाँ, सोने का भरसा
0: तो वो वह खाई छे। आ एकटा जे एकदम साधारण सनक लोग छे जिनका लग में किछ ऐ उपाय नहीं छे, वो पेट भरबा के लेल भाते रोटी खाई छे। हाँ, भ सके ओकरा क्वालिटी में कने अंतर ये नमहर भर भ सके छे, चकमक चकमक भ सके छे, लेकिन मूल आधार जे छे से वह
1: चावल रोटी।
0: तो ओई बात पर सब गोटा के ध्यान देबाक चाही जे कोनो चीज के लेल अहाँ के मन में ई लालसा के कारण अहाँ जे अस्थिर अपना मन के कह लेब, अपना दिमाग के कह लेब, से नहीं हेबाक चाही। सहजता से जे अहाँ के प्राप्त भ रहल है या स्वतः जे अहाँ के प्राप्त भ रहल है ओकरा लेल ठीक छै, लेकिन कोनो चीज के प्राप्त करबाक लेल बेचैन भ जेनाय ओ नहि हेबाक चाही।
1: हाँ,
0: और मन शांति सर्वोपरि छै, पुनःपूत सर्वोपरि छै। एहि बात पर अपने लोग निश्चित रूप से ध्यान दी,
1: सबको इस पर जो है सो ध्यान देना चाहिए और इसी चीज को आधार मानना चाहिए। शांति को ही अपने जीवन का मूल आधार मानना चाहिए और आधुनिक जो जीवन है इसमें अगर यांत्रिकी यानी मशीन का या तकनीकी की बात करें तो आधुनिक मानव जीवन में तकनीकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: महत्वपूर्ण नहीं, अब तो अपरिहार्य जखन भ गेल है। हाँ। ओकरा संगे अगर अहाँ नहीं चली छी तो अहाँ के लोग पिछड़ल बुझत, आ लोग की बुझत अहाँ के अपने लागल लागत जो हम पिछड़ल छी। लाइक दैट मैंने जना देखियो उदाहरण के तौर पर कही छी जे अगर आई के युग में केओ मोबाइल नहीं चला पबै छथि तो हुनका लोग एकदम बुझते हैं जे किछु नहीं छथि, अनपढ़ गवार छथि, हिनका पुते किछु नहीं संभव छनि। आ बल्कि केहनो लोग छथि तो हुनका मोबाइल के उपयोग करहे पड़ै छनि, हुनका जतबे करय पड़नि
1: किसी न किसी काम से
0: हुनका करहे पड़ै छनि। तो अगर तकनीकी के संग अहाँ जुड़ि कऽ नहीं रहबै तो अहाँ जे छै से स्वतः मने पाछा चलल चल जाय एखुनका युग में। और एखन तो AI जे कृत्रिम बुद्धिमत्ता जे छे से तो
1: ML
0: मशीन लर्निंग ई सब चीज जे छे से बहुत आगा चल रहले है और ओकरा संग संग अहूं के चलो की

0: अपन गति के जे छै से ओकरा डेग में डेग कन्हा में कन्हा मिला के अहाँ चलबे तखने अहाँ समय में जे छै से सापेक्ष रहब और अहाँ समय के संग चल सके
1: कदम से कदम मिलाकर चल सके
0: नहीं तो अहाँ पछुआ जाए अहाँ के संग वाला लोग आगा चल जाता अहाँ पछुआ जाए और बहुत एहन एहन चीज सब आबि गेल छै एहन एहन टेक्नोलॉजी डेवलप भऽ गेल छै जे अहाँ मन में सोचबे
1: हाँ
0: अहाँ के सोझा में उपस्थित कर देत ओ चीज के तो एआई जे छै कृत्रिम बुद्धिमत्ता जे छै से तो एक अद्भुत चीज भऽ गेल छै
1: यानी कुल मिलाकर के आधुनिक तकनीक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग दो महत्वपूर्ण स्तंभ है आज के दौर में जो कंप्यूटर को मानव जैसी बुद्धि प्रदान करते हैं। एआई जैसा कि स्पष्ट हम लोगों ने किया ही है कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो मशीनों को बुद्धिमान बनाता है और इसका एक उपक्षेत्र है ML अर्थात मशीन लर्निंग जो डेटा से सीखकर एल्गोरिदम के माध्यम से पैटर्न पहचानने और बिना स्पष्ट प्रोग्रामिंग के निर्णय लेने में मदद करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को यदि परिभाषित किया जाए मनिकांत जी तो हम कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य केवल कंप्यूटर सिस्टम विकसित करना है जो ऐसे कार्य कर सके जिनके लिए आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है जैसे समस्या का समाधान निर्णय लेना और भाषा की पहचान इत्यादि। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के बीच संबंध की बात करें तो मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता की एक शाखा है। वहीं दोनों ही के बीच मुख्य अंतर की बात करें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक व्यापक अवधारणा है जबकि मशीन लर्निंग उसे प्राप्त करने का तरीका या उपकरण है। उपयोग की दृष्टि से मनिकांत जी अगर देखें तो जटिल मानवीय कार्यों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता बेहतर है जबकि बड़े डेटा सेट में पैटर्न ढूंढने के लिए मशीन लर्निंग बेहतर है।
0: हाँ तो ये सब जे AI और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तो ओकरे युग एखन आबि गेलै है और इमें एकरा संग के चली हम सब यह हमरा सभक लेल जे छै से सहायक हैत
1: और कार्यक्रम के साथ भी सुर में सुर मिला करके चले समय के साथ हम कदम बढ़ाएं तो चलते हैं फिल्म संगीत की ओर और सुनते हैं ये फिल्मी गीत
0: सुनल जाए।

0: भूली बिसरी प्रेम कहानी।
1: बहुत सुंदर ये गीत एखन हमरा लोग सुन रहा छोड़ो और यही गीतक संग आजुक नमस्कार मिथिला कार्यक्रमक समय से हो लग जा रहा है। तो मणिकांत के
0: और कल्याण कुमार झा को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार मिथिला।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी।
1: श्रोताओं, संदेश के पहले आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।
0: बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी रविवार दिन में 11 बजे।
2: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की,
3: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
2: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
4: तुम नाचो रस बरसी,
2: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: भोर होते उठ जाओ किएक ता इजोतक पहिल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल ले
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन
2: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाब की
3: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
0: यहाँ हर तरह के फूल खिले हैं।
5: कितना निमन लगे थे, हर जोतैत किसान, बुढ़ऊ बैठल दलान आ बुढ़िया तापैत बोरसी, बहुरिया पाथित करसी, कितना निमन लगे थे।
6: तू कहै थते न जो कहला न जाएं, मन मोटाव होए से रूसा फुल्ली हो जाए से आ बोला चाली न होए से कहीं भाई बहन के रिश्ता टूट जाइए।
0: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति बच्ची का कार्यक्रम अंगना सुनना न भूले, मंगलवार दिन के 11 बजे।
7: चाचा कहिन चल तोहर माय बाबू कई खूबसन सुनाबे हियो, तो खूबसन के अर्थ होय है उलाहना।
0: अपने स्मार्टफोन पर सुनने के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप न्यूज ऑन AIR। जब आपका फोन कॉल हम तक आता है तब साथ आती है आपकी फरमाइश भी।
8: बद्रीनाथ के दुल्हनिया के फिल्म के कोनो गाना सुना
9: दी। क्या तुझे इतनी सी भी खबर
0: शनिवार संध्या 5 बजे से 6 बजे के बीच युवा दोस्तों के लिए आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति हेलो मिथिला।
10: तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे।
0: अपने स्मार्टफोन पर सुनने के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप न्यूज ऑन AIR। आकाशवाणी दरभंगा अब इंटरनेट के माध्यम से भी उपलब्ध है, डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR ऐप।
11: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की कुछ पल प्रतीक्षा करें।
12: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय NR कांग्रेस प्रमुख N रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
13: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपाड़ी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वही 30 विधायक

0: विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को एआईएडीएमके विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदयचंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि सीपीआईएम के राज्य सचिव पी शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों

0: सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे

0: से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है अब क्यूआर कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Center increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
3: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPI-M and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली नौमुंतखबा टीवी के सरकार आज असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुदुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई किफायत शहरी की अपील के बाद ईंधन की खपत से मुतालिक इकदामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मरकज ने सोने और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदाती ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। आईएमडी ने इस साल मानसून जल्द शुरू हो जाने की पेशगोई की है। और आईपीएल में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु में आज टीवी के हुकूमत असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। वजीर आला सी जोसेफ विजय इस आजमाइश से पहले हिमायत हासिल करने की गरज से अपनी हामी पार्टियों के रहनुमाओं के साथ मीटिंग्स करते रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: तमिलनाडु में हुकूमत तश्कील देने के लिए कांग्रेस, VCK, CPI, CPIM और IUML जैसी इत्यादि पार्टियों के साथ TVK के पास 120 अरकान की अक्सरियत है। सरकार की हलफबरदारी के बाद अब TVK को AIADMK के 29 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है जो इस पार्टी से अलग हुए हैं। TVK को अम्बा मक्कल मुनेत्र कडगम के एक MLA S कामराज की भी हिमायत हासिल है। अब असेंबली में

0: टीवी के पास कुल 151 अरकान हैं। जनरल सेक्रेटरी ई पलानीस्वामी की क्यादत वाली AIADMK ये कह चुकी है कि जो लोग व्हिप के जाब्तों पर अमल नहीं करेंगे उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इस पार्टी की बुनियाद MGR ने रखी थी और इसे फिलहाल एक बड़े सियासी बुहरान का सामना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: ऑल इंडिया NR कांग्रेस के रहनुमा N. रंगासामी आज पुडुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। एक सादा सी तकरीब में जो लोक निवास में मुनाकिद की जाएगी, पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथ जनाब रंगासामी को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: पुडुचेरी में हलफ बर्दारी की तकरीब मुनाकिद की जाएगी। N. रंगासामी वजीर आला के ओहदे की एक बार फिर जिम्मेदारी संभालने को तैयार है। 76 साल सियासी कदावर शख्सियत की वजीर आला के तौर पर यह पांचवी मुद्दत होगी। इस तकरीब में वजीर आला के साथ साथ कुछ वजीरों को भी हलफ दिलाया जाएगा। मरकजी वजीर और बीजेपी के चुनाव इंचार्ज मनसुख पांडविया, बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन, बीजेपी पुडुचेरी के इंचार्ज

0: 2021 के असेंबली इंतखाबात के बाद तशद्दुद से मुतालिक सभी केसों का नए सिरे से जायजा लेने का हुक्म दिया गया है, जिनमें वो केस भी शामिल हैं जिनमें कतई रिपोर्ट्स भी दाखिल कर दी गई है। इस हिदायतनामे में सरहद के बारे में मीटिंग्स और खुफिया मालूमात एक दूसरे को फराहम करके सरहद पार से की जाने वाली स्मगलिंग और जराइम के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया गया है। मगरबी एशिया के बहरान के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की किफ़ायत की अपील के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के उज़राए आला ने वज़ीरों, अरकान असेंबली और अवामी नुमाइंदों की सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के इकदाम का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर आला, वज़ीरों और दीगर अफसरान के गाड़ियों के काफिले में 50% कटौती करने का हुक्म जारी किया है और हिदायत दी है कि सरकारी काफिलों से गैर ज़रूरी गाड़ियों को हटाया जाए। रियासती सरकार ने PNG, मेट्रो खिदमात और सरकारी ट्रांसपोर्ट के ज़्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया है और मीटिंगें वर्चुअल वसीले से मुनक़िद करने, नीज हफ्ते में एक बार कोई गाड़ी नहीं चलेगी का उसूल अपनाने की हौसला अफजाई की है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कहा है कि वो कम ईंधन इस्तेमाल करें और सोने की गैर ज़रूरी ख़रीदारी से गुरेज करें। चीफ सेक्रेटरी, DGP और मुख्तलिफ महकमों के तमाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरियों और प्रिंसिपल सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग के दौरान योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी कि वज़ीर आला, वज़रा और दीगर के काफिलों में फौरी तौर पर 50% की कमी की जाए। उन्होंने हिदायत दी कि गैर ज़रूरी गाड़ियों को सरकारी काफिलों से हटाया जाए। वज़ीर आला ने रियासत में घर से काम करने के कल्चर को तरजीह देने की अपील की। उन्होंने PNB मेट्रो सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जरिए चलाई जा रही बसों के इस्तेमाल पर ख़ास तौर से जोर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि वज़रा, MP, MLA और सरकारी नुमाइंदों को हफ्ते में कम से कम एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना चाहिए। हर हफ्ते एक बार नो व्हीकल डे भी मनाना चाहिए। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव ने मज़ीद अहकामात जारी होने तक अपने काफिले में गाड़ियों की तादाद कम कर दी है। पीर को एक काबीना मीटिंग में जनाब यादव ने वज़ीरों की कौंसिल के अरकान से अपील की है कि वो कौमी मफाद के तहत पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी लाएं। उन्होंने सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। एक अफसर ने बताया कि उनके दौरे में जो रैलियाँ मुनक़िद की जाएंगी उनमें गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने भी वज़ीरों, अरकान असेंबली अफसरान और सरकारी महकमों से कहा है कि वो सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल महदूद कर दें, कार पूलिंग यानी गाड़ियों को मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करें और मेट्रो और बस खिदमात को तरजीह दें। हुकूमत ने सोने और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदी ड्यूटी में इजाफा किया है जो आज से नाफिजुल अमल होगी। एक बयान में वजारत खजाना ने कहा कि सोने और चांदी के जेवरात के हिस्सों पर 5% ड्यूटी और प्लेटिनम के हिस्सों पर 5.4% ड्यूटी लगेगी। मजीद बरां कीमती धातुओं के इस्तेमाल शुदा कैटलिस्ट की शरह 4.35% मुकर्रर की गई है जो कि तामील के मेयारात को पूरा करने से मशरूत है। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया में जारी बहरान के मद्देनज़र लोगों से सोना न खरीदने की अपील की थी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा। तहकीकात के मरकजी ब्यूरो CBI ने मुबैना नीट पेपर लीक के मामले में शुभम खैर नार को हिरासत में ले लिया है। शुभम को राजस्थान पुलिस की दरख्वास्त पर नासिक पुलिस के क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के शहर नासिक से गिरफ्तार किया था। मेडिकल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट UG 2026 इम्तिहान इस महीने की 3 तारीख को कराया गया था, जिसे कल पेपर लीक के इल्ज़ाम के तहत मनसूख कर दिया गया। हुकूमत ने CBI से कहा है कि वो बदउनवानी के खिलाफ मुकम्मल इंक्वायरी करे। एक और मुतालिका वाक़े में नीट UG 2026 के एक उम्मीदवार के वालिदैन ने लातूर के SP ऑफिस में एक दरख्वास्त दाखिल की है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि एक प्राइवेट कोचिंग इदारे ने इम्तिहान से पहले एक मॉक टेस्ट लिया था जिसमें मुबैना तौर पर 42 सवालात उन सवालात से यकसानियत रखते थे जो असल नीट पेपर में पूछे गए थे। SP अमूल तांबे ने सब डिविजनल पुलिस अफसर को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर इंक्वायरी शुरू करें और कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कदम उठाएं। इससे पहले राजस्थान पुलिस के खसूसी ऑपरेशंस ग्रुप ने मुश्तबा नेटवर्क

0: और पैसे के लेन देन की तफ्तीश के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया था। इस ग्रुप ने कल एक मुबैना सरगना मनीष को जयपुर से गिरफ्तार किया है। हुकूमत ने सालाना मजमुई घरेलू पैदावार GDP के आरजी तखमीने और चौथी सहमाही के लिए GDP के सहमाही तखमीने के इजरा की तारीख दोबारा मुकर्रर की है। पहले ये तारीख मई का कामकाज का आखिरी दिन होता था, लेकिन अब इसे हर साल जून की 7 तारीख कर दिया गया है। इजरा की तारीख में यह तब्दीली कौमी अकाउंट्स के आदादोशुमार से मुतालिक मुशावरती कमेटी के साथ सलाह मशवरे के बाद की गई है। वजारत ने कहा है कि इस तब्दीली का मकसद आदादोशुमार की क्वालिटी को मजीद मुस्तहकम बनाना है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की क़यादत में एक आला सतही भारतीय पार्लिमानी वफद आज से भूटान का दौरा करेगा। इसका मकसद भारत भूटान रिश्तों को मजीद मुस्तहकम करना है। इस 51 रुकनी वफद में राज्यसभा और लोकसभा के अरकान पार्लिमान और वजारत खारजा के अहलकार शामिल हैं। महाराष्ट्र के ज़िला सांगली की जाट तहसील में कल एक मजहबी तकरीब के दौरान दीवार गिरने से 6 अकीदतमंद हलाक और तकरीबन 15 जख्मी हो गए। तकरीब में 300 से ज़्यादा अकीदतमंद जमा थे, जब इलाके में तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई। तकरीबन 30 अकीदतमंद एक दीवार के पास खड़े हो गए और इसी वक्त दीवार गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए जाट और सांगली सिविल अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दीवार गिरने के हादसे में होने वाली अमवात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की तमन्ना की। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान की ताज़ा तरीन अमन तजवीज़ को मुस्तरद किए जाने के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में और भी कमजोरी पैदा हो गई है। जनाब ट्रंप ने ईरान की तरफ से की गई जवाबी पेशकश को कचरा बताया है। इस इल्ज़ाम तराशी के सबब मगरबी एशिया में तनाज़े को फैलने से रोकने की कोशिशों में गैर यकीनी पैदा हो गई है। जम्मू कश्मीर में फौज ने कल पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दरअंदाजी की एक कोशिश नाकाम कर दी। कृष्णा घाटी सेक्टर में एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया। भारत में इस हफ्ते जुनूब मगरबी मानसून दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात IMD के मुताबिक इस हफ्ते के अख्ताम तक जुनूब मगरबी मानसून के जुनूबी खलीज बंगाल, अंडमान समुंदर और अंडमान और निकोबार जजायर के हिस्सों में आगे बढ़ने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का हल्का कल उसी इलाके में बरकरार है। इसके साथ ही हवा का गिरदाबी निज़ाम सतह समुंदर से 4.5 किलोमीटर की बुलंदी तक फैला हुआ है। भारत के महकमे मौसमियात ने राजस्थान में शदीद गर्मी और लू के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। रियासत के सरहदी अजला में इस वक्त सख्त गर्मी है। कई मुकामात पर दर्जे हरारत 45 से 47 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है। IPL क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने आज अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि मगरबी बंगाल के अवाम की फलाह व बहबूद हुकूमत की अवलिन तरजीह, रियासत के अवाम को आयुष्मान भारत सेहत बीमा स्कीम के फवायद हासिल होंगे। अखबार प्रताप ने भी इस खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, सदर जमहूरिया ने 15 नर्सिंग स्टाफ को नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगेल अवार्ड से नवाजा। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने हेमंत बिस्व शर्मा के मुसलसल दूसरी बार आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। अखबार इनकलाब ने वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल की इस बयान को अहमियत दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की मदद की। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से असलाह, धमाका खेज मवाद और 1 करोड़ नकद बरामद। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, भारत नेपाल सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश, 4 अफराद गिरफ्तार। अखबारात की अहम बैनुल अक्वामी खबरें इस तरह हैं, मुज़ाकरात में हो रही नाकामी पर ट्रंप का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का मंसूबा जेर गौर, दोबारा हमला हुआ तो 90% यूरेनियम अफजूदगी शुरू हो सकती है, ईरान का बयान।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्रदेशवासियों से अपील, ईंधन की बचत के लिए जरूरत पड़ने पर ही वाहनों का उपयोग करें। कहा, प्रदेश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है। नई दिल्ली में आज 16वीं पेंशन अदालत का आयोजन। 37 मंत्रालयों और विभागों से संबंधित 985 लंबित पेंशन शिकायतों का मौके पर ही होगा समाधान। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए टास्क फोर्स गठित करने के दिए निर्देश। और मौसम विभाग की आज जमुई, खगड़िया,

बेगूसराय, दरभंगा और सहरसा सहित आसपास के कई जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेशवासियों से ईंधन की बचत के लिए जरूरत पड़ने पर ही वाहनों का उपयोग करने की अपील की है। श्री चौधरी ने पटना में खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षात्मक बैठक में कहा कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए लोगों को चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन ऊर्जा संकट को देखते हुए नागरिकों को ईंधन बचत करनी चाहिए। उन्होंने लोगों से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और इसके अधिक इस्तेमाल पर जोर देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और तेल कंपनियों को कॉलोनी और अपार्टमेंट में पीएनजी कनेक्शन शीघ्र उपलब्ध कराने पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विस्तारित मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक आज सुबह 10 बजे से होगी। ये बैठक पटना स्थित मुख्य सचिवालय के सभागार में आयोजित की जाएगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 16वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस अदालत में 37 मंत्रालयों और विभागों से संबंधित 985 लंबित पेंशन शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कहा कि 2017 में अपनी स्थापना के बाद से पेंशन अदालतें लंबे समय से लंबित और जटिल पेंशन शिकायतों के समाधान के लिए एक प्रभावी मंच साबित हुई हैं। प्रदेश में नई श्रम संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जिला स्तर पर मॉनिटरिंग सेल बनाया जाएगा। श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार नई श्रम संहिता के क्रियान्वयन के लिए कार्यस्थल पर जाकर श्रमिकों से फीडबैक लिया जाएगा। कानून का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण कार्य विभाग ने प्रदेश में ग्रामीण हाट बनाने के लिए 126 स्थलों को चिन्हित किया है। इन स्थलों पर जल्द ही हाट बनाने का कार्य शुरू होगा। विभाग के अनुसार मनरेगा जी रामजी योजना के तहत ग्रामीण हाट का निर्माण होना है। इन हाटों में किसानों की उपज के साथ साथ जीविका दीदियों के उत्पादों की भी बिक्री होगी। गौरतलब है कि विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों बांका, भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, शिवहर और सुपौल समेत 14 जिलों में 725 ग्रामीण हाट बनाने का निर्णय लिया है। संबंधित जिलों की ओर से अब तक 469 स्थलों का भौतिक सत्यापन किया गया है। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए हैं। पटना स्थित लोकभवन में उच्च शिक्षा विभाग और सभी कुलपतियों के साथ हुई बैठक में राज्यपाल ने उच्च शिक्षा व्यवस्था के अध्ययन और सुधार संबंधी सुझावों के लिए 3 अलग अलग टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए हैं। ये टास्क फोर्स अन्य प्रदेशों का भ्रमण कर वहां की सर्वोत्तम व्यवस्थाओं का अध्ययन करेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत अपराधों के लिए FIR दर्ज की गई है। एजेंसी ने बताया कि मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीम विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं परीक्षा 2026 का परिणाम आज जारी किए जाने की संभावना है। अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट results.cbse.nic या cbse.gov.in पर देख सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि वेबसाइट पर अत्यधिक लोड होने से विद्यार्थी डिजी लॉकर और उमंग ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गौरतलब है कि परीक्षा परिणाम कल जारी होना था, लेकिन तकनीकी कारणों से इस

0: से जारी नहीं किया जा सका। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि राज्य सरकार हर गरीब बच्चे को स्कूल तक ले जाने का कार्य करेगी। गोपालगंज में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि विपक्ष को नकारात्मक राजनीति छोड़ इस काम में सहयोग करना चाहिए।
1: हमारी नजर बिहार के हर गरीब के झोपड़ी पर है, जहां से गरीब का बेटा बेटी को बिहार की सरकार के स्कूल में ले जाके हमें पढ़ाना है। हम उस काम में लगे हैं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप भी थोड़ा हमारा सहयोग करिए। लेकिन आप प्रथम दिन से ही आप गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और आप अफवाह फैला रहे हैं। आपको बिहार की जनता माफ नहीं करेगी।
0: केंद्र सरकार ने उस वीडियो को गलत बताया है जिसमें कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी नागरिकों को मुफ्त रिचार्ज, मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटर, मुफ्त कार और वित्तीय सहायता देने का वादा करते दिख रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने बताया कि यह दावा फर्जी है और वायरल वीडियो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा बनाया गया है। सरकार ने सभी नागरिकों को आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करने की सलाह दी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने आज जमुई, बांका, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर और सहरसा सहित कई जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान धूल भरी आंधी चलने की भी चेतावनी जारी की गई है।
3: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है, तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, बांका, गया और अरवल समेत प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। इस दौरान कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। खान और भूतत्व विभाग ने जब्त बालू की नीलामी मानसून से पहले करने के निर्देश दिए हैं। विभाग के निदेशक मनीष कुमार मीणा ने कहा कि मानसून को ध्यान में रखते हुए बालू घाटों की जल्द बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पटना में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने यह जानकारी दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति न्यायालयों में अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करेगी। ये समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। शिक्षा विभाग ने जनगणना कार्य में कार्यरत शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का पूरा डेटा ऑनलाइन दर्ज करने का निर्णय लिया है। विभाग के अपर सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त शिक्षकों की जानकारी 48 घंटे के अंदर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कराई जाएगी। श्री राजेंद्र ने बताया कि भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के कार्य के लिए जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर शिक्षकों को प्रगणक और पर्यवेक्षक बनाया गया है, लेकिन विभाग के पास इस कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कुल शिक्षकों की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

0: अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी 1 जून से 15 जून के बीच आयोजित किया जाएगा। गया सेना भर्ती कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह परीक्षा निर्धारित तिथियों पर गया जी में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए गया, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई समेत 11 जिलों से 38,040 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। राजधानी पटना में कल मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने बताया कि कल शाम 7 बजे से 7:15 बजे के बीच पूर्व निर्धारित नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत ब्लैकआउट किया जाएगा। जिलाधिकारी ने नागरिकों से इस दौरान अपने घर, दुकान और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सभी लाइटें बंद रखने की अपील की है। वहीं अररिया जिले में भी कल मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 16 मई से रक्सौल और नरकटियागंज के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन सप्ताह में 2 दिन शनिवार और गुरुवार को चलेगी। इधर अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन फारबिसगंज, निर्मली और सरायगढ़ के रास्ते करने का फैसला किया गया है। रेलवे ने एक अन्य निर्णय के तहत पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जमुई स्टेशन पर ठहराव प्रदान किया है। यह ट्रेन 15 मई से जमुई स्टेशन पर रुकेगी। सुपौल जिले के भपटियाही स्थित राजकीय विद्यालय में सशस्त्र सीमा बल की ओर से सुरक्षा तथा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र के उप महानिरीक्षक विजय सिंह के मार्गदर्शन में छात्रों को सुरक्षा, भूकंप से बचाव, रक्तस्राव नियंत्रण तथा सीपीआर की जानकारी दी गई। अररिया जिले के महलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत करियात पुलिस कैंप के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक चार पहिया वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। किशनगंज जिले के टेढ़ागांज थाना क्षेत्र में पुलिस ने पशु तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 12 मवेशियों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच रायपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दोबारा देना होगा नीट, प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा निरस्त। निजी विद्यालयों की मनमानी पर दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, निजी विद्यालयों को फीस की पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, 9 लाख राज्य कर्मियों का वेतन बढ़ेगा, पेंशनरों को भी लाभ होगा। अखबार लिखता है, कैबिनेट को भेजा प्रस्ताव। प्रभात खबर लिखता है, प्रदेश में 16 मई तक जारी रहेगा आंधी पानी का दौर। आज अखबार की सुर्खी है, पुलिस निदेशक विनय कुमार ने कहा, दारोगा बनने पर पहली पत्नी को छोड़ दूसरी शादी की तो नौकरी जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्रदेशवासियों से अपील, ईंधन की बचत के लिए जरूरत पड़ने पर ही वाहनों का उपयोग करें। कहा, प्रदेश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है। नई दिल्ली में आज 16वीं पेंशन अदालत का आयोजन। 37 मंत्रालयों और विभागों से संबंधित 985 लंबित पेंशन शिकायतों का मौके पर ही होगा समाधान। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए। और मौसम विभाग की आज जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा और सहरसा सहित आसपास के कई जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: इधर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in।
6: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर, संध्या 6:30 पर। जब आपका फोन कॉल हम तक आता है, तब साथ आती है आपकी फरमाइश भी।
2: बद्रीनाथ
3: दुल्हनी,
2: बद्रीनाथ के
3: दुल्हनिया
2: का फिल्म के कोना गाना
3: सुना। क्या
1: शनिवार संध्या 5 बजे से 6 बजे के बीच युवा दोस्तों के लिए आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति हेलो मिथिला।
4: तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे।
1: अपने स्मार्टफोन पर सुनने के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप न्यूज ऑन AIR। जब आपका फोन कॉल हम तक आता है, तब साथ आती है आपकी फरमाइश भी।
2: बद्रीनाथ दुल्हनी, बद्रीनाथ के
3: दुल्हनिया
2: का फिल्म के
3: कोना
2: गाना सुना।
3: क्या तुझे इतनी सी भी खबर। मैथिली कोनो भगवती के गीत सुनाया।
4: शरण दूर
1: हमारे। शनिवार संध्या 5 बजे से 6 बजे के बीच युवा दोस्तों के लिए आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति हेलो मिथिला।
4: तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे।
1: अपने स्मार्टफोन पर सुनने के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप न्यूज ऑन AIR।
5: अब नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222।

0: 2248। मोबाइल नंबर है 9430029353।
1: यहाँ हर तरह के फूल खिले हैं।
2: कितना निमन लगे थे, हर जोतैत किसान, बुढ़ऊ बैठल दलान, आ बुढ़िया तापैत बोरसी, बहुरिया पाथैत करसी, कितना निमन लगे थे।
3: तू कहैत हते न जो कहला न जाए, मन मोटाव होए से, रूसा फुल्ली हो जाए से, आ बोला चाली न होए से, कहीं भाई बहन के रिश्ता टूट जाइए।
1: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति बच्ची का कार्यक्रम अंगना, सुनना न भूले, मंगलवार दिन के 11 बजे।
4: चाचा कहेखिन चल तोहर माय बाबू कई खोपसन सुनाबे हो, त खोपसन के अर्थ होय है उलाहना।
1: अपने स्मार्ट फोन पर सुनने के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप न्यूज ऑन AIR।
5: श्रोताओं अब आप सुनेंगे अंजुमन।

सामिन, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में आपने इस गज़ल को समाप्त किया। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तामीर और तश्कील में बहुत सारे रहनुमाओं ने अपनी अजीम कुर्बानियाँ दी और अपने काविशों से इस मुल्क को इसकी बेहतरी के लिए बहुत सारे इकदाम उठाए और इसे सींचा, जिसकी तस्वीर आज हम देखते हैं। ऐसे ही एक अजीम रहनुमा, वकील और सियासतदान फखरुद्दीन अली अहमद थे। आज उनकी योम विलादत है। इनकी पैदाइश आज ही की तारीख यानी 13 मई 1905 को पुरानी दिल्ली के हौस काज़ी इलाके में हुई थी। फखरुद्दीन अली अहमद हिंदुस्तान के 5वें सदर की हैसियत से भी मुमताज़ रहे। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो गोंडा ज़िला उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट हाई स्कूल से मुकम्मल की और फिर इसके बाद सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद इंग्लिस्तान चले गए, जहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की। सियासी ज़िंदगी का अगर हम आगाज़ देखें तो जवाहरलाल नेहरू से इनकी मुलाकात 1925 में होती है और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और 1942 की हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के दौरान अपनी काविशों के सबब गिरफ्तार भी होते हैं और 3 साल कैद की सौबत भी बर्दाश्त करते हैं। आज़ादी के बाद अहमद की जो अहम सियासी अहदों पे है वो तकर्री होती है। वो 1952 में राज्यसभा और इसके बाद 1967 में लोकसभा के लिए भी मुंतखब होते हैं। इनके पास खुराक और ज़रात, तावुन तालीम, सनती तरक्की और कंपनी के कवानीन जैसे महकमे थे। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 में हिंदुस्तान के सदर मुंतखब होते हैं और 24 अगस्त से लेकर के जो है वो अपनी वफात 11 फरवरी 1977 तक अपने इस ओहदे पर फायज भी होते हैं। यकीनन इनकी जो काविशें हैं सामीन, उन्हें पूरा मुल्क फरामोश नहीं कर सकता है और इन तमाम जो रह

विचार थी उन्हें पेश करने वालों में मंटू या अस्मत तन्हा नहीं है। 1940 के आसपास उर्दू फिक्शन निगारों की जो नई नस्ल उभरी है उसमें औरतों की तादाद भी खासी है। नॉवेल निगारी और अफसाना नवीसी का एक अलग अलग तस्करा किए बगैर रशीद जहां, रजिया सज्जाद जहीर, खदीजा मस्तूर, हाजरा मसूद, जमीला हाशमी और कुलतुल्लैन हैदर वगैरह का जायजा लिया जाए तो एहसास होता है कि उन्होंने ख्वातीन के किरदारों की अक्कासी में सिर्फ जज्बाती पहलुओं का ख्याल नहीं रखा है बल्कि उन इक्तसादी और सिनफी असबाब पर भी नज़र रखी है जो औरतों के अहवाल को किसी न किसी तौर पर मुतासिर करते रहे हैं। यहाँ चंद मिसालें देने की ज़रूरत महसूस होती है। जो औरतें मिलती हैं वो सिर्फ तकदीर के जबर से दोचार नहीं हैं बल्कि अपने माशरे के जबर का भी शिकार हैं। शिकस्त की चंद्रा हो या एक औरत हज़ार दीवाने की लाची, दोनों समाज के लिए काबिल कबूल नहीं है। दूसरी तरफ खुदा की बस्ती में मुतवसित तबके की एक ऐसी औरत की दास्तान है जो अपनी मुफलिसी के सबब कदम कदम पे न सिर्फ अपनी बल्कि बेटियों और बेटों के सिलसिले में कॉम्प्रोमाइज़ करने पर मजबूर हो जाती है। दरअसल तकसीम हिंद एक ऐसा वाक़या है जिसने हमारे समाज को कई सतहों से मुतासिर किया। औरतें इस वाक़े से कुछ ज़्यादा ही मुतासिर हुईं और यहाँ हालात ने तरह तरह के किरदारों को जन्म दिया। हम अगरचे खदीजा मस्तूर के नॉवेल आंगन की छम्मी को देखें तो वो भी बदलते हुए हालात का नतीजा है और मेरे भी सनम खाने की रक्षंदा भी अपने अहद और माशरे का इस्तियारा है, मगर उन दोनों के रवैये में खासा फ़र्क है। छम्मी के किरदार में एहतजाज का पहलू नुमाया है। एक मुतवसित घराने में रहने और शबरोज कौम परस्ती के नारे सुनने के बाद इसका जो किरदार उभरता है वो उसी ख़ानदान के दूसरे किरदारों से बिल्कुल अलग है। इस मुकाबले में रक्षंदा में हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़ का नमूना बनकर सामने आती है। तकसीम मुल्क के नतीजे में आइडियल नौजवान के किरदार जैसी जहनी इंतशार और शिकस्त रेख का शिकार थे। इसका एक नमूना रक्षंदा है। यहाँ आखिरी शब के हमसफर की यास्मीन मजीद का भी तस्करा करने का दिल चाहता है जो पूरी तरह एक मौसीकी घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद रक्स व मौसीकी की दिलदादा है। उरूज व ज़वाल की एक अजीब व गरीब कहानी लिखते हुए ये किरदार बिलाखिर खुदकशी पर मजबूर हो जाता है, मगर ये सवाल कारी के सामने छोड़ जाता है कि इस मुल्क में फनकारों के साथ जो सलूक होता है वो किस हद तक मुनासिब है। इसके बरखिलाफ दिलरुबा या फरहत का सानी किरदार जिंदगी के बाज दूसरी जहतों को पेश करते हैं जिसे अंदाज़ा होता है कि कुतुलैन हैदर अपने अहद के मुख्तलिफ रुझानात के नुमाइंदा किरदार पेश करने पर कुदरत रखती हैं। अब अगर हम कुछ आगे बढ़ें तो ख्वातीन के सिलसिले में ये बहस मुख्तलिफ जहतें इख्तियार कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर शकीला अख्तर के यहाँ औरत वो नहीं है जो गयास अहमद गद्दी के यहाँ है। ये बात भी सामने रहनी चाहिए कि हिंदुस्तानी मुआशरा एक मखलूत मुआशरा है जिसमें मुख्तलिफ मजहबी, इलाकाई और लसानी महरकात अपने काम करते रहते हैं। फिर ये भी है कि किसी मजहबी जमात की कोई खातून रवायती दायरों से बाहर जाकर भी कोई कदम उठा सकती है। गयास अहमद गद्दी के यहाँ जो मुआशरा पेश हुआ है उसमें औरतें भी खास आज़ाद ख्याल दिखाई देती हैं, मगर अपने मखसूस अकायद और रुझान के तहत एक ख़ास दायरे के बाहर कदम नहीं रखती। इसके बरखिलाफ़ आशा प्रभात या तरन्नुम रियाज़, सरवत जहाँ, सुगरा मेहदी और उन सब से बढ़कर वाजदा तबस्सुम के यहाँ जो ख़वातीन मिलती हैं वो रवायती ख़वातीन तहजीब से ताल्लुक़ रखने के बावजूद जो दहलीज से पांव बाहर निकालने के लिए हमा वक्त तैयार दिखाई देती हैं। जिन ख़वातीन फिक्शन राइटर का मैंने नाम लिया उनके यहाँ भी ख़वातीन किरदारों की पेशकश का अंदाज यकसां नहीं है। सबसे ज़्यादा एतराज़ वाजदा तबस्सुम के नाम पर हो सकता है जिनके यहाँ ख़वातीन किरदार आम तौर पर लज्जत कोशी का सामान फराहम करते हैं जबकि सुगरा मेहदी के किरदार दीदे इबरत को दावत निगाह देते हैं। राग भोपाली में ये सूरत नुमाया है। यहाँ जिलानी

और हालात हाजरा के तहत ये शेर आपके रूबरू पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाइए। गरीब शहर की बेटी सिसकर।

सामीन चित्रा सिंह की आवाज़ में इस गज़ल को आप समाप्त कर रहे थे और इसी के साथ हमारा आज का ये सफ़र यहीं तमाम होता है। कल फिर हमारी मुलाकात होगी। इस वादे के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, दिन के 10 बजे और ये समय हमारे फिल्मी गीतों के सफर का। तो श्रोताओं लीजिए आनंद फिल्मी गीतों के सफर का। आरंभ में आप सुनेंगे मुकेश और लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म फर्ज का ये गीत।

नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर के स्वर में फिल्म हमराज का गीत। और लीजिए सफर का अगला गीत सुनिए, जिसे हमने लिया है फिल्म धूल का फूल से। स्वर महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर के हैं।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है और आप शामिल हमारे साथ फिल्मी गीतों के सफर में। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म आए दिन बाहर के का गीत, जिसे स्वर दिया था लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने। लीजिए श्रोताओं, सफर का अगला गीत सुनिए, जिसे हमने लिया है फिल्म आंधी से और स्वर किशोर कुमार और लता मंगेशकर के हैं।

इस मोड़ से जाते हैं। जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म आंधी का गीत। और लीजिए सफर का अंतिम गीत सुनिए, जिसे हमने लिया है फिल्म तेरे घर के सामने से, स्वर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के हैं।

आकाशवाणी दरभंगा से। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत श्रोताओं फिल्मी गीतों का सफर। फिल्म तेरे घर के सामने के इस गीत के साथ ही यहीं संपन्न हुआ जाता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप लीजिए आनंद लोक गीतों का।

श्रोताओं, लोकगीत में अभी आप सुन रहे थे राधा मोहन मिश्र के गाए हुए गीत को। लीजिए अगला गीत सुनिए, जिसे स्वर दिया है राखी कुमारी ने।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है और आप सुन रहे हैं लोकगीत। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अरविंद कुमार झा और ओम प्रकाश सिंह के स्वर में इस गीत को। लीजिए अगला गीत सुनिए, जिसे स्वर दिया है पूनम कुमारी ने।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है और आप सुन रहे हैं लोकगीत। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उर्मिला देवी के स्वर में इस गीत को। लीजिए सफर का अंतिम गीत सुनिए, जिसे स्वर दिया है पारस पंकज झा ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही लोकगीत अब यहीं संपन्न हुआ जाता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आप सुन रहे हैं पहली सभा के कार्यक्रम। सभा को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं रोनू मजुमदार और किशन महाराज का बजाया हुआ बांसुरी पर राग अहिर भैरव। ये बांसुरी वादन अब सुनेंगे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत।
1: नमस्कार। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे साथ तबला बजाने के लिए परम पूज्य मेरे गुरु समान पंडित किशन महाराज जी मंच पर आशीर्वाद देने के लिए बैठे हुए हैं। मैं जब भी इनकी तरफ देखता हूं तो मुझे अपने गुरु की छवि दिखाई देती है इनके चेहरे पर। इनके साथ एक मंच पर बैठना बड़े सौभाग्य की बात है और ये संभव हुआ तो इन्हीं के आशीर्वाद से। मैं इस लायक तो नहीं हूं मगर जो भी मैंने टूटा फूटा सीखा है वो प्रस्तुत है। शुरू करने से पहले मैं परम पूज्य महाराज जी चाचा जी से आशीर्वाद चाहता हूं और उपस्थित गुणीजनों से सबसे मैं इजाजत चाहता हूं। प्रस्तुत है राग अहिर भैरव, आलाप जोड़ झाला और दो बंदिशें ताल धमार और तीन ताल।

अभी आप सुन रहे थे रोनू मजुमदार का बांसुरी पर बजाया राग अहिर भैरव। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
3: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
3: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
2: जी।
3: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
3: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप
2: जी।
3: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
3: जी बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा
3: जी।
2: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
3: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए।

0: ये कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
1: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
0: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें।
1: जी,
0: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
0: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
1: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
0: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
1: जी,
0: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वह

0: सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
0: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थीं, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थीं। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थीं।
3: अकर बकर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है,
5: तेरी। अब मेरी तुम्हारी बारी, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी भाई, कौवे ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ
4: चलो,
5: पे पानी
4: चलो
5: होगा।
4: चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुईं। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है
5: दीदी?
6: कौन है
5: दीदी?
4: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें?
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
5: हाँ, हाँ पर ठंडा पानी था।
4: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
7: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
5: कौन है आप?
7: नहीं समझे?
5: नहीं।
7: अच्छा तो फिर ये पहेली सुनो।

0: पंखा जलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम
1: अब गर्मी
2: अम्मा है। बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
0: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
2: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
2: शुरू हो जाती है हाँ।
0: अम्मा मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
2: भाई मेरे मौसम में

0: गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो ना, चलते हैं।
2: चलो।
3: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
0: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
3: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
2: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
1: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
0: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
0: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
0: सोचो। मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
2: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
2: कौन सा फल है?
1: कौन सा फल?
0: नहीं समझी?
1: नहीं।
0: अच्छा तो फिर सुनो।

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: आ,
2: आ, आ, तुम तो बड़ी समझदार हो।
3: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, कुल्फी वाला बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो,
1: आइसक्रीम।
2: बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना।
1: अरे कोई खाने को दे तब ना।
2: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
1: लाओ अम्मा,
4: लाओ अम्मा,
2: लो।
4: गर्मी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
2: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
3: विजय श्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए

0: अपने प्राणों की आहुति दे दी।
1: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
2: What you heard right behind you was the sound of Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
3: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
0: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्ट आज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो मेरे। वैसे ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की 2 सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूं मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: हाँ, हाँ। पहनावे से तो कोई कबायली लगता है।
2: हाँ।
3: लेकिन इधर क्यों आ रहा है?
2: हाँ।
3: कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: हाँ, आने दो, आने दो।
4: ए, कौन हो तुम? रुका, रुका। जाओ वहीं रुक जाओ। रुका।
3: कौन हो तुम?
5: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब। मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
3: क्या सूचना?
5: साहब साहब दुश्मनों के बारे में।
3: अच्छा, यहीं रुको। चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
5: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
0: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
5: सर हम एक चरवाया हैं।
0: आगे बताओ।
5: सर ये 3 मई की बात है। कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
0: क्या देखा तुमने?
5: साहब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा है।
0: क्या?
5: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ।
0: कितने लोग रहे होंगे?
5: साहब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
0: ये तो बड़ी

0: जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
1: शाम मेरा गांव है। घर कौन? ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
0: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
2: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
0: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्को, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
2: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
0: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
2: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
0: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
2: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
3: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
4: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
3: ठीक कहते हो। अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
5: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
3: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
6: जी, यस सर।
3: ये मेज के चारों ओर।
5: जी सर।
6: उधर से।
3: हाँ जी। तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
6: जी सर।
3: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
6: जी सर।
3: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
6: जी सर।
3: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
4: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
3: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
7: यस सर।
3: अभी बज रहे हैं शाम के 5 बजे

0: और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
1: जी सर।
0: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
1: सर।
0: कोई शक?
1: नो सर।
0: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
2: यस सर।
3: अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
4: धीमे बोलो, धीमे।
3: जी,
4: उन्हें पता ना चल जाए।
3: जी सर।
4: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
3: जी।
4: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
3: ठीक है सर।
4: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
3: जी सर।
4: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
3: जी सर।
4: ठीक है, आगे बढ़ो, बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी जैसे।
3: धीरे।
4: बस अब हम चोटी पर आ गए हैं, तो अब रेंगना शुरू करो।
3: रेंगेंगे।
4: जी सर। कोई भी उठ कर नहीं जाएगा, सब रेंगेंगे। आवाज नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले।
3: हाँ सर। एवरीबॉडी रेडी?
5: यस सर।
0: अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।
2: फायर!

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा है कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। श्रोताओं, अब समय हो चला है हम आनंद लें फिल्मी गीतों का। आइए आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं कुछ नए फिल्म।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं नए फिल्मों के नगमे। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गोल्ड से यासिर देसाई की आवाज में।

विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे राघव चैतन्य और सचिन जिगर की आवाजों में। गीत को लिखा था प्रिया सरैया ने और संगीत दिया था सचिन जिगर की जोड़ी ने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म मैदान से ऋचा शर्मा और जावेद अली के युगल स्वरों में मनोज मुंतशिर के शब्द हैं, ए आर रहमान का संगीत।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी संसार।

नारी संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता सखी को आरती का प्यार भरा नमस्कार। सखी, हमेशा की तरह आज भी हम आपसे अपने चर्चा के जरिए आपसे ढेर सारी बातें आप सब श्रोता सखी के साथ साझा करेंगे, साथ ही आपको प्यारे प्यारे गाने भी सुनवाएंगे और हर दिन की तरह आज भी हम आपको वार्ता सुनवाएंगे हमारी रेडियो सखी रजनी जी से। पर उससे

मुकाबले करते हैं कुछ बातें। बहनों, क्या आपको पता है जैसे शरीर की शुद्धि के लिए साबुन की ज़रूरत होती है, वैसे ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग और ध्यान की आवश्यकता होती है। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम जीने का सही तरीका भुलाकर चिंता और तनाव में जीवन बिता रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि योग और फिटनेस, जी हाँ, योगा करने से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दरअसल योगा एक कला है जो तन, मन और शरीर को जोड़ती है, साथ ही इसे आप व्यायाम भी कह सकती हैं। इसके माध्यम से हम अपने शरीर के तत्वों को संतुलित करते हैं। इसके अलावा योग हमें ध्यान और मानसिक शांति पाने में भी मदद करता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि व्यस्त दिनचर्या के बीच फिटनेस और खुद के देखभाल के लिए समय निकालना मुश्किल हो सकता है, लेकिन स्वस्थ और संतुलित रहने के लिए ये ज़रूरी है कि खुद के लिए समय निकालें। आजकल के बच्चे के लिए जब पढ़ाई का दबाव और मानसिक तनाव बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में योग अभ्यास विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है। योग न केवल शरीर को स्वस्थ बनाता है बल्कि तनाव को भी कम करता है। योग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे मस्तिष्क को तनाव से दूर करने में मदद करता है। नियमित योगाभ्यास से शारीरिक मानसिक दोनों स्तर पर लाभ मिलता है। सखी बहनों, व्यायाम मानसिक अस्पष्टता को भी बढ़ाता है और बेहतर नींद को भी बढ़ावा देता है जो दैनिक जीवन में बहुत ज़रूरी है। साथ ही जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम करता है। नियमित व्यायाम हृदय रोग और मधुमेह जैसी आम समस्याओं को रोकने में भी ये मदद करता है। आपको बहनों, मानसिक स्वास्थ्य में ये वृद्धि लाता है। बहनों, बस आपको ये जानना है कि आप फिट हैं। योग तनाव, चिंता और अस्वाद को कम करता है, साथ ही आपको काम और दबाव को बेहतर ढंग से करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, योग और ध्यान जैसी गतिविधियां जो है वो अक्सर फिटनेस दिनचर्या का हिस्सा होती है, ध्यान और ध्यान को बढ़ाती है। ये बेहतर मानसिक, बेहतर स्वास्थ्य का बेहतर निर्णय लेने और जीवन के प्रति अधिक संतुलित दृष्टिकोण की ओर ले जा सकती है। बहनों, पोषण का भी ख्याल रखें, खासकर उन महिलाओं के लिए जो कई जिम्मेदारियां निभाती हैं। इसके लिए संतुलित आहार, वजन को नियंत्रित करें और ऐसे खाद्य पदार्थ पर ध्यान दें जो आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करें, जैसे फल, सब्जियां, प्रोटीन, साबुत अनाज और ऊर्जा के स्तर का भी समर्थन करता है। तो बहनों, स्वस्थ रहने के लिए एक संतुलित आहार अपने भोजन में जरूर शामिल करें। हम महिलाओं को अक्सर विशिष्ट पोषक संबंधी ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि आयरन या कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि, खासकर मासिक धर्म और गर्भावस्था में के दौरान आप सुनिश्चित करें कि आपका आहार भोजन के माध्यम से सभी पोषक तत्व जरूरतों के हिसाब से पूरा हो सके। तो बहनों, बातें आगे और भी करेंगे, उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा फिल्म संगीत।

0: बहनों, फिल्म संगीत में जाने से पहले हम आपसे बातचीत कर रहे थे, महिलाएं अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अब हम चलते हैं अगले चर्चा की ओर। बहनों, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं पैसे बचाने में और घर चलाने में काफ़ी अच्छी होती है। हम महिलाएं पैसे बचाने के लिए किसी बैंक अकाउंट या इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं अपनाती है। महिलाएं किचन से लेकर कमरे तक किसी किसी कोने में पैसे रखकर बचत कर लेती है। वे घर का बजट बनाने में भी महिलाएं आगे रहती हैं। ख़ास तौर पर उनके पास घर और किचन को संभालने के एक से एक जुगाड़ होता है। महिलाएं अक्सर घर का बजट बनाकर चलती है। खर्च अगर उस तय बजट से ज़्यादा हो रहा है तो वे उसे बड़े ही आसानी से मैनेज कर लेती है। इतना ही नहीं, महिलाएं अपने बजट में भी बचत को शामिल कर लेती है, बचत बना ही लेती है। हमेशा आमदनी और खर्च के हिसाब से वो चलती है। याद रखें, आपकी आमदनी कितनी है या आपके पास कितने पैसे हैं उसे लिखें, और आप जो भी खर्च कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं वो भी आप लिखें। ऐसे रिकॉर्ड रखने से आप इस बात को आसानी से समझ सकेंगे कि आप कितने पैसे खर्च करती हैं और कितना पैसा आप महीने में बचा लेती हैं। तो बहनों, आइए इसे विस्तार से हम समझते हैं रजनी जी से।
1: अरे, हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: नमस्कार श्रोता बहनों, आप सुन रहे हैं नारी संसार का एक छोटी मुलाकात अंक, जहां हम बात करते हैं नारी शक्ति, परिवार, स्वावलंबन और जिम्मेदारी की। मैं हूं आपकी रेडियो सखी रजनी। आज का विषय है आमदनी के हिसाब से खर्चा करें, एक ऐसा विषय जो हर गृहिणी, हर परिवार और हर इंसान के जीवन से जुड़ा है। हम सबकी यह कोशिश होती है कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, जरूरतें पूरी हो और थोड़ी बचत भी हो। लेकिन जब खर्च आमदनी से ज्यादा होने लगता है तो परेशानी का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसीलिए जरूरी है कि चादर देखकर पैर फैलाएं, यानी आमदनी के हिसाब से ही खर्चा करें। तो आइए जानते हैं कुछ आसान उपाय और समझदारी भरी बातें जो महिलाओं को जानना चाहिए। हर महीने की शुरुआत में एक छोटा सा बजट बनाना चाहिए, जैसे राशन, स्कूल फी, बिजली, पानी का बिल, दवाई और इमरजेंसी के लिए थोड़ी बचत। बजट से खर्चा करना हमें फालतू खर्चों से बचाता है, यकीन मानिए। कई बार हम ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो केवल दिखावे या तत्कालिक सुख के लिए होती है। जरूरत की चीजें हमेशा पहले रखें और चाहत को बाद के लिए टालें। हर महीने चाहे जितनी भी आमदनी हो, कुछ हिस्सा बचत खाते में जरूर डालें, चाहे वो 50 हो या 500। आदत ही भविष्य को सुरक्षित बनाती है। उधारी लेने से बचना चाहिए। अगर हम हर छोटी जरूरतों के लिए उधार लेने लगेंगे तो कर्ज का बोझ बढ़ता जाएगा। कोशिश करें कि उधारी केवल बहुत जरूरी स्थिति में ही लें और समय पर चुकाएं, अन्यथा यह बढ़ता जाएगा। बच्चों को भी सिखाएं बचत करने के तरीके। बच्चों को भी पैसे की कीमत बताएं। पॉकेट मनी देने से पहले समझाएं कि कैसे खर्च करें, कैसे बचत करें। इससे वे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। एक समझदार गृहिणी वही है जो घर को प्यार से संभाले और खर्च भी सूझबूझ से करे। हमारे पूर्वज कहते थे, जितनी

0: चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। आज की महंगाई में यह बात पहले से भी ज्यादा सच्ची लगती है। अगर हर परिवार में आमदनी के हिसाब से खर्चा किया जाए तो न केवल तनाव कम होगा बल्कि भविष्य सुरक्षित होगा। तो चलिए आज से हम यह संकल्प लें कि चाहे आमदनी कम हो या ज्यादा, हम खर्चों को सोच समझकर करेंगे, बचत को प्राथमिकता देंगे और परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इजाजत दें अपनी रेडियो सखी रजनी को। याद रखिए, बचत में ही समृद्धि और समझदारी में ही सुख है। नमस्कार।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: बहनों, अंतराल में जाने से पहले हम आपसे बातचीत कर रहे थे। कामकाजी महिलाएं अपने हिसाब से खर्च करें। आप वार्ता सुन रही थी हमारी रेडियो सखी रजनी दीदी से। तो बहनों, आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो सखी आरती। बहनों, अब हम चलते हैं अगले चर्चा की ओर। बहनों, कामकाजी महिलाओं के लिए घर और दफ्तर के बीच संतुलन बनाते हुए स्वास्थ्य का ध्यान रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है स्वस्थ रहना। जी हाँ, कामकाजी महिलाओं दूसरों की तुलना में दोगुनी मेहनत करती है, क्योंकि उन्हें घर के कामों के साथ उन्हें ऑफिस यानी कि बाहर का भी काम देखना होता है, जिससे खुद के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। हम महिलाएँ आमतौर पर अपनी सेहत के लिए ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण न जाने कितनी बीमारियों के चपेट में आ जाती है। ये एक महिला में चिंता, अवसाद और किसी काम का न होने जैसी मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां का कारण बन सकती है। खासकर महिलाएं दूसरे की ज़रूरतों को पहले रखती हैं और खुद को पीछे रखती हैं। इससे खुद के लिए समय निकालना और समाधान जुटाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, महिलाएं समाज का अभिन्न अंग है और फिर भी उनके मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि सभी महिलाएं श्रमिक हैं। जी हाँ, कुछ घर पर कड़ी मेहनत करती हैं तो वही कुछ घर और बाहर दोनों तरफ काम करती है, साथ ही अपने परिवार की देखभाल करती है। महिलाएं परिवार को खुश करने के लिए सब कुछ करती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की ज़रूरत है। हर महिला को अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो बहनों, स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए सबसे पहले तो हमें तनाव मुक्त होकर जीवन जीना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना दैनिक लक्ष्य सोच कर चले, जिससे कि हमें कम से कम तनाव हो। और पहले से पता होना चाहिए कि आज हमें कौन सा काम करने हैं, और हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन से काम को प्राथमिकता देनी है, जिससे फालतू का टेंशन ना हो। हम अपनी एक नियमित दिनचर्या बनाएं और समय पर अपने काम करें, और खाने पीने में भी ये ध्यान दे कि कौन सी चीज़ें नुकसान करती है उसे कम खाए। खाने में स्वाद से ज़्यादा उसकी पौष्टिकता पर भी ध्यान देना चाहिए। खाने में सलाद को ज़रूर शामिल करें, जैसे खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, प्याज, नींबू का सेवन ज़रूर करें। शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए खूब पानी पिए। बासी खाना का सेवन बिल्कुल भी ना करें। जंक फूड जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज बिल्कुल भी ना खाए। साथ ही चाय और कॉफ़ी का सेवन कम करें। इसके अलावा अधिक तले भुने और मसालेदार भोजन से बचें। इतना ही नहीं, हरी धनिया और पुदीना की चटनी अवश्य खाए। दिन में कम से कम 2 से 3 बार आप अपनी चेहरा को भी धोए। फलों का प्रयोग अधिक से अधिक करें।

और नियमित व्यायाम जरूर करें। साथ ही शरीर और दिमाग को तरोताजा रखने के लिए 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लें। तो बहनों, बातें आगे और भी करेंगे, पर उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा फिल्म संगीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: तो बहनों, मौसम बदल रहा है, तो बदलते मौसम में अपना ख्याल रखें, डिहाइड्रेशन रहने के लिए भरपूर पानी पिए और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तो बहनों, घड़ी की सुई हमें इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए अपनी सखी आरती को विदा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दरभंगा से आपने सुना। अब हम जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचारों के लिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वित्री कड़गम सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रमुख विपक्षी दल डीएमके ने कार्यवाही के दौरान विधानसभा से वॉकआउट किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को सदन में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली थीं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के एन नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है।

0: विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रभदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीप वांछित था। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्नपत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,881 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 201 अंक बढ़कर 74,760 पर, जबकि निफ्टी 77 अंक के साथ 23,457 पर पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है मीडियम वेव के 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब जानकारी प्राप्त करें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रमों की।

इस सभा के कार्यक्रमों में हम ध्यान दें तो अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। फिल्म संगीत का समय होगा 1:15, प्रादेशिक समाचार 2:00, इलाकाई खबरें 2:05 पर, रोजगार सूचना आप सुनेंगे 2:10 से, और समाचारों के बाद एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आएंगे फिल्म संगीत, समय होगा 2:30, सुगम संगीत का समय होगा 3:00। ये जानकारियां इस सभा के कार्यक्रमों की थी।

हम एक नज़र डालें दूसरी सभा के कार्यक्रमों पर। दूसरी सभा के कार्यक्रम में आप सुनेंगे तरुण कुसुम संध्या 5 बजे, फिल्म संगीत 5:40 से, हिंदी समाचार 6 बजे, कार्यक्रम विवरण 6:05 पर आप पुनः सुन पाएंगे। 6:10 समय होगा विद्यापति गीत का। मैथिली संवाद 6:25 से हमारे पटना केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। गांव घर के अंतर्गत आज आप सुनेंगे अंगना, महिलाएं स्वयं सहायता समूह से कैसे उठाएं लाभ, चर्चा का विषय आज ये रहेगा। और साथ ही आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस, खेती गृहस्थी के अंतर्गत सुनेंगे चर्चा मृदा स्वास्थ्य कार्ड की उपयोगिता, और समसामयिक कृषि कार्य ये भी आज की चर्चा का विषय होगा। फिल्म संगीत 7:52 से आप सुनेंगे दूसरी सभा के कार्यक्रमों में। सिंगरहार का समय होगा 8:15 पर, चर्चा का विषय है 9:30 पर दिल्ली से प्रसारित ये कार्यक्रम हम आप तक पहुंचाएंगे। 10 बजे लोक माधुरी का समय होगा और 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों के रंग।

0: अभी हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रमों की।
1: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
2: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
3: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
2: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
1: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते

0: हम एक हैं। भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
1: जनकपुर जाने के लिए आए,
0: कभी खरीदारी भी करते हैं।
2: हिंदी वाला सामान किनना,
0: सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियां।
3: मैं चाहता हूं कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
0: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
4: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
0: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: ये आकाशवाणी दरभंगा है। अब प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ये देशभक्ति गीत आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से आपने सुना। 1:15 हो चुके हैं, अब समय हो चला है फिल्म संगीत का। आइए आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म का ये गीत है, अनुराधा पौडवाल की आवाज है, समीर का लिखा ये गीत है। आइए सुनते हैं।

0: नागन को देवर समझ रहा है? नादा, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डसले तो क्या कहना।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

मुद्दत। इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे पटना केंद्र से होगा।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की गई है। सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है।

0: वहीं छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 257% से बढ़ाकर 262% कर दिया गया है। इसके साथ ही पांचवें वेतनमान वाले कर्मियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 474 से बढ़ाकर 483% कर दिया गया है। प्रदेश की सरकार ने किशनगंज में सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर के लिए 110.12 एकड़ जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालय को मुफ्त हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के महाविद्यालयों में 132 नए पदों के सृजन की मंजूरी भी मिली है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इन वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने की योजना बनाई है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के तहत महिलाओं समेत अन्य वर्गों को डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेशवासियों से ईंधन की बचत के लिए जरूरत पड़ने पर ही वाहनों का उपयोग करने की अपील की है। श्री चौधरी ने कहा कि ऊर्जा संकट को देखते हुए नागरिकों को ईंधन बचत करनी चाहिए। उन्होंने लोगों से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और इसके अधिक इस्तेमाल पर भी जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने कारकेड में वाहनों की संख्या न्यूनतम रखने का निर्णय लिया है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि सभी राजस्व कर्मचारी अपने अपने हलके में सप्ताह के 5 दिन कार्य करेंगे। श्री जायसवाल ने अंचलाधिकारियों को जारी निर्देश में कहा है कि प्रतिदिन कार्यालय में होने वाली बैठक को समाप्त कर राजस्व कर्मचारियों की अपने हलके में उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि केवल शनिवार को राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालय में बैठक के में शामिल होंगे, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर ऑनलाइन माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इसके अंतर्गत पहले चरण में मकान सूचीकरण का कार्य किया जा रहा है। इससे पहले 7 मई से 21 मई तक स्वगणना की प्रक्रिया की गई थी। मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी सह निदेशक रंजीता ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि मकान सूचीकरण के तहत प्रगणक स्वगणना के दौरान दर्ज गलत जानकारी को संशोधित कर सकेंगे। उन्होंने लोगों से इस बीच साइबर फ्रॉड को लेकर भी सतर्क रहने के लिए कहा है। राजधानी पटना, अररिया और कटिहार समेत प्रदेश के 6 जिलों में कल ब्लैक आउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉक ड्रिल के तहत कल शाम 7 बजे से 7:10 तक पूर्व निर्धारित नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत ब्लैक आउट किया जाएगा। पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन SM ने बताया कि इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सार्वजनिक लाइटें बंद कर दी जाएंगी। जिलाधिकारी ने लोगों से अपने घर, दुकान और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सभी लाइटें बंद रखने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जमुई, बांका, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर और सहरसा सहित कई जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान धूल भरी आंधी चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष मानसून का आगमन निर्धारित समय से पहले होने की संभावना है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
2: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-आला सम्राट चौधरी की सदारत में हुई पहली काबीना की मीटिंग में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया गया है। सातवें शरह

तनख्वाह वाले मुलाजमीन और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। वहीं छठे शरह तनख्वाह वाले मुलाजमीन और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 257% से बढ़ाकर 262% कर दिया गया है। इसके साथ ही पाँचवें शरह तनख्वाह वाले मुलाजमीन और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 474 से बढ़ाकर 483% कर दिया गया है। रियासती हुकूमत ने किशनगंज में CISF ट्रेनिंग सेंटर के लिए 110.12 एकड़ ज़मीन व मरकज़ी वजारत दाखिला को मुफ्त मुंतकिल करने की मंजूरी दी है। आला तालीम को फ़रोग देने के लिए रियासत के कॉलेजों में 132 नए ओहदों को मंजूरी भी मिली है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ख़रीद पर सब्सिडी देने का मंसूबा बनाया है। इलेक्ट्रिक गाड़ी पॉलिसी 2023 के तहत ख़वातीन समेत दीगर तबकों को DBT के ज़रिए हौसला अफजा रकम दी जाएगी। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने रियासत के बाशिंदों से ईंधन की बचत के लिए ज़रूरत पड़ने पर ही गाड़ियों का इस्तेमाल करने की अपील की है। जनाब चौधरी ने कहा कि तवानाई बहरान को देखते हुए शहरियों को ईंधन की बचत करनी चाहिए। उन्होंने लोगों से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ख़रीद और उसके ज़्यादा इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया है। वज़ीर आला ने अपने कारकेड में गाड़ियों की तादाद कम अज़ कम रखने का फ़ैसला लिया है। वज़ीर इस्लाहात एराजी व महसूलात दिलीप जायसवाल ने कहा है कि सभी महसूलात मुलाजमीन अपने अपने हलके में हफ्ता में 5 दिन काम करेंगे। जनाब जायसवाल ने सर्किल अफसरान को जारी हिदायत में कहा है कि रोज़ाना दफ्तर में होने वाली मीटिंग को ख़त्म करके महसूलात मुलाजमीन अपने हलके में मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ शनिचर को महसूलात मुलाजमीन सर्किल दफ्तर की मीटिंग में शामिल होंगे, साथ ही ज़रूरत पड़ने पर ऑनलाइन के ज़रिए मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। मर्दमशुमारी 2027 का पहला मरहला 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इसके तहत पहले मरहला में मकान की फहरिस्त साजी का काम किया जा रहा है। इससे कबल 7 मई से 21 मई तक खुदशुमारी का अमल किया गया था। चीफ प्रिंसिपल मर्दमशुमारी अफसर नीज डायरेक्टर रंजीता ने आकाशवाणी समाचार से खसूसी बातचीत में बताया कि मकान फहरिस्त साजी के तहत शुमार कुनिंदगान खुदशुमारी के दौरान दर्ज गलत मालूमात को दुरुस्त कर सकेंगे। उन्होंने लोगों से इस बीच साइबर फ्रॉड को लेकर होशियार रहने के लिए कहा है। राजधानी पटना, अररिया और कटिहार समेत रियासत के 6 ज़िलों में कल ब्लैक आउट मॉक ड्रिल का इनाकाद किया जाएगा। मॉक ड्रिल के तहत कल शाम 7 बजे से 7:10 तक कबल से तयशुदा शहरी तहफ्फुज़ कोशिशों के तहत ब्लैक आउट किया जाएगा। पटना के ज़िला मजिस्ट्रेट त्यागराजन SM ने बताया कि इस दौरान इमरजेंसी खिदमात को छोड़कर सभी प्राइवेट लाइटें बंद कर दी जाएंगी। ज़िला मजिस्ट्रेट ने आवाम से अपने घर, दुकान और सनती इदारों की सभी लाइटें भी बंद रखने की अपील की है। महकमे मौसमियात ने आज जमुई, बांका, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर और सहरसा समेत कई अज़ला में बारिश और बिजली गिरने के पेश नज़र अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गर्द आलूद आंधी चलने की भी तंबीह जारी की गई है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि इस साल मानसून की आमद मुकर्ररा वक्त से कबल होने का इम्कान है। इसके साथ ही इलाकाई ख़बरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।

मीडियम वेव 231 है, 10.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब सुनिए रोजगार सूचना।

बीपीएससी। 72वें बीपीएससी के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन आरंभ होने की तिथि है 7/5/2026 और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31/5/2026। बीपीएससी में आवेदन

करने के लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन होना चाहिए। चयन प्रक्रिया में हम बात करें तो चयन प्रक्रिया होगी पीटी, मेंस और इंटरव्यू। वेबसाइट bpsconline.bihar.gov.in। आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गया है 29 अप्रैल से। अंतिम तिथि है 20 मई। शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी वाले यानी दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया पीटी और मेंस के जरिए चयन किया जाएगा। वेबसाइट होगा www.rbi.org.in।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अप्रेंटिस के 1644 1644 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, आईटीआई की डिग्री भी होनी चाहिए। आयु सीमा अधिकतम 24 वर्ष। एससी एसटी ओबीसी को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। निःशुल्क आवेदन है। आवेदन करने के लिए www.apprenticeshipindia.gov.in पर आप आवेदन कर सकते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 1865 पदों पर आवेदन है आमंत्रित। शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन की डिग्री हो, ग्रेजुएशन का रिजल्ट 1 अप्रैल 2026 या उससे पहले जारी हो जाना चाहिए। आयु सीमा न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क सभी उम्मीदवारों के लिए ₹944 है। आवेदन करने के लिए आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया .co.in वेबसाइट को देख सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। आकाशवाणी का यही दरभंगा केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मानसून जल्दी आने की संभावना।

0: और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रेजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रहित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

0: सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसे हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति

किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य 4 मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दरभंगा है, मीडियम वेव के 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। एक बार हम फिर से हाजिर हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम के साथ।

लगान। इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और आशा भोसले के युगल स्वरों में। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज के सुगम संगीत में हम आपको सुनवाएंगे राजन कुमार मिश्र, मंजूर खां और उज्ज्वल कुमार के गाए कुछ सुगम संगीत।

ये आवाज़ थी मंजूर खान की। इनके साथ ही आज के कार्यक्रम में आपने सुना राजन कुमार मिश्र और उज्जवल कुमार को। सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:20 हो चुके हैं। समाप्त होती है हमारी आज की पहली सभा। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें।

0: बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने कितनी उड़ान।

0: तो भाई सोनाली, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा विषय है कि खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। तो हमारे साथियों ने देखो बहुत सारे
1: भर भर के
0: संदेश
1: कमेंट्स लिखे हैं।
0: भर भर के लिखे हैं कमेंट्स। और देखो मनुष्य के जीवन में भोजन का जो स्थान है ना, वो तो
1: बहुत
0: बहुत
1: महत्वपूर्ण।
0: महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन चलता नहीं है। शरीर के लिए सब चीज़ों की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन की है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता ना सोनाली, बल्कि जीवन को चलाने वाली वो शक्ति होती है। अन्न के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम रसोई में सोच ही नहीं सकते कि ये चीज़ हमारे पास होगी या नहीं होगी। हम सब चीज़ें खरीद लाते हैं। हमारा यही कारण है कि हमारे देश में अन्न को देवता का रूप माना गया है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो अन्न के देवता को, देवी को याद करते हैं। और देखो पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक सुबह चाय हो गई, फिर सीधा सादा खाना हो गया, फिर दोपहर की शाम की चाय हो गई और रात का खाना सादा। सब सादगी पूर्ण था जीवन। उस समय शरीर स्वस्थ भी रहता था, लेकिन धीरे
1: बहुत
0: धीरे
1: स्वस्थ रहते
0: बहुत
1: थे
0: स्वस्थ
1: और
0: रहते
1: काम
0: थे।
1: कितना करते थे पुराने जमाने के लोग।
0: बहुत लोग सब घर में चक्की भी चलना है, तो
1: हाँ,
0: गेहूं भी पछोरना है, ये
1: पानी
0: सारे काम,
1: भरना
0: पानी
1: है,
0: भरना है,
1: कुएं से
0: धूप,
1: पानी निकालना है,
0: हाँ
1: कितना सारे काम
0: बहुत सारे
1: करते
0: काम
1: थे।
0: थे, तो उसमें फिटनेस रहती थी बॉडी को। लेकिन आज के समय में जो हमारी जीवन हो गया है, भागदौड़ की जिंदगी जो हो गई है, भोजन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जो है बदलता जा रहा है। उन्हें स्वाद और दिखावा और फैशन दिखता है, जिसमें भोजन को, वास्तविक उद्देश्य को पीछे छोड़ देता है। और इसी कारण ये प्रश्न विचारणीय भी बन गया है सोनाली, कि क्या हम जीने के लिए खाते या खाने के लिए जीते हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है, मंजरी, भोजन चाहे जीवन जीने के लिए हो या जीवन भोजन के लिए हो, दोनों ही जरूरी है। वो तो हम अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उस भोजन को किस नज़रिए से देखते हैं। कुछ लोग रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं, उनको कह सकते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। और कुछ लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन करके भी अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाते, उनको कह सकते हैं कि सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। पर ऐसी बात नहीं है, हम पौष्टिक भोजन भी खा के, यानी खाने के लिए जी सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जंक फूड खा के ही जीना है। बहुत सारे पौष्टिक हमारे तो हमारे भोजन में, तो
0: आहार में,
1: इतनी आहार में इतनी पौष्टिकता भरी हुई है।
0: हर सीजन में देखो, हर सीजन की सब्जियां मिलती, हर सीजन के फल मिलते हैं। अगर हम उनको भी खाएंगे ना, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं,
1: रह
0: जीवन
1: सकते हैं।
0: गुजार सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें बहुत फास्ट फूड पर हम जाएं, जंक फूड पर जाएं,
1: जी
0: है ना। और हमारे साथी और लिखते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, तब यही जवाब रहेगा, जीने के लिए खाना जरूरी होता है। यानी ईट टू गो, ईट टू लाइव। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन हमारे शरीर का ईंधन है, जो हमें पोषक तत्व देकर उम्र के साथ साथ ऊर्जा और बुद्धि भी बढ़ाता है। अगर खाना स्वाद पर केंद्रित होगा या चटकारे भोजन पर ध्यान केंद्रित होगा, तो पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी खाओ, जीने के लिए खाओ। एक बात कान से खाने से की भी ये काम की मतलब कह दूं कि विविध भारती के मधुर गीतों का रसस्वादन सेहत के लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है। आपने बहुत अच्छी सी बात इसमें शामिल कर दी है।
1: एक
0: जी
1: हमारी सखी ने लिखा है कि कुछ समय पहले तक मैं जो भी मिल जाता था खा लेती थी, कभी यह सोचने का समय नहीं मिला कि जो खा रही हूँ उसमें पोषण है भी नहीं। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आई, तब समझ में आया कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को ऊर्जा देने का आधार है। और उन्होंने कहा है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर स्वाद के पीछे स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, जबकि सही मायने में हमें जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि केवल खाने के लिए जीना चाहिए। संतुलित और पौष्टिक भोजन ही स्वस्थ शरीर और शांत मन और अच्छे जीवन की असली पहचान है। अब एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल
1: सुनते हैं गीत।

0: अच्छा खाना सामने हो ना तो हमारी पायल थिरकने लगती है, हमारी
1: वही
0: पायल
1: मैं
0: बजने
1: देख रही थी। तो
0: लगती
1: देखो मेरे एक साथी लिखते हैं कि मैं सूरत का रहने वाला हूँ और सूरत का खाना और काशी का डैश डैश फेमस है। सो तो मैं खुले पेट से सबको कहता हूँ कि हाँ मैं चटोरा हूँ, खाने के लिए जीता हूँ। स्वर्ग या नरक में ना जाने खाने को मिले या ना मिले, भगवान को भी लगना चाहिए कि मेरा भेजा बंदा खा पी कर धरती से लौटा है। बहुत इन्होंने हंसने वाले स्माइलीज लगाए हैं। और अगला संदेश क्या है
0: बहुत सारे हमारे
1: हमारे, अच्छा
0: साथियों
1: एक
0: ने
1: साथी और लिखते हैं, सुना ली हम पढ़ लेते हैं कि पहली बात तो खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, इसलिए खाने के लिए जीना चाहिए, उससे अच्छी सेहत होती रहती है और जब तक स्वस्थ है तब तक जी भर कर खाना चाहिए, लेकिन योग और वॉक करना चाहिए,
0: और
1: है
0: अब
1: ना।
0: लेते हैं एक
1: अंतराल
0: ब्रेक।

0: तो सोनाली क्या कमेंट तुम देख रही थी बड़ी देर से?
1: बहुत सुंदर हमारे साथियों ने हमारे कमेंट्स लिखकर भेजे। एक लिखते हैं कि भाई खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं, जो भी हम खाते हैं हमारा जीवन बन जाता है, इसलिए भोजन कृतज्ञता के भाव के साथ खाना चाहिए। कहते हैं कि भोजन के द्वारा हम किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं, मतलब भोजन जीवन है। जीने के लिए खाना जीवन का संतुलन सिखाता है, जबकि खाने के लिए जीना अक्सर स्वाद की आदत बन जाता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा, मन को संतोष और रिश्तों को मिठास देने वाला माध्यम है। स्वाद जीवन का आनंद है, लेकिन स्वास्थ्य उसकी असली पूंजी है। इसलिए शायद सही बात यही है कि हम ऐसा खाएं जो जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित बनाए, क्योंकि अच्छा जीवन केवल स्वाद से नहीं, अच्छे स्वास्थ्य और सुकून से भी बनता है।
0: क्या
1: क्या
0: बात
1: बात
0: है।
1: है, बहुत सुंदर
0: और
1: बात।
0: हमारे साथी लिखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं, और जब समझ में आता है कि जीने के लिए समतौल खाना जरूरी, तब तक वक्त निकल चुका होता है। इसलिए जीवन करी जीविता, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे, जानिजे यज्ञ कर्म। ये बात सही पर सही समय पर जान लो। अर्थ है इसका कि शरीर का यज्ञ शुरू रहने की समाधि यानी खाना होता है, ये बात पहचान लो। बहुत सुंदर सी बात आपने लिख कर भेजी है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि जीने के लिए खाना एक जैविक और तार्किक आवश्यकता है, जबकि खाने के लिए जीना जीवन के रंगों और खुशियों का आनंद लेने का तरीका है। एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए अनिवार्य है कि हम जीने के लिए खाएं, लेकिन कभी कभी खाने का आनंद इस तरह से ले मानो हम उसी के लिए जी रहे हैं। सुनाली, एक किस्सा मुझे याद आ गया कि जिम में हमने देखा कि सीढ़ी पर चढ़ के खिड़की थी, तो वहाँ खिड़की के पास स्पेस था, तो एक लड़की है काफ़ी हैवी थी, वो चढ़ी वहाँ बैठ गई और बैग से निकाल के उसने बर्गर लेके आई थी, और अंकल चिप्स थे उसके, चिप्स थे और ठंडा कोल्ड ड्रिंक थी, तो बस वो उसके साथ बैठ के खा पी रही थी। तो मैं चढ़ रही थी, मैंने पूछा उसको कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? कहती भूख बहुत लगी, पहले खा लूँ फिर जाके कर लूंगी। तो उसका ये है कि वो खाने के लिए जी रही थी,
1: नहीं
0: ऐसा
1: देखिए,
0: लग रहा था।
1: खाने के लिए जीना ज़रूरी है, पर अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो वो जी पाएंगे ना अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही जी सकते हैं, उसमें भी अब बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखिए, जैसे हमने भेलपूरी और दाबेली का ऑप्शन दिया है, तो मैं एक उसमें पौष्टिक भेल की भी रेसिपी बताऊंगी कि
0: क्या बात
1: ऐसा
0: है।
1: नहीं है कि हमेशा जंक फूड खा के ही, उसमें भी हम बहुत उसमें हेल्दी ऑप्शन ले सकते
0: ले
1: हैं।
0: सकते हैं।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, जो शरीर के लिए फायदेमंद है वो भोजन नियमित तरीके से खाना चाहिए। सीजनल सब्जी और फल का सेवन करना चाहिए। डब्बा बंद और गैर मौसमी फल, सब्जी और अनाज से बचना चाहिए। अपने रहने के एक लिमिटेड दायरे में उगने वाली फसल का उपयोग अधिक करना चाहिए। यानी हम जहाँ रहते हैं वहाँ उगने वाली जो सब्जियाँ होती हैं, वो फल होते हैं ना, उसे हमें प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसा
0: बिल्कुल।
1: होता है कि हम विदेशी फलों को, विदेशी सब्जियों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देने लग गए हैं। वो भी अच्छे हैं, पर जो हमारे हैं, जैसे अब हम बचपन में कितने जो है ना जाम, अमरूद खाते थे,
0: हाँ,
1: बेर
0: सारे
1: खाते
0: फल
1: थे, गन्ना।

0: खाते थे, तो अब वो बच्चे भूलते जा रहे हैं, पर उनमें भी बहुत ज्यादा विटामिन्स मिनरल्स मौजूद होते हैं।
1: बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि गन्ने को कैसे मतलब
0: खाया
1: जाता है, चूसा जाता है, क्या किया जाता है, तो उन्हें बताना पड़ता है कि भाई गन्ने को चूसना पड़ता है। उन्हें चने के साग का स्वाद नहीं पता है, उन्हें झरबेरी का स्वाद नहीं पता है,
0: तो उन्हें कैसे मालूम होगा, हमने ही नहीं बताया।
1: हाँ, हम नहीं बता रहे उनको, हम उन जगह लेके नहीं जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी गलती अपने लोगों की कही जा सकती है। चलो फिर एक संदेश पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं कि शरीर को चलाने के लिए भोजन से जितनी एनर्जी चाहिए उतना भोजन चाहिए ही। कभी कभार भोजन स्वादिष्ट होने के साथ होने के कारण कुछ ही ज़्यादा खा लिया जाता है तो पेट में तकलीफ हो जाती है, इसलिए भोजन को एक लिमिट में ही करना चाहिए। और एक हमारा संदेश है सोनाली, उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है कि ज़्यादातर तो सभी जीने के लिए ही खाते हैं, वैसे भी आजकल तो नाप तौल का खाना होता है, ये मत खाओ वो नुकसान करेगा, इस तरह की बातें नहीं लिखी हैं। और हम अपने साथियों से कहेंगे कि हिंदी में ही संदेश लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहता है,
0: वैसे पढ़ने में दिक्कत पढ़ नहीं आती
1: ना। हाँ, वो इजिली से आंखों में अटैक कर जाता है, हालांकि मैंने इनका संदेश पढ़ लिया है।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, खाने के लिए जीना है दृष्टिकोण भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन के परम आनंद और उत्सव के रूप में देखता है। भोजन के स्वाद विविधता और उससे मिलने वाली मानसिक संतुष्टि को प्राथमिकता देना, नई संस्कृतियों व्यंजनों और स्वादों को खोजना एक कला है। यह सामाजिक मेलजोल को बढ़ाता है। अच्छा खाना मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है जो तनाव कम करने और खुशी देने में मदद करता है। अत्यधिक स्वाद लोलुपता से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है जैसे अपच या वजन बढ़ सकता है।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का पहला विषय बहुत ही रोचक है। मेरा मानना है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए क्योंकि सादा और पौष्टिक भोजन ही हमें स्वस्थ ऊर्जावान रखता है, लेकिन कभी कभी स्वाद के लिए पसंद का खाना खाने में भी एक अलग ही खुशी है। और अक्सर लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, लेकिन लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए जीने के लिए खाना ही सही मंत्र है। अगर हम खाने पर नियंत्रण रखेंगे तो शरीर हमारा जो है हमेशा साथ देगा। और सोनाली, एक साथी ने हमारे और इंग्लिश में कमेंट लिखकर भेजा है, जब हम खाना खाते हैं तभी तो हम जीते हैं, अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए खाना भी ज़रूरी है और जीना भी ज़रूरी है। जब तक है जीना जब तक खाएंगे खाना। तो ये बात आपने अच्छी लिखी है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगली बार आपका संदेश हिंदी के शब्दों में आए, है ना। और क्या करें, सुने गीत,
0: सुन लेते हैं गीत।

0: तो सोनाली कौन सा कमेंट तुम पढ़ने वाली हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं, बल्कि रोशनी फैलाना होता है। ठीक वैसे ही जीवन का उद्देश्य केवल खाना नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और खुशियों से जीवन को सुंदर बनाना है। इसलिए हमें भोजन का सम्मान करते हुए संयम और संतुलन के साथ जीवन जीना चाहिए।
0: क्या बात है। और हमारे साथी जो है, उन्होंने छोटा सा संदेश लिखा है, खाने पीने क्या शर्मा ना, कम खाओ गम खाओ, सेहत जोरदार शरीर कभी शानदार। और एक साथी लिखते हैं, एक प्रसिद्ध कहावत का अंग्रेजी अनुवाद है, ईट गो लाइव, ईट टू लाइव और लाइव टू ईट होता है, खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। इस विषय पर कॉलेज में इंग्लिश में निबंध आता था। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है।
1: और एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि हिलियर्ड कहते हैं कि जीने के लिए खाना खाने का मतलब है भोजन को शरीर के लिए ईंधन की तरह मानना। अक्सर इसके विपरीत खाने के लिए जीना वाला दृष्टिकोण ये दर्शाता है कि आनंद का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से या पूरी तरह से खाने के अनुभव में ही निहित हो जाता है, जो हिलियर्ड के अनुसार आमतौर पर अस्वास्थ्यकर विकल्पों को जन्म देता है।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं, जीने के लिए खाना खाते हैं वो भी घर का बना हुआ स्वादिष्ट वेजिटेरियन फूड, प्राकृतिक सब्जियां, फल और फ्रूट्स। बहुत अच्छी सी बात है, आप बिल्कुल संभाल करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। और हमारे सभी साथी भी बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। लेकिन हमारे एक साथी और लिखते हैं कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं, बल्कि रोशनी फैलाना है। ठीक वैसे ही जैसे लगता, तुमने ये पढ़ा है क्या?
1: ये पढ़ दिया है।
0: अच्छा, तभी तुम इशारे कर रही थी। चलो अच्छी बात है, उनको थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो देख, दूसरा कमेंट हम ले लेते हैं सोनाली। खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे हर एक का ही स्वास्थ्य प्रभावित हुआ करता है। जो लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं, वे ही खाने के लिए जीते हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वे अपनी जीभ पर लोलुपता पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए विपरीत, जो लोग

0: खाने के लिए जीते हैं, खाते हैं वे सुस्वाद भोजन के साथ ही षडश युक्त संतुलित भोजन के लिए सेहतमंद और आनंद में रहते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में देखती जा रही थी पढ़ते पढ़ते कि कहीं तुमने इसको भी तो नहीं पढ़ लिया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है श्रोता भाइयों कि लगता है कि हाँ ये नहीं पढ़ा, तो पता चलता है दूसरा इशारा कर रहा होता है ना।
1: ये
0: तो
1: टेक्नोलॉजी में ऐसे ना थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती
0: लेकिन
1: है
0: ना इसमें मजा आता
1: ना।
0: है, जिसको लगे अरे मैंने दोबारा पढ़
1: और अगर हमने गलती को है ना,
0: लिया।
1: अपनी गलती को भी आत्मविश्वास के साथ बोल दिया कि हाँ हमने गलती कर ली,
0: हाँ, तो
1: तो
0: कोई
1: वो
0: दिक्कत नहीं,
1: आत्मविश्वास भी अच्छा लगता है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: बिल्कुल।
1: आज ये शब्द हमारा विचार आपके इस विषय में, हमारा विषय है आत्मविश्वास। हमारे साथियों ने भी बहुत भर भर के कमेंट्स लिखे हैं आत्मविश्वास। वो सचमुच मंजरी आत्मविश्वास जो ऐसा शब्द है ना, अगर हम उसे अपना ले, यानी कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है तो कितने भी कठिन से कठिन काम हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। फिर
0: बिल्कुल
1: वो कोई कला है, उसके बाद में कोई भी प्रस्तुति है, अगर वो प्रस्तुति में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भी चलेगा, पर उसमें अगर आत्मविश्वास होगा तो वो कला दिल को छू जाती है।
0: बिल्कुल। हमारे साथी लिखते हैं इसी बात पर कि आत्मविश्वास शब्द में ही इसका अर्थ शामिल है। आत्म यानी खुद पर, विश्वास मतलब भरोसा, अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसे अगर परिभाषित किया जाए तो जिन्हें हम अपनी अक्षमताओं, कौशलों और निर्णय लेने की क्षमता पर अटूट भरोसा हो, वो आत्मविश्वासी कहा जा सकता है। जो बिना डर हर चुनौतियों का सामना कर सकता है, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस बात पर गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन करे तो हम कोई भी जगह जा सकते हैं, कोई भी कठिन कार्य कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी बात लिखी
1: एक
0: आपने।
1: हमारे सखी ने लिखा है कि अपनी असफलताओं पर ना डरते हुए अपने काम पर भरोसा, सही मायने यही आत्मविश्वास होता है। अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और निर्णयों पर अटूट भरोसा है, ना कि केवल अहंकार। ये अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करने की सकारात्मक मानसिक स्थिति है। ये डर को दूर कर सत्य और आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने का नाम है। मन में विश्वास, हम होंगे कामयाब
0: क्या
1: एक दिन।
0: बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास से विवेक बुद्धि को बल मिलता है। वो मैं पूर्ण आत्मविश्वास से भर कर कार्य करता हूँ, जहाँ मुझे सफलता भी मिलती है। बस कोई काम में आत्मसात से करे, यानी कि आप कोई भी काम करें तो ये मत सोचे कि हमें इस काम से सफलता मिलेगी। पहले तो ईमानदारी से काम करें, आप आत्मविश्वास से भरें और धैर्य के साथ करें, तो आप हमेशा अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि ये हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं और अपने काम में माहिर होते जाते हैं, तो वही भरोसा हमारे व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बनकर छलकता है। आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो हमारे हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरा मानना है कि आत्मविश्वास कठिन परिश्रम से आता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ सकता है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर, अच्छा आपने पढ़ चुका है, ये भी कमेंट्स आप पढ़ चुके हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस विषय पर और भी कमेंट्स लिखे हैं, तो उससे पहले एक गाना सुन लें, तो सुनवाते हैं गीत।

0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी कि व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास सफलता की वो सीढ़ी है जिस पर चलकर व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। जब स्वयं पर भरोसा होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि मुझे सब पता है, इसका मतलब पता ना होने पर भी सीख लूंगा। आत्मविश्वास कभी शोर नहीं करता, वो शांति और धैर्य के साथ अपना काम करता है। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं जो एक दिन में प्राप्त किया जा सकता है, ये हर रोज खुद से छोटे छोटे वादे करके उन्हें निभाने से ही आता है। क्या बात है, बहुत सुंदर विचार।
1: इतनी सारी बातें करने के बाद तो अब चलते हैं व्यंजन की ओर जिसमें मुझे मिल गई है कच्ची दाबेली की रेसिपी।
0: तो
1: हमारे साथियों ने भेजी तो हम इसको पढ़ते हैं कि पहले मसाला तैयार कर लीजिए। दाबेली मसाला घर पर बनाने के लिए धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता और सूखे नारियल को भूनकर पीसकर तैयार कर लीजिए, मतलब अपने अंदाज से लीजिए सामग्री। सामग्री आगे लिखी इन्होंने कि जो आलू का मसाला 4-5 उबले और मैश किए हुए आलू, दाबेली का मसाला जो स्पेशली लिया जाता है जो पहले से तैयार किया था वो 2-3 बड़े चम्मच लेना है, जो हमने पहले बताया था वो दाबेली का मसाला था। अब चटनी, इसके लिए आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी और लहसुन लाल मिर्च की तीखी चटनी। स्टफिंग के लिए बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला वाली मूंगफली, बारीक सेव और अन्य में लिखा है 6-8 पाव मक्खन या घी, हरा धनिया। और इसकी विधि लिखी है कि स्टफिंग तैयार करें, एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, इसमें दाबेली मसाला, थोड़ा सा पानी और इमली की चटनी डालकर मिलाएं। अब मैश किए हुए आलू और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाइए। मिश्रण को गीला और मसालेदार रखना है। प्लेटिंग के लिए तैयार आलू के मिश्रण को एक थाली में फैलाएं, ऊपर से बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला, मूंगफली, हरा धनिया और ढेर सारी बारीक सेब डालें। दाबेली असेंबल करें, पाव को बीच में काटें और पूरी तरह से अलग न करें, एक तरफ से तीखी चटनी, दूसरी तरफ से मीठी चटनी लगाएं और भरें। बीच में एक बड़े चम्मच तैयार आलू का मसाला भरें, ऊपर से थोड़ा सा अनार, प्याज और मूंगफली डालें और एक तवे पर मक्खन या घी गर्म करें और दाबेली को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लें। गर्मा गर्म दाबेली आप खाएं, हमको खिलाएं, सबको खिलाएं, है ना।
0: और अभी छुट्टियों का मौसम है तो बच्चों को इस तरह का कुछ चटपटा बना के खिलाते हैं, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं ना, और उन्हें उन्हें उनकी हेल्प भी ले सकते हैं क्योंकि बनाना जो आसानी होता है, बस तवे में सेकते वक्त हम अपने एक साथ खड़े रहें, वरना बच्चों को साथ में लेके हम उन्हें सिखा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। वैसे एक भेलपूरी जो है एक चटपटा भारतीय नाश्ता और चाट का प्रकार है, इसकी जड़ें गुजराती व्यंजनों में से है लेकिन मुख्य रूप से मुंबई की पहचान है। मुंबई के चौपाटी, गिरगांव, जुहू बीच की भेलपूरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी सामग्री उन्होंने बताया है कि मुरमुरा, तली हुई सेव, पापड़ी, कटे हुए उबले आलू, प्याज और काटी हुई हरी मिर्च से बनाया जाता है। इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी और तीखी हरी चटनी मिलाई जाती है। इसका स्वाद बेहद चटपटा होता है और कलकत्ता में से झालमुरी और कर्नाटक में मसाला पूरी है चुरमुरी के नाम से जाना जाता है। वैसे एक मैं पौष्टिक भेल की मैं आपको रेसिपी बताने वाली थी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2-3 मुट्ठे मखाना लेना है, उसे घी में अच्छी तरह सेक लेना है, उसमें उबला हुआ शकरकंद जो है उसके छिलके निकाल के बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देना, फिर उसमें उबली हुई मूंगफली डालना है और उसमें फिर प्याज, टमाटर और फिर उसमें हरी चटनी, मीठी चटनी, फिर उसमें बारीक कटी हुई ककड़ी भी डाल सकते हैं, उसमें अनारदाना डाल सकते हैं, उसमें चाट मसाला डाल दीजिए और फिर उसमें रागी की सेव डाल दीजिए।
1: क्या बात,
0: और ये पौष्टिक भेल सर्व कीजिए।

0: मैंने
1: बहुत
0: हमें
1: खास बात है आपने बताई कि शकरकंद के टुकड़े
0: हाँ यानी
1: और
0: आलू के
1: रागी,
0: बदले हम
1: हाँ
0: शकरकंद
1: शकरकंद,
0: का इस्तेमाल कर सकते
1: बहुत
0: हैं,
1: अच्छी सुंदर
0: और
1: बताई,
0: बेसन की सेव के बदले हम उसमें रागी की
1: रागी की
0: सेव
1: से।
0: यूज़ कर सकते, या फिर खाकरा जो होता है उसको चूरा करके वो डाल दे। तो यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही खुश रह सकते, इस तरह हमें पौष्टिक खाने खा के भी हम खुश रह सकते हैं।
1: बिल्कुल रह सकते हैं। और साथ में गीत सुने कि कमेंट्स पढ़ोगे?
0: एक कमेंट्स पढ़ दीजिए।
1: ठीक है, एक हमारे लिखते हैं कि भारत दावेली, कच्ची दावेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है जिसकी उत्पत्ति गुजरात के कच्छ क्षेत्र के मांडवी में हुई थी। ये एक मसालेदार और मीठा नाश्ता है जिसे उबले हुए आलू को एक विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। बहुत सुंदर सी जानकारी दी है। और हमारे साथी लिखते हैं कि देखा तुम्हें मिला
0: दाबेली, कच्ची दाबेली या डबल रोटी, देवनागरी दाबेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है, गुजरात के मांडवी से हुई एक मसालेदार मीठा नाश्ता है, और ये जो है उबले हुए आलू को विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें हम पाव की जगह पर हम रोटी का इस्तेमाल करें ना, और पैकेट बना के बना सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है।
1: क्या बात
0: और
1: है।
0: आप गीत सुन ले, सुनते हैं।

0: सचमुच नाना करते प्यार कर ही बैठते हैं हम
1: देखो हमारे
0: खाने की चीजों से,
1: साथ
0: भले ही डॉक्टर कितना भी मना कर दे कि ये
1: लेकिन
0: नहीं खाना है वो नहीं खाना है।
1: अरे आजकल तो देखो ना हमारे सोशल मीडिया पे कितनी सारी रेसिपी बताई जाती है, उसी में डूबे रहते हैं कि अच्छा ये भी बना ले वो भी बना ले और सब ले लेकर अपने पास स्टोर करते जाते हैं
0: और फिर
1: व्हाट्सएप
0: क्या
1: पे।
0: होता है जब हम मॉल में जाते हैं ना तो उस वक्त हमें आ जाता है अच्छा हाँ हमने वो ना नेट पे ये रेसिपी देखी
1: हाँ
0: थी उसमें ये डालना है ये पाउडर डालना है ये सब डालना है और लेकर आते
1: एक्स्ट्रा
0: हैं
1: शॉपिंग कर लाते हैं, फ्रिज पूरा भर लेते हैं
0: और
1: चीज
0: कभी
1: बटर
0: कभी बनाते भी नहीं है वो
1: से
0: पैकेट वैसा ही पड़े पड़े एक्सपायर हो
1: रखे रहते
0: जाता
1: हैं।
0: है।
1: देखो हमारे साथी लिखकर बैठते हैं रेसिपी सुनकर।

0: नाना करते दाबेली बनाकर खा भी बैठे हैं, और एक लिख रहे हैं कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, और एक लिखते हैं खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। इस बारे में इंदौरियों से पूछे, हर इंदौरी खाने के लिए जीता है, किसी भी कोने में चले जाइए खाने पर भीड़ लगी होती, क्यों ना हो भाई, यहाँ नाश्ते खाने की इतनी विविधता जो है, वाकई में सही बात है
1: सचमुच
0: हमारे
1: इंदौर
0: देश
1: बार
0: में
1: बार जाने को जी
0: जी।
1: करता है।
0: और देखो हमारे हर शहर में, हमारे देश में कई सारे शहर हैं, सबके अलग खान पान है, सबका अलग स्वाद है, तो जब जहाँ कहीं जाते हैं तो वहाँ का स्वाद खाते हैं। आप चाहे इंदौर चले जाइए, चाहे आप लखनऊ चले जाइए, चाहे आप गुजरात आ जाइए, चाहे महाराष्ट्र आ जाइए, राजस्थान चले जाइए, और जिसका नाम हमने नहीं लिया उन सभी शहरों में जाइए, और वहाँ का बढ़िया बढ़िया पंजाब वगैरह सब जगह खा के आइए,
1: और
0: है
1: खूब
0: ना।
1: खाइए और है ना खूब सारा व्यायाम कीजिए, ताकि
0: बिल्कुल
1: है ना ये जो खाना जो हमने खाया है वो पच जाएगा और हम
0: फिलहाल
1: स्वस्थ रहेंगे।
0: फिलहाल तो हमारी बातों की जो हमने गप्पे मारी हैं उनसे लेते हैं विराम, तो सभी से लेते हैं विदा,
1: और
0: है
1: है ना
0: ना।
1: सभी को सोनाली पाठक
0: और मंत्री वर्मा का नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: सखी सहेली।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जानी माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी।

0: आसी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
0: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
1: जो वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताज़ा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
0: क्या बात है। अच्छा, आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की यात्रा की तरफ अग्रसर है। एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक योगदान रहा है, चेतना का योगदान रहा है आकाशवाणी का। तो 90 बरस की इस यात्रा के बारे में जानकर आपकी क्या कैफियत है और आप क्या कहना चाहते हैं?
1: इस यात्रा का तो कोई भारत में खास तौर से पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से और भाषा के तौर पर जोड़े रखने का इससे अच्छा माध्यम, क्योंकि बाकी जो संचार माध्यम हैं उनमें भाषा, अखबार की बात करें या किताबों की बात करें, टीवी तो खैर बहुत बाद में आया, तो ये आकाशवाणी था जो देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदान हो, गांव हो, बसा हुआ शहर हो, सब जगह अगर पहुंचती तो आकाशवाणी की ही थी। और एक से दूसरे से जोड़ने का जो काम आकाशवाणी ने किया उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कितने अच्छे ढंग से काम हुआ और हो रहा है।
0: बिल्कुल, अपने बचपन की तरफ अगर लौटें तो रेडियो को आप किस तरह से अपने बचपन में देखते हैं, किस तरह से प्लेस्ड था रेडियो और कितनी सुनहरी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हैं?
1: यूनुस, कमाल की बात यह है कि अब सारा बचपन जो है वो उस जमाने में और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया और जाने क्या कुछ हो गया है, हम लोगों का बचपन रेडियो सुन सुन कर ही बढ़ा। उसमें जो कुछ भी संस्कार आए, सुनने के भी, सीखने के भी, बोलने के भी, समझने के भी, ये सब संस्कार आकाशवाणी ने दिए। और जिसको सुनते सुनते कि ये आवाज़ें कानों को इतनी अच्छी लगती हैं, फिर फिल्म म्यूज़िक की तो मैं बाद में बात करूँगा, जिनको हम सुनते थे, चाहे रेडियो ड्रामा हो, अनाउंसर हो, अनाउंसर उस वक्त जो है वो पूरे शहर में एक सुपरस्टार हुआ करते थे, उनकी आवाज़ सुना, अनाउंसर, न्यूज़ रीडर्स, ये सब जो है। तो अगर किसी से कहा जाए कि आप रेडियो में काम करते, अच्छा अनाउंसर है आप, ये अनाउंसर का वो दर्जा था मतलब, और वो पॉपुलरिटी थी। तो मतलब आप स्टेशन डायरेक्टर हो तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई हाँ। जानता ही नहीं आपको
0: जी।
1: लेकिन अगर अनाउंसर है आप, अच्छा, तो ये मतलब बड़ी पहचान हुआ करती थी कि आप रेडियो में अनाउंसर है। फिर रेडियो सिंगर होना
0: जी,
1: रेडियो आर्टिस्ट होना, ये बड़ी बातें थी। तो हम जब बचपन में सुना करते थे तो जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता, तो ये सब हुआ। और फिर उसी केंद्र को सुनते सुनते युवाणी इंद्र शुरू हुआ था
0: जी जी।
1: तो जयपुर के जो पहले युवाणी वाला बैच था उसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम पार्टिसिपेंट के तौर पर एक
0: कलाकार
1: के रूप में, एक ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में ऑडिशन दिया, क्लियर हुए और फिर उसका हिस्सा बने। तो वही युवाणी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत ही हम कलाकार थे, पार्टिसिपेंट थे, फिर उसी को हमने एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव उसको प्रोग्राम को संभाला आकाशवाणी ज्वाइन करने के बाद। और फिर जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ ये
0: हाँ।
1: कि आज मैं विविध भारती में बैठ के ये बात बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूँ कि बचपन में फिल्म म्यूजिक और उस दरबाने का फिल्म म्यूजिक का तो कहना ही क्या
0: जी।
1: तो जिनको, जिस चैनल को सुन सुन के, वो संगीत सरिता, वो सारे कार्यक्रम और बड़ी बड़ी आवाजें, बड़े बड़े संगीतकार, फिल्म म्यूजिक, तो जिन जिन को सुन के हम लोग बड़े हुए, विविध भारती चैनल को, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं उसी चैनल में आऊंगा
0: जी
1: और न सिर्फ आऊंगा
0: बल्कि हेड करेंगे
1: उसका कार्यक्रम का, मतलब मुझे संचालन करने का मौका मिलेगा, उसको निर्धारित

0: साबित करने का मुझे मौका मिलेगा, प्लान करने का मौका मिलेगा और पूरे चैनल को मैं अपने ढंग से चला पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि जिस चैनल को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ,
1: वाह वाह वाह,
0: उसी चैनल से मैं रिटायर हुआ और अच्छे ढंग से रिटायर हुआ। कि मेरी एक अच्छी टीम थी जिसमें यूनुस, एक से एक टेबल मैं क्या नाम लूँ, और पूरी अच्छी टीम और उनकी वजह से हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सके, चला सके और आज भी वो चैनल बहुत पॉपुलर है दुनिया भर का।
1: बात है, क्या बात है, मुझे याद आता है आपके साथ काम करने का वो पूरा दौर। कितनी प्यारी आपने बात कही है, युववाणी से आपकी शुरुआत हुई और जयपुर के पहले युववाणी के बैच में आप रहे हैं। न जाने कितने लोगों की यादें ताज़ा हो गई होंगी, मेरी अपनी खुद की याद इसलिए ताज़ा हो गई कि मैंने भी अपनी रेडियो की शुरुआत युववाणी से ही की है, तो वो जो जहन में युववाणी की सिग्नेचर ट्यून बजने लगी जिस तरह की वो होती थी। पर क्या ये रेडियो तक का रास्ता आसान था या वो रास्ता बहुत सारे डिबेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से होता हुआ पहुंचा है?
0: हाँ, नेचुरली ये आप एकदम अचानक आकाशवाणी में नहीं जा सकते, आपको एक सांस्कृतिक लिटरेरी बैकग्राउंड तो आप में होना ही पड़ेगा,
1: बिल्कुल,
0: उसके बगैर आप आकाशवाणी में एंटर नहीं कर सकते, कम से कम आर्टिस्ट के तौर पर या पार्टिसिपेंट के तौर पर। और उस वक्त तो शर्तें और भी ज़्यादा, वो आकाशवाणी का एक तरह से जयपुर आकाशवाणी ड्रामे के मामले में नंबर वन था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बड़े दिग्गज लोग,
0: बड़े दिग्गज लोग, नंदलाल शर्मा जी, फिर ओम शिवपुरी, ये सब लोग वहाँ पे,
1: गंगा प्रसाद जी,
0: हाँ हाँ, तो ये सब जो उसका मेयार था वो ऐसा था कि पूछे मत। जब हम आकाशवाणी में एंटर, उससे पहले हम लोग रंगमंच, कवि सम्मेलन, साहित्य, ये सब कर चुके थे
1: जी,
0: और
1: जी,
0: कर
1: जी.
0: रहे थे, है ना। तो उसके साथ ये हम ऑडिशन देने गए, उत्तर से सेलेक्ट हुए और पार्टिसिपेंट के तौर पे उसमें हिस्सा लिया। तो ये सफ़र जो है आकाशवाणी का सफ़र, पहले मेरा अपना रचनात्मक सफ़र शुरू हुआ और वो फिर आकाशवाणी के जरिए आगे बढ़ा। ये
1: बहुत ही शानदार बात है। जयपुर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि रंगमंच और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज़ में आप शामिल थे, तो रंगमंच की अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए।
0: रंगमंच का यूं था कि मैं थोड़ा अपना पारिवारिक पहले बैकग्राउंड बताऊं कि मैं, हमारे परिवार में संगीत का परिवार रहा है, हमारे पिताजी बाकायदा गायक रहे और आकाशवाणी जयपुर के उस वक्त ए ग्रेड आर्टिस्ट में से वो सुगम संगीत के गीत, गज़ल, ये सब गाना उनका रहा। और न सिर्फ वो गायक थे बल्कि उन्होंने जयपुर में एक राष्ट्रीय तरुण कलाकार परिषद और श्रुति मंडल, ये दो सांस्कृतिक मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौशल भार्गव साहब के साथ मिलकर खड़ी की, जिसने साल भर में बड़े बड़े कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट और बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, तो इन सब को हमने बचपन से उनको आमने सामने बैठ के सुना, उनके आसपास घूमे, कई लोग हमारे घर भी आए, तो वो माहौल जो था बचपन का, वो सांस्कृतिक माहौल हमें बचपन से मिला। हम
1: यहाँ एक पल के लिए रुकना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी आपके बारे में बताएं तो लोग सोचते हैं कि आपका ताल्लुक तो कहीं आंध्रा से होना चाहिए, तो जयपुर से होते हुए लोगों को थोड़ा ताज्जुब होता है इसके बारे में।
0: बिल्कुल सही है, वो नाम से भी बिल्कुल है कि, और ये सही है कि हम लोग मूल रूप से आंध्रा के ही हैं, तेलंगाना के हैं, हमारे पिताजी माताजी सब वहीं के रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर और मेरी पिताजी जो पोस्टल टेलीग्राफ्स में डिपार्टमेंट में काम करते थे उनकी पहली पोस्टिंग भी नागपुर में थी, तो मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ। लेकिन आंध्रा में हमारा संपर्क लगातार हम लोग नहीं रहे कभी भी, माताजी पिताजी कभी रहे थे, हम लोग बचपन में कभी शादी ब्याह में गए, साल में एक आध बार घूमने गए, तो आंध्रा उससे पहले हमारे पिताजी माताजी वहाँ से निकल चुके थे नागपुर, और नागपुर के बाद एक पूरा डिपार्टमेंट पिताजी के सेक्शन का वो जयपुर शिफ्ट हुआ, तो पिताजी जयपुर शिफ्ट हुए, तो हम बहुत बचपन में ही, हम बच्चे लोग जो थे वो जयपुर शिफ्ट हो गए उनके साथ, और फिर मेरी सारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब जयपुर हुई। तो ये है आंध्रा और जयपुर का
1: सेतु। बिल्कुल, ये मुझे लगा कि ये जरूर इस बात के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो गुलाबी नगरी एक तरह से आपके बनने का एक बुनियाद का शहर रहा है और आज भी बहुत सशक्त परंपरा रंगमंच और संगीत की जयपुर में रही है, तो आपके जमाने में वो कौन से कलाकार थे जो रंगमंच में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे? मुझे लगता है कि ओम शिवपुरी वाला दौर था।
0: ओम शिवपुरी उस वक्त एनएसजी जा चुके थे।
1: ओके,
0: हाँ, और हम उस वक्त छोटे थे और हम लोग रंगमंच में एक्टिव हुए थे, देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे और एक सीखने का प्रोसेस जारी था
1: जी।
0: तो जो हमारी बचपन की यादें हैं, मतलब शुरुआती दिनों की यादें हैं, उस वक्त ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी का तुगलक,
1: क्या बात
0: है, इब्राहिम अलकाजी का डायरेक्ट किया हुआ, वो क्लासिक प्ले था, क्लासिक प्ले, और इन दोनों का जो रोल था, मतलब ये मैं इन्हें कह सकता हूँ कि ये ओम शिवपुरी, उनको फिल्मों में वो जगह नहीं मिली, उनको वो क्रेडिट नहीं मिला, उनको वो काम नहीं मिला जिसके हकदार थे, वो दिलीप कुमार थे, वो
1: बिल्कुल
0: रंगमंच के दिलीप कुमार थे, वो

0: तेज था उनका, और वो जो अदायगी, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ. तो बचपन से ये ओम शिवपुरी, सिद्धार्थ शिवपुरी, मोहन महर्षि, ये सब लोग, और दिल्ली से प्लेस बराबर आते रहते थे. हम लोग देखते थे अंधायुग, ये
1: जी
0: सब देखे हमने, और एवं इंद्रजीत, ये सब नाटक जो बादल सरकार के सारे. तो रंगमंच की एक अच्छी खासी परंपरा, जिसमें जयपुर के लोग तो करते ही थे, दिल्ली से भी बड़े बड़े थिएटर ग्रुप, दिल्ली और कलकत्ता के लोग आते थे. थिएटर फेस्टिवल भी होते थे और क्लासिकल म्यूजिक कंसर्ट्स भी होते थे जयपुर
1: बिल्कुल।
0: में.
1: आज जयरंगम जैसी चीजें
0: हाँ,
1: चल रही हैं, तो कैसा लगता है आपको
0: नहीं, बहुत
1: कि
0: अच्छा लगता है, बहुत
1: परंपराएं
0: अच्छा
1: आगे
0: लगता है.
1: हैं?
0: मैं गया हूँ उनके एक फेस्टिवल में, और जहाँ से मकरंद देशपांडे वगैरह हर साल जाते हैं वहाँ पे टीम लेकर के और प्लेज लेके, तो वो एक तरह से थिएटर का माहौल जो है वो रिवाइव कर रहे हैं, और अच्छी ऑडियंस भी आती है वहाँ पे, और अच्छा चल रहा है मुझे.
1: जी, और बातें करेंगे आपके बचपन की, हम यहीं इसी वक्त में थोड़ा ठहरना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जिस जिस दौर की हम बात करें, उस दौर की याद के नाम एक गाना होना चाहिए, तो
0: ओ
1: हाय रे
0: बढ़िया.
1: वो दिन क्यों ना आए,
0: हाँ,
1: अनुराधा
0: बहुत
1: फिल्म का
0: अच्छा है,
1: गाना
0: बहुत
1: है
0: अच्छा
1: ना,
0: है.
1: ये
0: वाह,
1: गाना
0: मेरा
1: सुनते हैं।
0: पसंदीदा गाना है.
1: बिल्कुल।

0: हमने ये गाना सुना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, शैलेंद्र का लिखा, पंडित रविशंकर का स्वरबद्ध किया ये गाना, अनुराधा फिल्म का, ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म थी। उस दौर में फिल्म म्यूजिक और फिल्मों से किस तरह का ताल्लुक था? जयपुर में फिल्में देखने की और टॉकीजों की भी एक बड़ी शानदार सी परंपरा रही है।
1: जयपुर में एक से एक थिएटर थे
0: जी,
1: और उस वक्त ये राज मंदिर, कभी नाम सुना हो?
0: बिल्कुल
1: हाँ, तो वो राज मंदिर मेरे ख्याल से भारत का अकेला ऐसा थिएटर था जो बिल्कुल राज मंदिर, और उसमें वो राज वाला वो भी था
0: जी,
1: शाही अंदाज उसका, तो वो लोग देखने आते थे। फिल्म तो बाद में, थिएटर पहले देखते
0: हाँ,
1: थे।
0: वो टूरिस्ट मैप पर था
1: वो थिएटर का अपना क्रेज था उसका
0: जी।
1: तो राज मंदिर, जैम, पोलो विक्ट्री, ये सब उस वक्त फिल्में भी, मतलब आज कहीं नहीं इतने करोड़ उतने करोड़, मतलब 100 दिन चली, ये बड़ी बात होती है।
0: बिल्कुल
1: है ना, इसने 100 दिन पूरे किए।

0: तो उस वक्त वो ज़माना था जब जब हम लोग फिल्में देखते थे, तो ये सब बड़े बड़े थिएटर थे और फिल्मों का तो खैर दौर ही अलग था। हम कभी कभी स्कूल से भी भाग के देखा करते थे, ये सब भी होता था।
1: जी
0: और
1: ये
0: वो
1: हुआ है, लेकिन स्कूल से
0: जमाना
1: भाग के देखना भी हुआ है।
0: उपकार जैसी फिल्म हमने
1: जी
0: देखी थी
1: वाह वाह
0: और कई फिल्में थी, और लंबी लंबी लाइनें
1: जी
0: और आपको टिकट मिल जाए बड़ी बात ना, तो ये वो दौर देखा है हमने, जबकि थिएटर में जाकर फिल्म देखना और स्कूल से भाग के भी देखना और टिकट के लिए धक्का मुक्की होना, ये सब
1: बिल्कुल
0: दौर देखा है। और फिल्म म्यूजिक का तो ये था कि सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही था, घर में रेडियो चल रहा है, विविध
1: जी
0: भारती चल रहा है, फिल्मी गा रहे हैं, कहीं लता जी हैं, कहीं आशा जी हैं, कहीं रफी जी हैं, कहीं मुकेश हैं, कहीं मन्ना डे हैं, तो ये सब चलता था। और हमारे क्योंकि संस्कार में म्यूजिक भी था और
1: जी
0: म्यूजिक ही था,
1: जी
0: मैं अपने घर में नहाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता था।
1: अच्छा, क्योंकि गाना चलता
0: ये गाना चलता
1: था।
0: नहीं था,
1: जी
0: मैं गाता
1: खुद गाते
0: रहता
1: थे।
0: था। तो वो घर वाले भी बार बार तो मुझे फिल्मी गानों का शौक,
1: जी
0: गुनगुनाने का शौक वो बचपन से था। फिर वो संस्कार में ऐसा है कि फिर उस पर धुनें भी बनाने लगा और बाकायदा परफॉर्म भी करने लगा, वही का अलग दौर। फिल्मी गानों का ये असर फिल्म म्यूजिक का मेरी जिंदगी बहुत पड़ा रहा।
1: क्या बात है। और तब से ही ये गायकी वाला मामला आपका
0: हाँ, मेरे
1: जारी
0: ख्याल
1: रहा
0: में
1: है।
0: गायकी तो हमारे परिवार में पिताजी और बड़े भाई सब आज भी गायक हैं, वो
1: जी
0: सिखाते भी हैं, तो संगीत और गायकी का एक वो जो अंग है वो हमारे संस्कार में है। लिखना पढ़ना साहित्य में मैं बाद में आया उस तरह से।
1: जी रंगमंच वाली आपकी एक्टिविटीज में वो कौन से नाटक याद आते हैं जिनका यहाँ जिक्र हो जाए?
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया,
1: जी
0: वो एक लड़कपन का दौर था हमारा, मतलब बीए का दौर ही था। हम उम्र लोगों ने हमने एक टीम बनाई और मैंने ही उसका नाम दिया ग्रुप का विकल्प,
1: जी
0: वो अभी भी चल रहा है, वो हमारे बाकी जो दोस्त हैं वो चला रहा है, हरी नारायण उसका नाम है। तो हम 4 लोगों ने मिलकर एक विकल्प नाम की संस्था बनाई और उसके साथ मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था,
1: वाह वाह
0: और एक आध कभी कभी छोटा मोटा रोल की जरूरत पड़ी तो कर लिया। तो उससे हमने एकांकी से शुरुआत की, और उस वक्त मैं ज़्यादातर राजनीतिक व्यंग और पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर यही मेरा विषय रहा, तो उस पर ज़्यादा काम हुआ और उस तरह के नाटक मैंने लिखे भी। नाम से ही समझ जाओगे कि होशियार समाजवाद आ रहा है,
1: वाह वाह
0: नेता कुर्सी प्रसाद सिंह,
1: क्या बात है।
0: और एक नाटक जिसको बहुत ज़्यादा जिसके हमने शोज किए, भूमिका,
1: हाँ
0: जिसको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का ड्रामा कॉम्पिटिशन में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड भी मिला, और एक नाटक मराठी, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो वो बहुवर्षीय कॉलोनी थी, मतलब एक छोटा भारत था वो,
1: हाँ हाँ हाँ
0: उसमें गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, सिख, मुस्लिम, सब मतलब कोई भेदभाव ही नहीं था। मतलब आज
1: बिल्कुल
0: इस घर में घुस गए, कल उस घर में घुस गए, सब मिलजुल के खेल रहे हैं, होली हो, ईद हो और गणेश उत्सव हो, तो गणेश उत्सव यहाँ के बाद कई लोगों को पता लगता है गणेश उत्सव क्या है, ये हमने जयपुर में देख चुके हैं,
1: वाह वाह
0: तो उनकी एक्टिविटीज में शामिल होना, सब कुछ करना। तो मराठी लोगों के साथ उठना बैठना बचपन से रहा, तो मराठी नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया।
1: गजब।
0: तो एक नाटक था श्याम फड़के का, कॉमेडी, काका किशाचा, जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी,
1: हाँ
0: तो उसका मैंने कौआ चले हंस की चाल
1: क्या बात है,
0: इस नाम से किया, और वो जयपुर का पहला नाटक था जो टिकटेड हाउसफुल रहा,
1: वाह
0: रविंद्र
1: वाह
0: मंच पर टिकटेड हाउसफुल, वो पहला नाटक था जो विकल्प ने किया, हमने किया और खूब पसंद किया और उसके बहुत शोज हुए।
1: हम जब असरानी साहब के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी रंगमंच पर सक्रिय थे और जयपुर में थे, जयपुर की एक बड़ी शख्सियत रहे। कभी उनसे आमना सामना हुआ उस दौर
0: नहीं,
1: में?
0: मेरा ये रहा कि वो असरानी साहब से बहुत अरसे बाद एक किसी फंक्शन में यहाँ पे मिलना हुआ, लेकिन
1: अच्छा,
0: उस दौरान में नहीं, कि वो जयपुर से जा चुके
1: जा
0: थे
1: चुके
0: तब।
1: थे उस दौर में
0: हाँ,
1: जब आप
0: तो वो
1: सक्रिय हुए।
0: तो हमसे काफ़ी से, तो लेकिन उनकी एमआर रोड से 5 बत्ती के पास में ही सब बताते थे कि ये असरानी साहब के भाई की दुकान है,
1: जी
0: वो उनकी एक कपड़ों की दुकान थी। फिर
1: बिल्कुल
0: हमारे जो सीनियर पिंचू कपूर, आपने नाम सुना होगा
1: जी जी बिल्कुल
0: पिंचू कपूर, ओम शिवपुरी, ये सब ये हमारे सीनियर लोग, मतलब जो निकल चुके थे हमारे ज़माने से पहले ही,
1: हाँ
0: तो लेकिन
1: हाँ
0: इनको सुन सुन के, मतलब ये हमारे लिए वो स्टार थे कि जयपुर के ये लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया, बड़े लोग थे ये।
1: क्या प्यारी बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी से जुड़े और युववाणी करने लगे उस समय भी तो जयपुर आकाशवाणी जो है वो एक बहुत ही बुलंद संगठन था और बहुत
0: बिल्कुल
1: बड़े बड़े लोग आकाशवाणी से जुड़े थे। किन हस्तियों के सानिध्य में सीखने को मिला आपको?
0: बहुत बड़े नाम थे और बहुत जयपुर, मैंने कहा ना, जब नाटक में तो नंबर 1 हुआ करता था, हवा महल में मैक्सिमम उसके प्लेस हुआ करते थे, और उसके अलावा वहाँ पे जो आधा आधा घंटे के या 1-1 घंटे के नाटक हुआ करते थे वो कमाल थे। मतलब उसमें नंदलाल शर्मा, आपने
1: जी
0: नाम सुना होगा,
1: बिल्कुल
0: गणपत लाल डांगी,
1: हाँ,
0: जिनका हवा महल में काफ़ी
1: आज भी
0: होता
1: हवा महल में
0: हाँ।
1: उनके

0: नाटक ब्रॉडकास्ट होते हैं,
1: रंजना चौधरी, तो ये एक से एक नाम थे और एक से एक आर्टिस्ट थे और जिनके प्लेज लोग बहुत पसंद करते और इंतजार करते थे ये।
0: जी, और आकाशवाणी जयपुर जो है वो जयपुर अजमेर था तब भी।
1: हाँ, क्योंकि अजमेर इंडिपेंडेंट स्टेशन नहीं था
0: जी,
1: वो सिर्फ रिले सेंटर था, तो जयपुर अजमेर ही बोला जाता था उसको।
0: अच्छा।
1: और आज भी शायद वही होगा कि अजमेर सिर्फ रिले सेंटर है, वहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग या उस तरह का इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, अजमेर को लिंक किया हुआ है यह है।
0: जी, तो आकाशवाणी में नौकरी का रास्ता किस तरह से खुला?
1: हाँ, मैं उस वक्त एक और पहलू भी था मेरा कि मैं एमए मैंने किया ही किया था
0: जी,
1: और मैं उस वक्त ये राजस्थान पत्रिका,
0: बहुत ही मशहूर
1: हिंदुस्तान
0: अखबार,
1: का उस वक्त राजस्थान का नंबर वन अखबार था हिंदी का, और उसका एक संडे एडिशन शुरू हुआ था,
0: जी
1: वो राजस्थान में पहली बार ही हुआ था, पता नहीं दिल्ली और जगह होगा या, उसका नाम ही इतवारी पत्रिका था, हर इतवार को आता था और उसका नाम रखा था इतवारी पत्रिका। कर्पूर चंद कुलेश साहब राजस्थान पत्रिका के मालिक भी थे और बड़े पत्रकार थे, तो उन्होंने शुरू किया था। उसमें उन्होंने श्री गोपाल पुरोहित उसके संपादक थे और मैं उनके साथ सहायक संपादक के तौर पर लगा। 3 साल मैंने वहाँ काम किया और वो हर इतवार उसमें कॉलम भी लिखता था, इंटरव्यू भी करता था, ये सब होता रहा। उसी दौरान ये आकाशवाणी की ये वैकेंसी निकली थी यूपीएससी की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और संयोग से सेलेक्ट हुआ, यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, सब हो गया और पहली पोस्टिंग मेरी आई जलंधर।
0: अच्छा,
1: ये 1980 की बात है।
0: क्या बात है,
1: 19 नवंबर, हाँ 1980 में, तो पहली पोस्टिंग मेरी जलंधर हुई, मैंने वहाँ ज्वाइन किया, 1 साल वहाँ काम किया, फिर
0: तो वहां
1: जयपुर।
0: तब पता चला था कि ये वो स्टेशन है जहां जगजीत सिंह गाया करते थे।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सब, और जगजीत सिंह, सुदर्शन फाकिर,
0: जी,
1: इन लोगों के नाम से वो
0: ऐतिहासिक स्टेशन है जलंधर,
1: और वहाँ पे पंजाबी के बड़े बड़े लोग थे, मतलब
0: बिल्कुल
1: पंजाबी राइटर्स, सोहन सिंह मीशा
0: जी,
1: और मतलब ऐसे नाम जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड जिनको मिला, सुरजीत पातर, ये सब लोग वहाँ पे मतलब एक्टिव लोग थे, पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे, सुरजीत पातर लुधियाना से, सब कुछ। तो जलंधर भी उस वक्त पंजाब का जयपुर था, एक तरह से
0: बिल्कुल
1: पंजाब का जयपुर था वो, वहाँ बड़े अच्छे नाटक, बड़े अच्छे आर्टिस्ट और बहुत एक्टिव शहर था
0: जी।
1: तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा और मेरे जो सीनियर थे वो सारे से पंजाबी लोग थे, मतलब हिंदी वाला मैं अकेला था वहाँ पे,
0: हाँ
1: हिंदी का प्रोग्राम मैं ही संभालता था वहाँ पे, हिंदी का पैक्स था वहाँ पे मैं, लेकिन एक से एक प्रोग्राम, और पंजाबी ऐसी भाषा थी कि जो समझने में उतनी मुश्किल
0: नहीं
1: थी,
0: नहीं
1: मतलब
0: थी जी।
1: तो मेरा अच्छा वक्त गुजरा जी।
0: कितने वक्त तक आप जलंधर में रहे?
1: 1 साल
0: जी, और किन हस्तियों से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा लिटरेचर की?
1: मैंने बताया ना, सोहन सिंह मिश्रा
0: जी,
1: और फिर उर्दू के भी कई लोग थे वहाँ पे
0: जी,
1: जो सुरजीत पातर, वो उस जमाने में उनसे मिलना हो गया था, जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले हुए सब कुछ,
0: बिल्कुल
1: मिश्रा साहब को मिला।
0: तब तक आपका लिखना शुरू हो चुका था?
1: हाँ, लिखना तो मेरा जयपुर में शुरू हो चुका था
0: जी,
1: लेकिन मैं उस वक्त मैं गीत लिखता था, शुरुआत मेरी मंच से हुई, गीत लिखता भी था, छपते भी थे सब कुछ, और गीतकार के तौर पर मैं राजस्थान में जगह जगह कवि सम्मेलनों में भी जाया करता था। उदयपुर में जब कवि सम्मेलन हुआ तो पहला जो मेरा बड़ा ब्रेक था या पहचान या आत्मविश्वास जिसे मिला, तो नीरज जी का तो बोलबाला था उस वक्त, गीतों के राजकुमार थे,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उनके नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे,
0: सुबह
1: तो,
0: तक लोग सुनते
1: हाँ,
0: थे और सबसे
1: तो,
0: लास्ट में उन्हें
1: हाँ,
0: पढ़वाया जाता
1: जी
0: था।
1: और मेरा वो शुरुआती दौर था
0: जी,
1: तो नीरज जी थे वहाँ पे, वो मुख्य कवि तो थे ही थे, तो मैंने जब वो गीत पढ़ा अपना, तो ये नीरज जी ने आशीर्वाद देने का उनका तरीका था, उन्होंने बहुत प्यार दिया पहचान और अपने गले की माला मेरे गले में जब मैं पढ़ रहा हूँ तभी आके डाल दी।
0: अरे,
1: तो ये एक आशीर्वाद था जो मुझे
0: क्या बात है। क्या वो गीत याद है आपको?
1: हाँ, जो वो मेरे काफी पढ़ाई इधर उधर
0: जी,
1: तरन्नुम में सुनाऊं?
0: जरूर सर, जरूर, बिल्कुल स्वागत है।

0: है। और ये नवगीत का शुरू हुआ था तो ये
1: जी
0: अंत देख, बात क्या करे कोई हाफती हवाओं
1: हाफती हवाओं से
0: से,
1: क्या बात है।
0: बात क्या करे कोई हाफती हवाओं से।

0: क्या बात है, क्या बात है। जाहिर है कि इस
1: धन्यवाद।
0: रचना से नीरज जी की प्रशंसा तो मिलनी ही थी, और ये आपके लिए बहुत यादगार लम्हा रहा
1: वो
0: होगा।
1: बिल्कुल, और एकदम शुरुआती दौर में इतने बड़े हस्ती का
0: जी
1: आशीर्वाद मिलना और प्रोत्साहन मिलना, तो वो एकदम यादगार और बहुत आत्मविश्वास देने वाला लम्हा था, एक सफर को आगे बढ़ाने वाला होता था।
0: जब आप घर लौटे इस कवि सम्मेलन के बाद, तो क्या पिताजी की कैफियत थी, उन्हें क्या बताया?
1: वो बहुत खुश हुए, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पिताजी, मैंने कहा वो गायक थे और संस्था चलाते सब कुछ, लेकिन एक अलग तरह के पिता थे वो, बिल्कुल
0: हाँ,
1: बहुत कम बोलना, मतलब उनसे हमारा संवाद जो है ना, हमारे
0: मिनिमम।
1: नाटक भी देखते थे, आते थे देखते थे, लोग खुश हो रहे हैं तालियां बजा रहे हैं या सब कुछ, या कभी सल्लम ने भी आते थे कभी, तो वो आके देखा और चले आए घर पे। अखबार में भी कॉलम लिखता था, हर वक्त संडे आता था,
0: हाँ
1: पढ़ते थे सब कुछ था, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से, कभी वो दौर था, तो हो सकता है कि आज तो अगर हम अपने बच्चों से दोस्त की तरह से बात करते हैं,
0: जी,
1: पिताजी का एक डिस्टेंस हमेशा रखते थे
0: तो
1: या
0: आपके
1: था।
0: जहन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि अच्छा लगा
1: हाँ
0: है कि नहीं, क्या
1: हाँ
0: चल रहा है मन
1: तो
0: में।
1: बस वो उनको सूचना जरूर, वो और हमारे संवाद माँ से होता था,
0: जी
1: उनसे खूब मतलब हंसी मजाक बोलना, चलना साहब नाराजगी या गुस्सा या सब कुछ, पिताजी से घर में जो था, लेकिन वो खुश तो होते थे, बहुत खुश
0: जी जी
1: होते थे,
0: जी
1: लेकिन वो डायरेक्ट इस तरह से बोलते नहीं थे,
0: वो
1: बताते
0: दौर भी
1: नहीं
0: ऐसा था कि पिताओं से संवाद बहुत कम हुआ
1: थे।
0: करता था। माँ की स्मृतियां हमारे साथ बांटिए कि उनसे क्या कुछ आपने सीखा है, और आपकी शख्सियत में उनका क्या योगदान है, और आपकी कामयाबी उन्हें कितना खुशी दी दे दे
1: नहीं
0: कर
1: बिल्कुल, ये
0: दी।
1: पारिवारिक रूप से अगर देखें तो पिता ने माहौल दिया,
0: जी
1: पिता ने माहौल दिया, मतलब अगर मैं कलाकार बना हूँ या कलाकार कला के क्षेत्र में हूँ, तो वो पिता के संस्कार हैं, पिता ने जो माहौल दिया बचपन से, अगर आप देखें तो कुमार गंधर, भीमसेन जोशी, रविशंकर, बुद्धदेव मुखर्जी, राजन साजन मिश्र, अमजद अली खां, बड़ा
0: बाप
1: कोई
0: रे,
1: नाम लीजिए, कोई नाम लीजिए जिनको हमने बचपन में आगे बैठ के
0: आमने
1: सुना
0: सामने
1: है,
0: देखा। जी
1: आमने सामने देखा, उनके आसपास घूमे बैठे, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर,
0: बाप रे,
1: कोई नाम लीजिए, तो वो सब हमने देखा है, और उनके साथ उठे बैठे हैं, कई लोग हमारे घर आए है ना, तो ये माहौल पिताजी ने दिया, उसके बगैर हमारे संभव नहीं था कि हम उस दुनिया को देख सकते, इन बड़े लोगों को देख सकते, इन हस्तियों, तो वो उनको सुन सुन के भी संस्कार हुए, कि जो है वो इस तरह से भी संस्कार में आता है, एक तो बाकायदा आप गुरु से सीखते हैं और एक सुन के भी सीखते हैं, तो वो हमने उस तरह से सीखा, तो पिताजी ने माहौल दिया, संस्कार दिया, माँ ने जो है वो एक पूरा प्रोटेक्शन कहना चाहिए। मैं बात करूँ तो हमारी कॉलोनी में, जो मैंने कहा ना वो एक मिनी भारत था वो,
0: जी,
1: लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल विपरीत था, मैं अपनी कॉलोनी के चंद शैतान बच्चों में से एक
0: ये तो एक नया खुलासा है हमारे
1: था।
0: लिए।
1: मतलब खेलना कूदना ये तो सही है ही, सभी बच्चे करते सब कुछ, लेकिन छेड़ने की आदत जो है ना,
0: हाँ,
1: किसी के साथ भी मजाक कर लेना, किसी को
0: तंग
1: आते
0: कर
1: जाते
0: लेना।
1: को तंग करना या मस्ती करना,
0: जी
1: तो कहीं ना कहीं एक या दूसरे दिन में कोई
0: शिकायत आती
1: शिकायत माँ के पास आती थी कि
0: थी।
1: आज इसने ये क्या, और मेरा बचपन का नाम छोटू था।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: क्योंकि आप छोटे थे इसलिए।
1: हाँ मेरे बड़े भाई साहब थे, मैं
0: जी
1: नंबर दो था, तो
0: जी
1: पहले नाम ऐसे ही रखे जा रहे, घरेलू
0: बिल्कुल
1: नाम,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बड़े भाई साहब श्याम और मेरा नाम छोटू।
0: जी,
1: खैर, तो वो छोटू की शिकायत जो
0: रोज आ
1: है
0: रही है।
1: मतलब हर दूसरे दिन या हर दिन जो है वो, आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, ये सब चलता रहता था, तो वो माँ थी जो
0: प्रोटेक्शन।
1: संभालती थी, और कभी कभी वो पिता तक पहुंच जाती थी बात, और
0: हाँ,
1: पिताजी जिस ढंग से पेश आते थे, वो मैं भूल नहीं सकता।
0: उसका जिक्र ना ही करें तो
1: तो ये
0: अच्छा।
1: एक अच्छा बचपन बीता,
0: जी
1: और माँ ने जो है वो, क्योंकि पिताजी का यही था कि दिन में नौकरी करना, आना, फ्रेश होना, चाय पीना और कपड़े वपड़े बदल के सीधा रविंद्र मंच,
0: अरे
1: मतलब घर में
0: गजब।
1: वो पारिवारिक, उसके पिता नहीं थे,
0: हाँ, वो अपनी दुनिया
1: वो
0: उनकी।
1: अपनी दुनिया थी।

0: ये बस आए सुबह ऑफिस चले गए, शाम को आए और फ्रेश हुए, चाय वाय पी और फिर सीधा रविंद्र भवन, फिर वहां से लौटे, खाना वाना खाए, सो गए। मतलब बच्चों से भी उनका उस तरह संवाद नहीं होता था, तो वो माँ थी जिनसे मैंने कहा ना कि वो तो परिवार में पारिवारिक माहौल का जो और पारिवारिक मजबूती जो है, खुलापन भी, छूट भी, वो सब माँ से मिली।
1: क्या बात है। और क्या आपकी रचनाओं में मां झलकती हैं?
0: उस तरह से तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जैसा बचपन हमने गुजरा, तो वो एक लोअर मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास मतलब सरकारी कर्मचारी जो हैं उनकी
1: बिल्कुल
0: कॉलोनी थी, तो हम उसी में, तो लेकिन बहुत खुशहाल। मतलब मैं अपने आप को अगर आप देखूं तो हो सकता है आर्थिक रूप से हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास ही कहना चाहिए उस वक्त, लेकिन एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध खुशहाल परिवार थे, और मुझे अपने बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं, मैं खुशहाल हूँ जी।
1: क्या बात है। इतनी सुंदर बातें हो रही हैं और इतनी जज्बाती बातें, तो मुझे लगता है कि यहाँ आशीर्वाद फिल्म का गाना सुनते हैं, एक
0: हाँ
1: था बचपन,
0: एकता बचपन
1: क्योंकि
0: जरूर
1: ये
0: जरूर
1: जो
0: बिल्कुल
1: बचपन
0: बिल्कुल
1: के जो दिन हैं उनके
0: बिल्कुल
1: उनके
0: बिल्कुल
1: नाम ये गाना है।
0: जी।

0: बचपन की बातें हमने की रेड्डी साहब, और ये वो बातें हैं जो इसलिए जरूरी थी कि वो कौन से तत्व थे जिन्होंने आपको बनाया। लेखन की दुनिया में उस समय में जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, तो आपके आदर्श कौन थे और क्या कोई था जो आपकी रचनाओं को सुधारे या जो आपको मार्गदर्शन दे वहाँ पर जयपुर में?
1: नहीं, जयपुर में जैसे मैंने कहा कि मैं गीत से शुरू हुआ था, तो मेरे दो बड़े लोग थे जो मेरे काव्य गुरु भी मैं जिन्हें मान सकता था और जो मुझे मार्गदर्शन भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। एक तो तारा प्रकाश जोशी
0: जी,
1: और एक हरिराम आचार्य। हरिराम आचार्य ने फिल्मों में भी लिखा
0: जी जी, जी।
1: मेहंदी रंग लाई,
0: डांसिंग जी के साथ उनके गाने हैं बहुत सारी फिल्मों के।
1: और तारा प्रकाश जोशी जी IAS ऑफिसर थे।
0: अच्छा।
1: लेकिन गीत में उनका कोई जवाब नहीं था, मतलब इतने बड़े गीतकार थे वो राजस्थान के। मतलब एक पंक्ति यूनुस में बताऊंगा उनकी, मेरे गुरु तो मैं देखता से, मेरा वेतन ऐसे रानी, मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी।
0: ओ हो हो हो, क्या अद्भुत है। हा? क्या अद्भुत है,
1: जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: क्या बात है।
1: ऐसी पंक्ति मतलब मैंने नहीं सुनी।
0: क्या बात है, क्या बात
1: नहीं सुनी। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे, जिनके साथ
0: गजब गजब। ये जीवन में कभी भूलेगा नहीं, ये इतनी अद्भुत है।
1: मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: तुरंत खत्म। वाह वाह।
1: तो और हरिराम आचार्य जी के तो
0: बिल्कुल मेरी भी मुलाकात रही होगी।
1: तो ये लोग थे जिनसे सीखा। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात रही आप संस्कारों में, जिसने मुझे आगे थोड़ा गंभीर लेखन की तरफ रखा, सिर्फ मंची नहीं बनाया, वो ये कि मैं बाकी विधाएं भी पढ़ता था। मेरे निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये सब मतलब फिक्शन भी, उपन्यास भी, आलोचना भी, नवर सिंह जी भी, हिंदी में तो एमए किया था, तो हिंदी साहित्य से बराबर जुड़ाव। और फिर बचपन से ही वो हमारे कॉलोनी में, हमारा अखबार परिवार में सिर्फ अखबार था, मतलब किताबें विताबों को वो नहीं था उतना। तो एक कॉलोनी के आगे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हुआ करती थी,
0: उसमें
1: तो सारे अखबार आते थे, मतलब अखबार तो थे ही थे,
0: पत्रिकाएं भी,
1: दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी,

0: तो ये मैं इन सबको चार्ज चार्ज जाया करता था वहां जाकर के, घंटों घंटों वहीं बैठता था। तो और बाकी लोग जो आके चले गए और मैं अपने अभी इसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको, मतलब तीन चार टेबल पे मैं, मेरे दो तीन घंटे निकल जाते थे।
1: जी जी।
0: तो बचपन से वो पढ़ने का भी शौक था, संगीत का भी शौक था, तो ये सब चीजें जो है संस्कार में। और फिर जैसे होता है कि ये तो मेरे आदर्श थे ही और बड़े थे। बाकी फिर उर्दू शायरी की तरफ यूं हुआ कि गीत करते करते फिर हम उम्र लोगों के साथ उठना बैठना है ना, सुनना सुनाना, और फिर मुशायरे भी वहाँ हुआ करते थे जयपुर में, तो बड़े बड़े मुशायरों को सुनना। तो हम उम्र लोगों की टोली में यंग शायर भी थे जिनके साथ उठते बैठते थे। तो जब मुशायरे सुने और उसमें जो शेर का जो दो मिसरों में दो पंक्तियों में जो
1: सारी बात कह देने
0: का जो जादू वो मुशायरों में देखा, तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित किया, मैं उस तरफ झुका और फिर गज़लें कहने लगा। अमरूर लोगों को हमारे जो साथ में थे अरशद अब्दुल हबीब, इनाम शरर, मजा साहब, तो ये सब लोग सुनते थे, वो सराहते थे और कि ये अच्छा है अच्छा है। और फिर मैंने बाकायदा गज़ल के लिए उर्दू स्क्रिप्ट सीखी, मौलवी साहब आते थे मुझे पढ़ाते थे सिखाते थे, और फिर मैं बाकायदा गीत

ये सुर था अरविंद कुमार झा का और आप सुन रहे थे नचारी। युवा मित्रों, तो हम बात कर रहे थे स्वच्छता की, गंदगी को दूर करने की, चारों तरफ के वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने की, और ये हम सबका दायित्व बनता है। हर कोई अपनी अगल बगल को स्वच्छ रखे तो पूरा भारत स्वच्छ हो जाएगा, सुंदर दिखेगा। हम जहाँ तहाँ कागज़ में कुछ खाकर फेंक देते हैं सड़क के किनारे, उससे गंदगी फैलती है। हम किसी सार्वजनिक जगह पर बैठकर अगर किसी पत्तल में या कागज़ में कुछ खाते हैं तो उसे डस्टबिन में जाकर फेंकते हैं, जहाँ वो फेंका जाता है, एक किनारे में जहाँ गंदगी रखी जाती है, जहाँ कूड़ा कचरा रखा जाता है, हम जहाँ तहाँ इसे ना फेंके। स्वच्छ भारत बनाना, स्वच्छ समाज बनाना, युवा मित्रों, हम युवाओं की बड़ी जिम्मेवारी है। युवा के कंधों पे पूरा देश है और हमारे युवा इसे बखूबी अपने दायित्व को निभा भी रहे हैं। युवा चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता है, फिर यह स्वच्छता कौन सी बड़ी बात है। बस इस पे ध्यान रखना है कि हमारा समाज, हमारा घर आंगन, हमारा दूरा दरवाज़ा चारों तरफ स्वच्छ वातावरण हो, चारों तरफ साफ सफाई दिखाई दे, कहीं भी गंदगी ना हो। हम सब इस बात पे ध्यान रखते हैं तो एक तरफ हम स्वस्थ रहेंगे, दूसरी तरफ वातावरण अच्छा होगा, सुंदर दिखेगा। तो युवा मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं और सफ़र की शुरुआत करते हैं कुछ फिल्मी गीतों से। यह पहला गीत हमने लिया है फिल्म एनिमल से, आवाज़ें राघव चतन और प्रीतम की है।

मित्रों, आइए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म सर्कस से। आवाज़ें पापुन और श्रेया घोषाल की है।

और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म बैड बॉय का ये गीत, आवाज हिमेश रेशमिया की है।

श्रोताओं, खेद है कि ये गीत आपको पूरा नहीं सुन पाए। इस गीत के साथ ही युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी के अंतर्गत कार्यक्रम तरुण कुसुम अब संपन्न होता है। अपने मित्र गोपाल को दें अनुमति। नमस्कार।

अभी आप तरुण कुसुम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। संध्या के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।

0: है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। IPL क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले इस सभा के शेष कार्यक्रमों के विषय में। अभी से थोड़ी देर बाद 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। संध्या 6:30 पर गाम घर कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन, और खेती गृहस्थी आप सुनते हैं संध्या 7 बजे। फिल्म संगीत कार्यक्रम का प्रसारण आप सुनेंगे इस सभा में संध्या 7:52 पर। और गीतों के रंग फिल्मी गीतों पर आधारित यह कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे। चर्चा का विषय है दिल्ली कैंसर रिले। यह कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात्रि 9:30 पर। लोकगीतों का विशेष कार्यक्रम लोक माधुरी आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। तो यह था हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले इस सभा के शेष कार्यक्रमों के विषय में संक्षिप्त जानकारी। अब एक नज़र कल यानी गुरुवार के कार्यक्रमों पर।

संभय स्वर में अभी आप ये देवी वंदना सुन रहे थे। रचना विद्यापति की थी और अब ये सुनते हैं शारदा सिन्हा के स्वर में ये विद्यापति की रचना।

यह स्वर था शारदा सिन्हा का। आइए अब सुनते हैं विनय कुमार झा के स्वर में विद्यापति की यह रचना नचारी।

0: इसके साथ ही विद्यापति गीतों का कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सौ प्रस्तुत संवाद, संवादक संघ हम छी कल्पना झा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अध्यक्षता में भेल कैबिनेटक बैसक में कुल 18 एजेंडा पर मोहर लगाओल गेल। प्रमुख एजेंडा में गृह विभागक आरक्षी शाखाक अंतर्गत राज्यक 5 नव जिला में पुलिस अधीक्षक ग्रामीणक पद के सृजनक निर्णय सम्मिलित अछि। ई 5 जिला अछि पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली आ सीवान। एहि जिला सभ के अपराध आ साम्प्रदायिक रूपे अत्यंत संवेदन शील जनाओल गेल अछि। श्री चौधरी कैबिनेटक बैसक में सरकारी कर्मचारी आ पेंशन भोगी सभक लेल महंगाई भत्ता बढ़ेबाक जनतब दैत जनौलनि जे 7वां वेतनमान वाला कर्मचारी आ पेंशन भोगी सभक महंगाई भत्ता 58% सँ बढ़ाकऽ 60% कऽ देल गेल अछि। इलेक्ट्रिक वाहन सभक बढ़ावा देबाक लेल सरकार एहि वाहन सभक खरीद पर सब्सिडी देबाक योजना बनौलक अछि। श्री चौधरी जनौलनि जे इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 अंतर्गत महिला लोकनि सहित आन वर्ग सबके सेहो DBT के माध्यमे प्रोत्साहन राशि देल जायत। एम्हर राज्य सरकार किशनगंज में CISF ट्रेनिंग सेंटरक लेल 110.12 एकड़ जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालय के निःशुल्क हस्तांतरित करबाक लेल स्वीकृति देलक अछि। उच्च शिक्षा के बढ़ावा देबाक लेल राज्यक महाविद्यालय सब में 132 नव पद के सृजनक सेहो मंजूरी भेटल अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्रदेशवासी सभ सँ ईंधनक बचतक लेल जरूरतहि पड़बा पर वाहनक उपयोग करबाक अपील कयलनि अछि। श्री चौधरी कहलनि जे ऊर्जा संकट के देखैत नागरिक सभ के ईंधनक

0: बचत करबाक चाही। ओ लोक सभ सँ इलेक्ट्रिक वाहनक खरीद आ एकर इस्तेमाल पर सेहो जोर देलनि। मुख्यमंत्री अपन कारकिर्द मे वाहनक संख्या न्यूनतम रखबाक निर्णय लेलनि अछि। राजस्व आ भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल कहलनि जे सभ राजस्व कर्मचारी अपन अपन हल्का मे सप्ताहक 5 दिन काज करताह। श्री जायसवाल अंचलाधिकारी सभ के जारी निर्देश मे कहलनि जे प्रतिदिन कार्यालय मे होमय वला बैसक के समाप्त कऽ राजस्व कर्मचारी लोकनि के अपन हल्का मे उपस्थिति सुनिश्चित कयल जाय। जनगणना 2027 पहिल चरण 2 मई सँ 31 मई धरि चलत। एकर अंतर्गत पहिल चरण मे मकान सूचीकरणक काज कयल जा रहल अछि। जनगणना कार्य निदेशालयक मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी सह निदेशक रंजीता आकाशवाणी समाचार सँ विशेष गपशप मे जनौलनि जे मकान सूचीकरणक अंतर्गत प्रगणक स्वगणना के दरमियान दर्ज गलत जनतब के संशोधित कऽ सकताह। ओ लोक सभ सँ एहि मध्य साइबर फ्रॉड के लऽ कऽ सतर्क रहबाक सेहो अपील कयलनि। राजधानी पटना, अररिया आ कटिहार सहित प्रदेशक 6 जिला सभ मे काल्हि ब्लैक आउट मॉक ड्रिलक आयोजन कयल जायत। मॉक ड्रिल के अंतर्गत काल्हि सांझ 7 बजे सँ 7:10 धरि पूर्व निर्धारित नागरिक सुरक्षा अभ्यासक अंतर्गत ब्लैक आउट कयल जायत। पटनाक जिलाधिकारी त्यागराजन SM जनौलनि जे एहि दरमियान आपातकालीन सेवा सभ के छोड़ि कऽ सभ सार्वजनिक लाइट बंद कऽ देल जायत। जिलाधिकारी लोक सभ सँ अपन घर, दोकान आ औद्योगिक प्रतिष्ठानक सभ लाइट सेहो बंद रखबाक अपील कयलनि। मौसम विभाग आई जमुई, बांका, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर आ सहरसा सहित कतेको जिला मे वर्षा आ वज्रपात के लऽ कऽ अलर्ट जारी कयलक अछि। एहि दरमियान धूल भरल अन्हर बिहारि के सेहो चेतावनी जारी कयल गेल अछि। मौसम विभाग जनौलक जे एहि वर्ष मानसूनक आगमन निर्धारित समय सँ पहिने होयबाक संभावना अछि। मौसम विज्ञान केन्द्र पटना अपन पूर्वानुमान मे जनौलक जे अगिला 24 घंटाक दरमियान राज्यक उत्तर पूर्व जिला मे तेज हवा 40-50 किलोमीटर प्रति घंटाक गति सँ चलि सकैत अछि। जदयूक राष्ट्रीय अध्यक्ष आ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आई सीतामढ़ी मे सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के आवास पर नेता आ समर्थक सभ सँ भेंट कयलनि। दरभंगा शहरक रामबाग किला गेट लग आई भोर चेन छिनबाक घटनाक विरोध कऽ रहल एक युवक के अपराधी सभ गोली मारि कऽ हत्या कऽ देलक। बेगूसराय जिलाक बखड़ी थाना अंतर्गत सोनमा गाम मे विवाह समारोहक दरमियान एक विस्फोट के घटना मे गोटेक आधा दर्जन लोक घायल भऽ गेलाह। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मिनिवेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन।

0: घर आँगन सुननिहार समस्त स्नेही श्रोता लोकनिक श्रोता बहिन लोकनिक लाल बहिनक नमस्कार संगे मुनि बहिन अहूँ के नमस्कार।
1: नमस्कार लाल बहिन संगे हमरो दिस सब श्रोता बहिन सब के नमस्कार आ कार्यक्रम घर आँगन में सब गोटे के स्वागत करे
0: घर आँगन कार्यक्रम लक हम सब अबे छी मुनि बहिन तो कतेक अपना सबके मन में गप सप रहिए जे आई सब बहिन सब भेंट घाट हैत घर आँगन में आ बहुत रास काजक गप करब ने
1: ओना तो अपना सब घर आँगन में सदिखन उजरायल रहे छी मुदा देख रहल छी आई काल्हि जे कि अपन जतेक बहिन सब छथिन ओ आत्मनिर्भर बनवा के लेल बड़ फुर्ती से अपन

0: और अंगना के सबटा काज जल्दी जल्दी
1: समेट
0: कऽ आ सब बहिन सबके देखै छियै पांच गो दस गो बैस कऽ अपन आगू के सोचै के लेल अपन पैर पर ठाढ़ हेबा के लेल दुपाई के उपार्जन करबा के लेल बैस कऽ खूब नीक सँ अपन रणनीति बनाबै छथि जे केना केना आगा बढ़बाक चाही।
1: हमरा तऽ पहिने भेल की जे ओहिना गप सब पर लेकिन जहन गेलहुँ तहन बड़े नीक लागल जे देखियौ एतेक हुनका मे ई जज्बा तऽ छनि जे धियापुता के हमर कोना आगू बढ़त पढ़ाई लिखाई दोसरा पर किया निर्भर रह ककरो हाथ आगू हाथ किया पसारब किया ने अपने कोनो सहायता समूह से सब बहिन के एक ठाम कऽ कऽ जुट जाय आ किछु किछु कमे कमे कऽ जिनका जतबा पाई छन वएह लगायब तऽ बहुत रास एहिसँ बहुत रास एहन योजना छै जाहिसँ हम ओकर लाभ उठा सकै छी।
0: आप देखब सब गाम मे टोला सब मे सब बहिन पांच गो दस टा बहिन सब ग्रुप बना लै छथिन समूह बना कऽ बीस टा के जे पार लागै आ ओहिमे सब बहिन सब साप्ताहिक रूप सँ जे जमा कम पैसा 20 रुपया 50 रुपया सँ लऽ कऽ
1: जतेक पार लागे
0: ओ जोड़ि कऽ सबकिछु जोड़ि कऽ जमा करै छथिन आ एक समय मे बुझू तऽ लोन ऋण ओहि के माध्यम सँ लऽ कऽ बहुत बेसी काज हुनका सबके एहिसँ होइ छनि आ धीरे धीरे बहुत कम
1: पैसा मे
0: ब्याज पर मे ओ चुका दै छथिन।
1: देखियौ मनी बहिन कहै छै बूंद बूंद सँ घैल भरैया कहै छै ने ई छै एक बेर अहाँ सोचबै जे हम एते पैसा जमा कऽ ली तऽ हाथ पर सदैत नहि रहै छै मुदा कने कने पैसा तऽ जमा कए सकै छी किछु कटौती कऽ कऽ आ बहिन सब तऽ बड़ साकांक्ष होइ छथि आ हुनका सबके ई बुझऽ आबि गेलनि हँ जे आइ हम अपन धियापुता के बाल बच्चा पे घर गृहस्थ के आगू कोना बढ़ायब हमर बच्चा ककरो सँ पाछू नहि रहै पढ़ाई लिखबा के खर्च हमरा कतौ कोनो कोताही नहि हुए तऽ देखियौ सब अपन पैर पर ठाड़ होबय चाहै छथि आ जे कोनो योजना होइ छै ओकर लाभ उठाबय चाहै छथि।
0: एकदम एकदम अपन बहिन सब जे छथिन से स्वयं सहायता समूह से जुड़ि कऽ आर्थिक आत्मनिर्भरता एहिमे बहिन अपन छोट छोट बचत के मासिक या साप्ताहिक जमा करै छथिन आ एहि बचत के बैंक सँ कम ब्याज पर मिलय वाला जे ऋण छै जेकि 3 से 6 मास बाद उपलब्ध भऽ सकैत अछि
1: ई जमा केला के बाद
0: स्वयं सहायता में जुड़ला के बाद आ ई ऋण जे छै से लोक अपन छोट व्यवसाय एहि से शुरू कऽ सकै छथिन जेना सिलाई भेल पशुपालन भेल मधुमाछी पालन एहन तरहक
1: रोजगार
0: शुरू कऽ कऽ आत्मनिर्भर बनि सकै छथिन।
1: एहि
0: काज जे शुरू करै छथिन तऽ आनो बहिन सबके रोजगार भेटैत अछि
1: देखै छथिन जे ओ बहिन जे एना ई केलखिन हँ तऽ ओहिसँ ने जुड़ि जाइ छथिन।
0: एकदम एकदम आब देखब अपन बहिन सब एहि दिस एकदम साकांक्ष छथि समूह के नाम पर बैंक खाता खुजला के बाद बैंक दिस से 3 साल तक के लिए लगभग 6 लाख तक के लोन भेट जाए आ लाल बहिन राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के तहत बहिन सबके व्यवसाय चलेबा के लेल प्रशिक्षण विपणन आ प्रबंधन के कौशल सिखाओल जाइत अछि।
1: ठाम ठाम कौशल सिखाएल जाइया जाहिमे कि हुनका लोकनि के ओ सीख लै छथि जहन कोनो हुनर जहन लोक सीख लैया तऽ ओ बेसी नीक होइ छै।
0: एकदम एकदम लाल बहिन जखन स्वयं सहायता समूहक 62 सँ अपन बहिन सब मे देखब जे एकदम एकता आत्मविश्वास आ नेतृत्व करबा के क्षमता ई सब जतेक गुण अछि सब बढ़ैत अछि देखब ओ सब ठाढ़ भऽ कऽ बाजि सकै छथिन।
1: ये मुनि बहिन देखियौ घर सँ जहने अहाँ बाहर निकलबै तऽ बहुत रास अहाँके देख कऽ सुनि कऽ सेहो ज्ञान होइ छै। कम पढ़ल लिखल हमर जे बहिन लोकनि छथि ओहो देख सुनि कऽ बहुत रास जानकारी हुनका भेटै छनि आ ओहिसँ हुनका आत्मबल भेटै छनि।
0: एकदम एकदम ई समूह जे बनैत अछि एहि समूह बना कऽ अपन बहिन सब अपन नाम पता आ बचत राशि के संगे एकटा रजिस्टर मेंटेन कऽ सकैत छथिन आ ओकरा राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर पंजीकृत करा सकैत छथिन।
1: अच्छा नाम पता लिख कऽ
0: एकदम एकदम एहिसँ कतेक लाभ अपन बहिन सबके भेटैत अछि लाल बहिन जे एकदम मोन खुश भऽ जाइत अछि देखब जे कि बहुत बहुत काज कऽ लै छथिन।
1: ई सबसँ बेसी तऽ ई भेलै जे एकटा असगरे नहि एहिसँ कतेक बहिन हमर जे बहिन के नहि बुझल छनि ओहो बुझि जाइ छथिन आ ओहो एहिसँ लाभान्वित भऽ जाइ छथि।
0: एकदम
1: देखियौ मोनी बहिन एहि तरहे जे हमर बहिन लोक
0: सहयोग के भावना देखब जे कि ई लाल बहिन छथिन ओ सोन बहिन छथिन सोन बहिन के जरूरत छै सब बहिन एकदम तत्पर भऽ कऽ तुरंत
1: किनको जे बेटी के ब्याह होइ छनि कि मुड़न की उपनयन से हम देखलियै जे बहिन के देखलियै कनी बहुत व्यग्र कहलखिन अहाँ सब क्या चिंता रहै हम सब अपन पाई लगा कऽ अहाँके दऽ देब अहाँ बारी बारी से चुका देब तऽ भेलै ने ई कतेक नीक गप भेलै तऽ देखियौ एहि तरहे आत्मबल विश्वास सोच सकारात्मक हेबाक चाही तऽ बहिन लोकनि कतौ पाछू नहि रहती सदैत आगू बढ़ती आ जहन कोनो काज करै छी मोनी बहिन तऽ गीत नाद सेहो ओहिमे बड़ सङ्ग दै छै।
0: एकदम एकदम
1: जहन मोन खुश रहत मोन प्रसन्न रहत

0: तनावमुक्त रहब तखने ने ई बैसार होइया कि कोनो बात सोचे छी त जहन दिमाग हमर सही काज करत तखने ने आ सही काज कखन करत जहन गीत संगीत सुनब मन प्रसन्न रहत
1: त चलू अपना सब गोटे सुनै छी महेश वाणी स्नेहा झाक स्वर में
0: त सुनी हमरा लोग

0: कतेक नीक लागल ई महेश्वानी लाल बहिन।
1: हाँ, समय स्वरमे सुने छलहुँ हैं। आ देखियौ, गीत नाद जहन होइ छै तऽ मोन प्रसन्न होइ छै, मुदा एखनके जे समय मुनि बहिन बहुत साकांत रहबाक समय, खास कऽ बहिन लोकनिके कहबनि जे अपन स्वास्थ्यपर निश्चित रूपसँ ध्यान देबाक चाही, किएक तऽ ओ घरके सबके तऽ देखै छथि नीकसँ, मुदा अपना बेरमे ओ सबटा चीज बिसरि जाइ छथिन जे हमरा समय पर हेबाक अइ कि नहि।
0: आब छोट छोट बच्चा जे रहै छथिन, हुनको सबके कनिक धियापुताके की छै, रौद रहै छै, गर्मी रहै छै, तऽ ठंडा पानि पी लै छथिन, आ ठंडा पानि जखने पीयब मोन खराब हैत। आब देखियौ ने, रौद एहन करा रहैत अछि,
1: बाहर निकलू तऽ मोन छटपटा जाइ छै,
0: आ मोन हैत कि ठंडा पानि पीबी, इच्छा होइ
1: छै, लेकिन मोनके मारऽ पड़ै छै। हम अहाँ तऽ बुझै छियै, मुदा नेना भुटका तऽ नहि बुझै छथि, तऽ ओहि लेल तऽ हमरा सबके कनिक ध्यान राखऽ
0: पड़त।
1: स्कूलसँ अबै छथि, 12:30 बजे छुट्टी होइए, तहन हुनका नहि ठंडा, कनि सुस्ता लेता, पंखामे कनि ठंडा जेता, तखन से हुनका पानि दियौ।
0: आ खेलके आबैत छथि तऽ ई नहि जे बस दौड़ जायब दुपहरियामे खेलायके, ओहो तऽ अपने सबके देखऽ पड़ैत अछि बहिन सबके।
1: देखियौ, ओना हमसब कहै छियनि मोबाइल सँ दूर रहू, तऽ कनि तऽ ओ सब खेलबे करता, मुदा 6 बजेके बाद तहन ठंडा बेर होइए तऽ कनि काल से खेल लेता। आ खान पान पर जेना एखन कहबे केलहुँ अहाँ, जँ बहिन सब केओ गोटा घरसँ बाहर निकलै छी तऽ छत्ता, पानिके बोतल ई कखनो नहि बिसरबाक चाही। आ ठंडा ठंडा चीज जेना छाँछ भेल, बेलक शरबत भेल, खीरा भेल, ककड़ी भेल, नेबो पानि, नारियल पानि, ई सब से खूब एखन उपयोग करबाक चाही।
0: एकदम रौदे आ

0: समय एहन अछि कि अपना सबके वएह सब चीज नीक लागैत अछि, समय के हिसाब से अपना सब चलै छी लाल बहिन,
1: स्वस्थ रहब तहन डॉक्टर लग नहि जाय पड़त,
0: एकदम एकदम स्वस्थ रहब। आ कार्यक्रम जे घर अंगना अछि अपना सबके ओहो समय से चलैत अछि, तऽ बुध दिन अछि आ प्रायोजित कार्यक्रम पारामेडिकल है पारस सुनबाक बेर भ गेल,
1: तऽ आब हमसब सुनै छी प्रायोजित कार्यक्रम पारामेडिकल है पारस।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: नमस्कार, राजेश बोल रहा हूँ एक बार फिर से। आज बुधवार का दिन है और आज के दिन आप सुनते हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम पैरामेडिकल है पारस। पैरामेडिकल है पारस लेकर आते हुए एक दशक 10 साल से ज्यादा हो गए और लगातार हम बुधवार के दिन आपके इसी रेडियो स्टेशन से इसी समय आपके घर आंगन में पहुंचते हैं और युवा साथियों से बातें करते हैं कि अगर हेल्थ के सेक्टर में जाना है तो आपको क्या करना चाहिए। सिर्फ हम बातों को रख देते हैं, मानना न मानना आपकी मर्जी होती है। बड़े बुजुर्गों से भी हम अपील करते हैं कि आप भी अपनी बात नहीं थोपिए, युवाओं को अपने बच्चों को निर्णय लेने दीजिए, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग प्रकृति का होता है और अलग अलग एम्बिशन लेकर आगे बढ़ना चाहता है। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। ये जो कार्यक्रम हम लेकर आते हैं इसको सुनते सुनते न जाने कितने युवा साथी आज अपने करियर में आगे बढ़ गए और अपने लिए एक मुकाम बना लिए हैं। हमें अच्छा लगता है जब वो कहते हैं कि पैरामेडिकल की वजह से ही हमने पैरामेडिकल के करियर को चुना और आज हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं या यहाँ अपना व्यवसाय कर रहे हैं। श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट पटना में है, पुराना बस स्टैंड जो है उसके जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने में है। हम ये कभी नहीं कहते कि आप आइए यहाँ एडमिशन ले लीजिए, ना ना ना, कभी नहीं। आपको संतुष्ट होना जरूरी है। हम ये जरूर कहते हैं कि संस्थानों को देखिए, समझिए, जानिए, परखिए, जाइए तो देखिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ के फैकल्टी हैं, ये संस्थान कहाँ से एफिलिएटेड है, रहने की क्या व्यवस्था है, सारी चीजों को। और सबसे बड़ी बात जो है दो चीजें, लाइब्रेरी, क्योंकि हेल्थ सेक्टर की किताबें बहुत महंगी होती हैं इसलिए एक रिच लाइब्रेरी का होना बहुत जरूरी है, और दूसरा प्रैक्टिकल, हाँ, कि क्या व्यवस्था है हेल्थ सेक्टर में। अगर जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर फिजियोथेरेपी है, पैरामेडिकल के और भी जो रेडियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, नर्सिंग है, अगर आप जो पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें प्रैक्टिकल की बहुत अहम भूमिका होती है। अगर आपको ऐसा लगे कि आप श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट आना चाहते हैं या कोई सवाल है तो नंबर हम दे रहे हैं 9162413233, 9162413233, और दूसरा नंबर है 9155558888। हमने कहा 9155558888, ये नंबर है, इस पर आप सवाल पूछ सकते हैं। आज भी हमारे साथ विशेषज्ञ बैठे हैं, 4 कोर्स के बारे में हम इनसे बात करेंगे। एक ऐसा कोर्स भी है जो मैट्रिक पास करने के बाद किया जा सकता है और महज 1 साल का कोर्स है, करके आप अपने लिए एक अच्छा मुकाम बना सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, सामाजिक सेवा दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर रंजन कुमार, ये हैं प्राचार्य, प्रिंसिपल हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में हैं, प्रोफेशन से ये MBBS और MS भी हैं, है ना। आज इनसे बात करेंगे, युवा साथियों आपके लिए छोटे छोटे कोर्सेज जो हैं, जैसे एक्सरे टेक्नोलॉजी है, OT टेक्नोलॉजी है, या फिर इसी तरीके से लैब टेक्नोलॉजी है, या फिर ड्रेसर का कोर्स है। इस सिलसिले में आज हम डॉक्टर रंजन से जानना चाहेंगे आपके लिए। तो सबसे पहले डॉक्टर रंजन, आपका स्वागत है हमारे आज के इस एपिसोड में।
4: नमस्ते राजेश बाबू, नमस्ते बच्चों।
3: सर, जैसा कि आपने सुना कि हम बच्चों के लिए आज आपसे छोटे छोटे कोर्स के बारे में एक एक करके जानकारियां लेंगे, सबसे पहले हम ड्रेसर से शुरुआत करते हैं कि ड्रेसर कोर्स के बारे में लोगों को बताइए थोड़ा।
4: ड्रेसर कोर्स 1 वर्ष का यहाँ हो रहा है,

0: के संस्थान में, और इसमें है कि मरीज की प्रारंभिक में जो ड्रेसिंग की जो कार्यक्रम किया जाता है, ड्रेसिंग जो किया जाता है वो कैसे किया जाए इसकी शिक्षा दी जाती है, और इसमें कोई सुई लगाने की बात है या मरहम पट्टी करने की बात है उसके विषय में बताया जाता है। ये भी एक अच्छा कोर्स है, और खास करके जहाँ चिकित्सक नहीं है देहात में वहाँ तो खास करके इन लोगों की पूरी आवश्यकता है। इसमें सर्विस भी लगती है और व्यक्तिगत रूप से भी चाहें तो अपना कार्यक्रम कर सकते हैं।
1: एक साल का कोर्स है ये?
0: जी हाँ, ये कोर्स है, एक साल का है।
1: कौन लोग कर सकते हैं इस कोर्स को?
0: मैट्रिक पास कम से कम होना चाहिए, अगर ऊपर की शिक्षा प्राप्त कर लिए हों तो वो भी आ सकते हैं। जैसे इंटर की कोई परीक्षा पास कर लिए हों तो उनके लिए भी बेहतर है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं कि मैट्रिक में रुकते नहीं है, इंटर तक चले ही जाते हैं, तो फिर लौट के आकर के भी ये कार्यक्रम वो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं।
1: डॉक्टर रंजन कुमार ने बहुत अच्छे तरीके से ड्रेसर कोर्स के बारे में बताया। आपके तरफ से लगातार ये फोन कॉल आते रहे हैं कि कोई छोटा कोर्स है, कम अवधि का, कम खर्च का अगर कोर्स है और जिससे हम कमाई अच्छी कर सकें, लोगों के बीच पहचान बन सके। तो डॉक्टर साहब ने देखिए आज आप लोगों को ड्रेसर कोर्स के बारे में जानकारी दी है, और जो लोग मैट्रिक पास हैं, सिर्फ मैट्रिक पास हैं, वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो कहीं इस तरीके से काम भी कर रहे हैं लेकिन डिग्री नहीं है उनके पास तो ये कोर्स कर लें, और सरकारी क्षेत्र में जब भी रोजगार की संभावना हुई, वैकेंसी आई तो आपको जरूर मौका मिलेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम चल रहा है पैरामेडिकल है पारस, जिसे हम लेकर आ रहे हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से। एक बार नंबर बता दें आप सबों को फिर से, नंबर है 9155558888 और दूसरा नंबर है 9162413233। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं एक बार फिर से डॉक्टर रंजन कुमार साहब के पास, जो प्राचार्य हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक्सरे टेक्नीशियन के बारे में जानकारी दें।
0: एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स 2 वर्ष का है
1: जी,
0: और इसमें कई एक्सरे का कार्यक्रम चल रहा होगा, वही डॉक्टर अगर एक्सरे संस्थान अगर स्थापित किए हुए हैं तो वहाँ भी इनकी आवश्यकता रहती है, और सरकार के यहाँ भी सरकारी संस्थान में भी जहाँ एक्सरे की व्यवस्था है वहाँ भी एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति होती है, और ये कक्षा में 2 वर्ष का एक कोर्स है तो इसमें नामांकन लिया जा सकता है, अभी नामांकन जारी है।
1: डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सरे टेक्नीशियन के बारे में जानकारी दी। ये छोटे छोटे कोर्स हैं जो आपके जीवन को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, आप इससे शुरुआत करके फिर आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जब आए थे उन्होंने बताया भी था कि बहुत सारे ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं जो डिप्लोमा से डिग्री में ब्रिज कोर्स करके आप जा सकते हैं और अपने करियर को आगे बना सकते हैं। बहरहाल एक बार फिर से नंबर हम बता रहे हैं 9155558888 और 9162413233। ढेर सारे फोन कॉल आए थे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी के बारे में, उसके बारे में भी आने वाले एपिसोड में जानकारी दी जाएगी। इसी नंबर पर डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से बात करके और जानकारियां आप ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आप MBBS MS हैं, आपका एक इतना लंबा अनुभव है हेल्थ सेक्टर में और आप अभी अनुभव को साझा कर रहे हैं आज के युवाओं के साथ श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जैसे एक प्रतिष्ठित संस्थान में आप प्राचार्य हैं। हाँ, हमारे सुनने वालों को OT असिस्टेंट के बारे में जानकारी दीजिए।
0: ऑपरेशन थिएटर में जो डॉक्टर काम करते हैं उनके सहयोग के लिए स्टाफ की आवश्यकता होती है
1: जी।
0: जो ट्रेंड स्टाफ होंगे तभी डॉक्टर को मदद कर सकते हैं
1: जी।
0: ये बहुत ही महत्वपूर्ण है काम, तो उनके लिए जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी अच्छे ढंग से तो फिर डॉक्टर को सहयोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनकी ट्रेनिंग लेना आवश्यकता है। तो यहाँ पर डिप्लोमा का भी कोर्स है 2 वर्ष का, और इसे आगे बढ़ करके बैचलर की भी डिग्री लिया जा सकता है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इसको करना चाहिए।
1: OT असिस्टेंट को करना चाहिए, आप रिकमेंड करते हैं
0: जी?
1: आप रिकमेंड करते हैं
0: जी? जी
1: जी रिकमेंड करते हैं। जब डॉक्टर साहब का रिकमेंडेशन हो गया और ये प्रिंसिपल भी हैं तो सोचिए कि ये कोर्स अपने आप में बहुत ही संपूर्ण कोर्स है, आप जरूर इसको आजमा सकते हैं अपने लाइफ में अपने एक बेहतर करियर के लिए। सर एक कोर्स और है जिसकी जानकारी हम चाहेंगे आपसे।

0: लैब टेक्नीशियन की जानकारी हम चाहेंगे सर।
1: राजेश बाबू
0: जी सर,
1: ये लैब टेक्नीशियन की बात आप पूछ रहे हैं।
0: हाँ।
1: तो जितना भी जांच होता है पैथोलॉजी का,
0: हाँ,
1: तो वो लैब टेक्नीशियन ही करते हैं डॉक्टर के सहयोग से। डॉक्टर तो करते ही हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण लैब टेक्नीशियन में जो काम सहयोगी रहते हैं टेक्नीशियन,
0: हाँ,
1: उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है और इन्हीं पर निर्भर रहता है पूरा कि आखिर काम कैसे हो। लेबोरेटरी का पूरा चीज उनको जानकारी में होना चाहिए, क्या क्या जाँच किया जाता है, कैसे जाँच किया जाता है, क्यों जाँच कराया जाता है पैथोलॉजी में, उसकी जानकारी यहाँ पर लेने के लिए आपको लैब टेक्नीशियन का कोर्स करना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा कोर्स है, अगर 2 वर्ष का करना चाहते हैं तो वो भी है। उसके अलावा अगर चाहें कि बैचलर की डिग्री अगर लेना चाहते हैं तो बैचलर की भी डिग्री बाद में आगे प्राप्त कर सकते हैं।
0: रोजगार, ये तो अपना
1: रोजगार परख है, ये रोजगार परख है। कहीं भी लेबोरेटरी चल रहा होगा, प्राइवेट में भी बहुत सारा लेबोरेटरी है, वहाँ लैब टेक्नीशियन की जरूरत वहाँ भी रहती है। वैसे सरकारी संस्थान में भी जहाँ लेबोरेटरी चालू है वहाँ लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति के लिए वैकेंसी भी निकलती है और सभी लड़के जाते हैं जिनको अच्छा डिग्री मिला हुआ है, तो उनको तो नौकरी निश्चित ही है।
0: अच्छा, डिप्लोमा और डिग्री जो किए हुए हैं बच्चे, वो तो अपना लैब भी खोल सकते हैं।
1: जी हाँ, अपने भी लैब खोल सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त है कि कोई डॉक्टर के साथ उसका संबंध होना चाहिए, दिखाना पड़ेगा कि हाँ डॉक्टर वहाँ रह रहे हैं, उनके गाइडेंस में काम मात्र इतना ही रहता है। वैसे ही वो अपना प्राइवेट भी काम शुरू कर सकते हैं, अपना लैब खोल सकते हैं, मात्र इतना ही रहता है कोई डॉक्टर का उसमें उनका सहयोग होना चाहिए, उनका गाइडेंस होना चाहिए, मिलना चाहिए, वैसे अपना चला सकते हैं बिल्कुल।
0: और डॉक्टर रंजन कुमार, ये चारों कोर्स जिसकी हमने अभी चर्चा की आपके साथ मिलकर और आपने बताया, अगर इन चारों कोर्स में से किसी भी को ऑप्ट किया जाए तो युवा आगे बढ़ सकता है अपने करियर में?
1: जी जी जी जी, हाँ? राजेश बाबू
0: आगे बढ़ सकता
1: जी
0: है।
1: जी जी,
0: थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद राजेश बाबू,
2: धन्यवाद हो गया अपने विशेषज्ञ का। और अब चलने की बारी आ गई है, चले इससे पहले हम पूछना चाहते हैं इस रेडियो कार्यक्रम पैरामेडिकल है पारस के माध्यम से, कैसा लगा आज का ये कार्यक्रम, जो 4 कोर्स बताए गए आपको और खास करके ड्रेसर का, ओटी असिस्टेंट का, इसके अलावा एक्सरे का, इसके अलावा पैथोलॉजी का, ये सारे कोर्सेज जो है ना बहुत वाइब्रेंट है। अगर जो आप इसको कर लेते हैं ना तो कहीं से भी रोजगार की समस्या नहीं होगी। और एक बात बताएं, सरकारी सेवा में जाने के लिए एक डिग्री का होना, चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्स हो, चाहे डिप्लोमा हो या बैचलर की डिग्री हो, इसका होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो वैकेंसी आ ही रही है, लगातार वैकेंसियां आ रही हैं, आपके पास अगर डिग्री रहेगा तो आप भर सकते हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए एक डिग्री का होना बहुत जरूरी है। हमारे एक्सपर्ट ने भी बहुत अच्छे से बताया, खुद इनका एक लंबा अनुभव है, MBBS और MS है और अभी प्राचार्य हैं, हाँ प्रिंसिपल हैं श्री राज, हाँ नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में। तो सब कुछ सही सही हम करना चाहते हैं, एक भरोसा है, आप भी कहते हैं कि आप पर एक भरोसा है, हम भी कहते हैं कि आप हमारे अपने हैं, आपके लिए एकदम सब कुछ सत्य सत्य आपको बताया जाएगा। और ये भी कहते हैं कि हम कोई बात नहीं करेंगे, डिसीजन आपको लेना होगा। हाँ, डिसीजन आपको लेना होगा, अपनी मर्जी के अनुसार से लेना होगा कि आप ANM कीजिएगा, GNM कीजिएगा, फिजियोथेरेपी कीजिएगा या ऑक्यूपेशनल थेरेपी कीजिएगा, आप पैथोलॉजी में जाइएगा या आप एक्सरे में जाइएगा। लेकिन अगर हम इतना कहते हैं कि अगर जो टेक्निकल पढ़ाई हेल्थ सेक्टर में आपने कर लिया ना, तो रोजगार मिलना बहुत आसान हो जाएगा, स्वरोजगार भी कर सकते हैं। चलते चलते हम एक बार नंबर फिर से बता देते हैं, 9162413233, 9162413233, और दूसरा नंबर 9155558888। तो बस आज हम थैंक यू कहते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जो पटना के जक्कनपुर इलाके में है, पुलिस स्टेशन के ठीक सामने है, कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम राजेश को लेकर आने का वर्षों से मौका दिया है और लोग इस पर अमल भी कर रहे हैं। तो मुलाकात होगी अब अगले बुधवार को आप सबों से, तब तक के लिए नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट।
4: तखन अपना सब सुनित छलू है लाल बहिन, प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस। आप देखियो, यह के सुनित सुनित समय से लक्ष्य आ गए कार्यक्रम घर आंगन के समेट बाक
5: बेर भ गए, तब घर आंगन के हम सब समेटी आ अही ठाम काज

0: खेती गृहस्थी पसारी। तो सबसे पहले तो कार्यक्रम खेती गृहस्थी में किसान भाई लोगन के स्वागत करे छियन आ नमस्कार करे छियन।
1: एकदम एकदम।
0: आ देखियो मोनी बहिन, हमर किसान भाई लोगन जे छथि से सदैत अपन काज में व्यस्त रहे छथि आ सब दिन आई की काज करबाक अइ तकर योजना बना कर अपन काज के ओ करे छथि आ सब दिन ई काज के पहिल कोन काज के प्राथमिकता देबाक चाहिए, कोन काज पहिने आवश्यक अछि ओहि काज पर ओ बेसी ध्यान दै छथि।
1: एकदम अही में किसान भाई से देखब जे कि सब किछु तऽ अछि मुदा माटिक सही माटिक रहनाइ बड़ आवश्यक अछि।
0: अहाँके कहब बहुत नीक अइ जे देखियौ जहन कोनो फसिल किसान भाई लगबै छथि तऽ सीधे जे लगा देता तऽ मेहनत आ पाइ दुनू बेकार भऽ जाइ छै। एहि लए जो सब माटिमे सबकिछु नहि होइए, कोन माटिमे कथीके कमी छै ई जखन हमरा सबके बुझल रहत तखन जे ओहिमे ओ फसिल लगायब तखन ओ फसल अहाँके स्वस्थ निरोग आ नीक उत्पादन।
1: एकदम एकदम।
0: जँ माटिमे ओकर कमी छै आ हम लगा देलियै बुझबामे हमरा नहि आयल तऽ कतबो मेहनत करबै तऽ फसलके उत्पादन बढ़िआँ नहि हैत, तऽ हमसब की कहबै एतेक मेहनत केलहुँ पूँजियो फसेलहुँ सब बेकार भऽ गेलै। ई तऽ नहि बुझबै जे हम माटिके जाँच तऽ नहि करेलहुँ।
1: तऽ माटिक जाँच करा ली, एकरा बाद जे ओकर कार्ड बनेतै से मृदा स्वास्थ्य कार्ड से बनवा ली। देखब अपना सब लाल बहिन जे मृदा स्वास्थ्य कार्ड में किसान भाई के माटिक सबटा जानकारी भेटैत अछि, कोन पोषक तत्व के कमी अछि, कोनक कोन पोषक तत्व बेसी अछि, एहि माटि पर कोन फसल के उपज बेसी हैत,
0: कोन उगेबाक छै एहिठाम,
1: कोन नहि एहिठाम हैत, सब चीज ओहिमे
0: लिख दै छै,
1: जानकारी भेटैत अछि ओहिमे अपना सबके। आ संगे माटिक स्वास्थ्य आ ओकर उर्वरता में सुधारक लेल की उपयुक्त मात्रा में पोषक तत्व सिर्फ देबाक चाही इहो सब चीज लिखल रहैत
0: अछि। सारे हमसब अपन काज करै छी जे कोन चीज मे कथी के कमी छै तऽ ओ पूरा जहन करै छी आ तहन जे लगबै छी फसिल नीक उत्पादन होइए। माटिक जहन माटि स्वस्थ रहत तखने ने उत्पादन बढ़िआँ हैत।
1: अइ माटिक गप जे केलहुँ तऽ अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 में मनाओल गेल आ ओही वर्ष देश भर में प्रत्येक कृषि माटि के पोषक स्थिति के आकलन करवा के लेल मृदा स्वास्थ्य कार्ड के शुरू भेल। एकदम एकदम। तब मृदा स्वास्थ्य कार्ड एकटा रिपोर्ट दैत अछि जे प्रत्येक किसान भाई के ओकर खेतक लेल देल जाइत अछि जे कि हुनकर खेत मे किसान भाई के जमीन के माटि में कोन पोषक तत्व के स्थिति कोन
0: अछि
1: सब के सलाह एमे देल जाइत अछि।
0: तें सब किसान भाई लोकन के सबसे पहिने तऽ मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना लेबाक चाहिए आ तै के बाद जे फसिल लगबै छथि तऽ ओकर जांच माटि के जांच करा कऽ तहन फसिल के लगेबाक चाही।
1: एहिमे आवश्यक पोषक तत्व के मात्रा के सुझाव देल जाइत अछि, संगे उर्वरक आ ओकर मात्रा के विषय में आ माटि के सुधारक के लेल आवश्यक की सब उपाय अछि एहि विषय में सेहो बताओल जाइत अछि। एहिसँ की होइ छै जे उपज जे छै से उत्तम भेटैत अछि अपन किसान भाई के आ नीक उपजा सँ नीक आमदनी होइत अछि।
0: बुझि जाइ छथि ने किसान भाई लोकनि जे हमरा ओहि अनुसारे अपन काज करै छथि। जेना कोनो माटिमे देखबै जे जिंक के कमी होइए तऽ ओकरा लेल ओ हेबाक चाही। कोनो मे एकटा गप तऽ सदैव ध्यान राखी जे जहन हमसब कोनो फसिल लगबै छी तऽ सबसँ पहिने ई ध्यान राखी जे रासायनिक जे खाद अइ ओकर उपयोग कम करी, इहो ध्यान राखी। किया तऽ जते भऽ सके से
1: जैविक खाद अपना सब
0: उपयोग बेसी सँ बेसी
1: बढ़ेबाक अछि आ एक दोसर के प्रेरित करू जे कि जैविक खाद के व्यवहार बेसी सँ बेसी करू।
0: एहिसँ हमर मने बेसी लंबा समय तक से माटिक उर्वरा शक्ति बनल रहत,
1: माटिक उर्वरा शक्ति बनल रहत, अपन सबके पर्यावरण सही
0: रहत, ठीक ठीक है कलम। आ जखन माटि स्वस्थ रहत तखन जँ हमसब रासायनिक खाद के उपयोग बेर बेर आ बेसी करै छी तऽ हमर जमीन बंजर भऽ जाइए, बंजर भजिया तहन ओहिमे किछु उत्पादन अहाँ लाख प्रयत्न करब अहाँके कोनो बढ़िआँ।
1: आ लाल बहिन, जैविक खाद के जे किसान भाई व्यवहार करै छथिन तऽ एहिसँ एकटा और बहुत नीक गप ई होइत अछि जे अपन देशक अर्थव्यवस्था बहुत नीक बनत।
0: देखियौ यहाँ कते नीक गप कहलियै, एहिमे खर्चा कम छै ने, मेहनत कम खर्चा कम आ लाभ बेसी, एहन काज किया नहि करब। आ जतेक मतलब की कहै छै ओकरा अनेरुआ सामान जकर कोनो मने उपयोगिता नहि अइ ओ सबसँ जैविक खाद बनि जाइए, किछु कीनऽ तऽ नहि पड़ैए। देखियौ ने तरकारिये के बनाओन होइए कि घास पात होइए पुआर होइए जतेक

0: अवांछित पदार्थ हो या सबके जमा कर दियो खाद में गला सरा दियो खाद बन जाए
1: अपन किसान भाई सब तो खूब निक से जानते छथिन आ निक से व्यवहार सेहो करे छथिन ई जे खाद के गप किनो जैविक खाद के किसान भाई सब गोटे के जानकारी छन आ सब एहि दिस देखब एकर व्यवहार कर रहल छथिन आ कहल जाय छै न जे कि अचानक से कोनो काज अपना सब नै न करे लागब त ई धीरे धीरे रासायनिक खाद के कम क के अपना सब जैविक खाद दिस बढ़त बढ़त एक दिन देखब जे कि 100% जैविक खाद पर अपना सब निर्भर भ जाए
0: ओकर स्वाद ओकर सेहो अपूर्व होइए आ स्वास्थ्य के लेल सेहो ओ फसिल जे होइए ओ फल हुए कि तरकारी हुए कि अनाज हुए ओ स्वास्थ्य के लेल सेहो बहुत नीक होइए
1: एकदम तो स्वास्थ्य के गप केलहुँ तऽ कनि अपना सब मानसिक स्वास्थ्य के गप सेहो कऽ लैत छी आ किसान भाई सबके मनोरंजन दिस लगै छी आ सुनैत छी ई गीत
0: तऽ सुनी हमरा लोकनि

0: अखन अपना सब सुनैत छलहुँ ई भगवती गीत समवेत स्वरमे। किसान भाई सबके नीक लागल हेतनि। आब इएह नीक लागैत लागैत समय भऽ गेल अछि कृषि गतिविधियाके, तऽ सुनैत छी अपना सब सविता कुमारीसँ कृषि गतिविधियाँ।
1: कृषि गतिविधि लऽ कऽ हम उपस्थित छी लाल बहिन। किसान भाई बहिन लोकनि, अहाँ लोकनिके वास्ते नव नव जानकारीके सङ्ग जलीय अर्थव्यवस्थाक आधार बनल मखान। मखान वैश्विक स्तर पर सुपर फूड के रूप में लोकप्रिय भऽ रहल अछि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग के मखाना एज अ सुपर फूड एंड अ बेसिस ऑफ एक्यूटी इकोनॉमी ऑफ बिहार विषय पर व्याख्यान के आयोजन कयल गेल, जाहि मे मुख्य वक्ता वनस्पति विज्ञानी सह पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विद्यानाथ झा कहलनि मखान बिहार के पहचान अछि। एतबे नहि, पहचान के संग संग राज्य के जलीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार सेहो बनि गेल अछि। प्रोफेसर झा कहलनि वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर मखान के मांग बड़ तेजी सँ बढ़ि रहल अछि, तैं एकर उत्पादन ओ व्यापार के आकार में सेहो लगातार बढ़ोतरी भऽ रहल अछि। मखाना उत्पादन के वैज्ञानिक प्रक्रिया, एकर औषधीय ओ पोषण संबंधी गुण ओ बिहार के आर्थिक विकास में एकर महत्वपूर्ण भूमिका पर विस्तार पूर्वक बतौलनि। ओ कहलनि जे वर्तमान समय में मखान वैश्विक स्तर पर सुपर फूड के रूप में बड़ तेजी सँ लोकप्रिय भऽ रहल अछि। एहिसँ बिहार के किसान ओ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के नव दिशा भेट सकैत अछि। मखान आधारित अर्थव्यवस्था के संभावना ओ एकर व्यापक महत्व के जनौलनि, जे मखान के खेती आब बिहार के बाहर सेहो होबय लागल अछि। मखान के आब निर्यात सेहो बड़ बढ़ि गेल अछि। मखान पोषण सँ भरपूर अछि। एकर खेती के संग संग माछक उत्पादन परस्पर लाभकारी होइत अछि। मखान के खेती में आब परंपरागत पद्धति के संग संग नव तकनीक वाला मशीन के प्रयोग आब सेहो होबय लागल अछि। एतबे नहि, एकर खेती में आब महिला लोकनि सेहो खूब नीक जकाँ अपन भूमिका के निर्वाहित करैत छथि। आब मखान रोजगार ओ आय के प्रमुख साधन बनि रहल अछि।

0: कहबाक तात्पर्य ई अछि जे किसान भाई बहिन लोकनि मखान के खेती कऽ कऽ खूब नीक जकाँ अपन जीवन यापन कऽ सकैत छथि। कारण मखाना उद्योग बिहार के अर्थव्यवस्था के नव दिशा देबाक क्षमता रखैत अछि। जँ एकर उत्पादन प्रसंस्करण ओ विपणन के आधुनिक तकनीक सँ जोड़ल जायत तऽ ई राज्य मे रोजगार ओ आय वृद्धि के बड़ पैघ स्रोत बनि सकैत अछि। स्नेही किसान भाई बहिन लोकनि, माछ पोसनिहार किसान भाई लोकनि के से ध्यान देबा योग्य किछु महत्वपूर्ण गप अछि जाहि पर ध्यान देब आवश्यक अछि। जेना मत्स्य बीज के परिवहन सदत ठंडा वातावरण में करी। मत्स्य बीज के व्यवसाय करय वाला किसान लोकनि अपन नर्सरी पोखरि के सुखा कऽ जोति कऽ ओहिमे 1,000 से 2,000 किलोग्राम गोबर, 50 किलोग्राम चून प्रति एकड़ के दर सँ छिड़काव कऽ तुरंत 1 फीट पानि पोखरि मे भरि दी आ 5 से 7 दिन बाद 5 फीट तालाब मे पानि भरि कऽ मत्स्य बीज यानी स्पॉन 20 लाख प्रति एकड़ के दर सँ संचयन करबा सँ 24 घंटा पहिने 0.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर सँ पोटासियम परमैंगनेट के छिड़काव कऽ पोखरि के संक्रमण मुक्त कऽ दी। एतबे नहि, नर्सरी पोखरि मे मत्स्य बीज निकासी सँ 1 दिन पहिने पूरक आहार के प्रयोग नहि करबाक चाही। बेसी बरखा होयबा पर बरखा के बाद 20 से 25 किलोग्राम चून प्रति एकड़ के दर सँ पोखरि मे घोरि कऽ छिड़काव करबाक चाही। पोखरि के पानि के रंग हरियर भेला पर मासिक तौर पर उपयोग होबय वाला चून और रासायनिक खाद के प्रयोग 15 दिन से 1 मास तक बंद कऽ देबाक चाही। पोखरि मे मत्स्य बीज फिंगरलिंग ईयरलिंग के संचयन के काज सदिखन पूर्वाहन यानी 8 से 12 बजे के बीच करबाक चाही। मत्स्य कृषक भाई बहिन लोकनि के बीच कीट के वितरण कयल गेल। जिला मत्स्य कार्यालय मे जिला के मत्स्य कृषक के बीच मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना अंतर्गत मत्स्य शिकार माही ओ मत्स्य विपणन कीट नाव ओ जल पैकेज वितरण योजना अंतर्गत फिशिंग उड्डयन बोर्ड पैकेज इत्यादि के वितरण के आयोजन कयल गेल। ओहिठाम उप मत्स्य निदेशक दरभंगा प्रक्षेत्र कुमार विमल प्रसाद ओ जिला मत्स्य पदाधिकारी अनुपम कुमार सेहो छलाह। बिहार मे किसान पंजीकरण के काज राज्यव्यापी स्तर पर विशेष अभियान शुरू कयल गेल अछि। किसान लोकनि के पंजीकरण डिजिटल रूप सँ कयल जायत। एकर मुख्य उद्देश्य किसान भाई बहिन लोकनि के एकटा यूनिक फार्मर आईडी प्रदान कयल जायत अछि। एहि संग आब आजुक कृषि विधि सम्पन्न होइत अछि। नमस्कार।
1: किसान भाई, अखन अपना सब सुनै छलहुँ कृषि गतिविधि, वाचन आ संकलन सविता कुमारी के छलनि। आब इएह के संगे किएक ने फिर मनोरंजन दिस अपना सब चली लाल बहिन।
0: हाँ, हाँ,
1: किसान भाई के सुनाबै छिन ई गीत
0: झूमर। तऽ हम लोग सुनी हमरा लोकनि ई झूमर।

0: खूब झुमा देलो लाल बहिन अपना सब किसान भाई के
1: झूमर सुनलो। आशा करै छी हमर किसान भाई लोकन खूब प्रसन्न भेल हेता, खूब नीक लागल हेतन। आइ के संग जन काजो नीक से चले छै खेती गृहस्थी के तो और मन प्रसन्न रहे छै।
0: आप देखियो अखन समय छै किसान भाई के जे कि आदि के हरद के मकई के इस सब के सही समय से बाव करथिन।
1: अच्छा एखन ओकर उचित बेर है त जे किसान भाई लोकन खेत के तैयारी खूब नीक
0: से क लेने छै
1: तो ओकर उन्नत प्रभेद के जल्दी से जल्दी लगा लै। आ देखियो मुनि बहिन अपना सब से जे किसान भाई लोकन माल जाल पशु पोसै छथि हुनका सेहो साकांक्ष रहबाक चाहिए। एखन जेना हम सब से ध्यान राखै छी अपन स्वास्थ्य पर तहिना पशु के एखन गर्मी कते अछि तऽ पशु के एखन से खूब भिनसरे से चरा कऽ लऽ अयबाक चाही, बीच रौद मे बाहर खुजल नहि रखबाक चाही से ध्यान राखी। आ साँझ मैं से सेहो खुल कर निकाल बाहर निकाली बीच दुपहरिया में ओकरा घरे में राखी
0: आ साफ स्वच्छ ठंडा पानी पीबे ला देत रही।
1: इत बहुत निक अहाँ गप कहलिए एकदम ठंडा पानी कल चला का से पानी देबाक चाहिए। ई नहीं जे कखनो के पानी जे गरमा गेले वो दो देबे वो बाजत नहीं मुदा पीत नहीं मुंह लगा कर छोड़ देत। तब पानी ठंडा आ पवित्र माने स्वच्छ पानी हेबाक चाही। आ खेनाइ जे दै छियै पशु के तऽ ओकर नादि के धो कऽ देबाक चाही। गर्मी छै ने ई नहि जे भोरके मे फेर दोबारा दऽ देबै तो महक जायत तो केना खायत।
0: साफ
1: सफाई के ध्यान सदैत रखबाक चाही।
0: आ अपनो सब के लाल बहिन आप कार्यक्रम खेती गृहस्थी में समय के ध्यान रखबाक चाही तऽ किसान भाई सब से चलबाक आज्ञा मांगै छी। नमस्कार।

अभी आप ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम गांव घर के अंतर्गत कार्यक्रम घर आंगन सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण पटना केंद्र से।

0: घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभवाणी,
1: आकाशवाणी।
4: और इस गीत के बाद
5: छाया गीत।

This is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सीवान में ग्रामीण एसपी के पद सृजन की मिली मंजूरी। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव से गहराते ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की जानकारी देते हुए बताया कि सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है।
1: राज्य के सरकारी सेवकों एवं पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता एवं राहत के दर में वृद्धि की गई। पंचम वेतनमान वाले में 474% से बढ़ाकर 483% महंगाई भत्ता कर दिया गया। षष्ठम के मामले में 257% के स्थान पर 262% और सप्तम वेतनमान के मामले में 58% के स्थान पर 60% महंगाई राहत का भुगतान की स्वीकृति दी गई। यह 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से लागू होगी।
0: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इन वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने की योजना बनाई है। श्री चौधरी ने बताया है कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के तहत महिलाओं समेत अन्य वर्गों को डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
2: परिवहन विभाग का एजेंडा था जिसमें मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना का गठन और उसके क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए कुल 110 करोड़ रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 की स्वीकृति दी गई अगले एजेंडा में।
0: इधर प्रदेश की सरकार ने किशनगंज में CISF ट्रेनिंग सेंटर के लिए 110.12 एकड़ जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालय को मुफ्त हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के महाविद्यालयों में 132 नए पदों के सृजन की मंजूरी भी मिली है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक स्तर पर गहराते ऊर्जा संकट की आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन की खपत कम करने और ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री के इस आह्वान के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत को लेकर ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया है कि देश में किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कोई कमी नहीं है। दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत के पास 60 दिनों का कच्चे तेल का भंडार, 60 दिनों की LNG तथा 45 दिनों का LPG भंडार उपलब्ध है।
3: किचन में इस्तेमाल होने वाली LPG सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू LPG उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: प्रधानमंत्री की अपील के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
4: मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कारकेड में वाहनों की संख्या न्यूनतम करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मंत्रीगण, निगम बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य, पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधियों से बिना अतिरिक्त वाहनों के सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से मेट्रो, बस, ऑटो और अन्य सार्वजनिक परिवहन के अधिकाधिक उपयोग का आग्रह किया है। राज्य सरकार के सभी विभागों को सरकारी

0: बैठकों और कॉन्फ्रेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सरकारी कैंटीनों में पाम ऑयल के कम इस्तेमाल, सरकारी एवं निजी कार्यालय में वर्क फ्रॉम होम संस्कृति को बढ़ावा देने तथा सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने की अपील भी की गई है। आकाशवाणी समाचार से मैं निधिश्री।
1: उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रधानमंत्री की पहल को स्वागत योग्य और प्रशंसनीय बताते हुए कहा कि बचत की मानसिकता विकसित करना समय की आवश्यकता है।
2: प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ बातें सलाह या सुझाव के तौर पर देश के नागरिकों को दी है वो न सिर्फ सराहनीय है बल्कि प्रशंसनीय है। लगभग 25% विदेशी मुद्रा जो खर्च होती है सरकार की वो पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर होती है, तो उन्होंने कहा है कि इसका खर्चा कम करिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोलियम उत्पादों को बचाने और एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने की अपील का प्रदेश में आम लोगों ने स्वागत कर सहयोग करने की बात कही है।
3: मैं राहुल कुमार मधेपुरा से। वैश्विक संकट के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए बयान का हम सभी समर्थन करते हैं। जिस प्रकार से तेल, पेट्रोल और गैस में किल्लत हुआ है वो वैश्विक स्तर पर है और उसका हम सभी कैसे सहयोग करके भारत को इस संकट से बचा सकते हैं।
4: मैं सुरेश शेखर शिवहर का निवासी हूँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आम जनता से अपील की है वह एक दूरदर्शी और सराहनीय पहल है। हम सभी नागरिकों को उनके इस सलाह का पालन करना चाहिए।
5: मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मान लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे भविष्य की बात उन्होंने की, इसलिए वो जो कहे हैं एकदम सही कहे हैं और इसको हम लोग को मानना चाहिए।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
6: इधर आइए, इधर
7: इधर।
6: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
8: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
7: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
8: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
7: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
8: शुभ वाणी,
7: लाभ वाणी,
8: आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा में 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक उत्तीर्ण हुए। 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई इस परीक्षा में 88.86% छात्र और 82.13% छात्राएं उत्तीर्ण हुई। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट DigiLocker और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। जनगणना 2027 का पहला चरण 2 मई से 31 मई तक चलेगा। इसके अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य किया जा रहा है। जनगणना कार्य निदेशालय की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी सह निदेशक रंजीता ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि मकान सूचीकरण के तहत

0: योजना को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी देते हुए कहा कि भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है।
1: भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामयिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है। कोल गैसिफिकेशन की स्कीम 37,500 करोड़ रुपीस का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: केंद्र सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सोने और चांदी पर 5% और प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। राजधानी पटना, अररिया और कटिहार समेत प्रदेश के 6 जिलों में कल ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉक ड्रिल के तहत कल शाम 7 बजे से 7:10 तक पूर्व निर्धारित नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत ब्लैकआउट किया जाएगा। पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन SM ने बताया कि इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सार्वजनिक लाइटें बंद कर दी जाएंगी। जिलाधिकारी ने लोगों से अपने घर, दुकान और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सभी लाइटें बंद रखने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जमुई, बांका, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर और सहरसा सहित कई जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान धूल भरी आंधी चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष मानसून का आगमन निर्धारित समय से पहले होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व जिलों में तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से चल सकती है, साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने की भी संभावना है।
2: दिनांक 14 मई राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री चिराग पासवान ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सूरजमुखी बीज के MSP में सबसे अधिक 622 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके अलावा कपास पर 557 रुपये, राम तिल पर 515 रुपये तथा तिल पर 500 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र में कल देर रात STF और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3 वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया गया। ये अपराधी किसी बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। अरवल जिले की अग्निशमन पदाधिकारी रश्मि की अध्यक्षता में 36 जगहों पर मॉक ड्रिल और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए। इस दौरान आग से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सीतामढ़ी में सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के आवास पर नेताओं और समर्थकों से मुलाकात की। श्री कुमार ने समर्थकों को संबोधित करते हुए पिछली सरकार पर काम न करने का आरोप लगाया। दरभंगा शहर के रामबाग किला घाट के पास आज सुबह चेन छिनते की घटना का विरोध कर रहे एक युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सीवान में ग्रामीण SP के पद सृजन की मिली मंजूरी। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव से गहराते ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी किया। और जनगणना में मकान सूचीकरण के तहत दर्ज गलत जानकारी को संशोधित किया जा सकता है। जनगणना निदेशक रंजीता ने साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने की अपील की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
3: हर घर की वाणी
2: आकाश

0: हर दिल की वाणी आकाशवाणी और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: और इस गीत के बाद

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है औरंगाबाद जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर।
1: औरंगाबाद जिले के बड़े भूभाग को सिंचित करने के उद्देश्य से निर्माणाधीन उत्तर कोयल नहर परियोजना के काम में तेजी आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है। बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत प्रत्येक सप्ताह जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अलावा निर्माण कंपनी के अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उत्तर कोयल नहर परियोजना झारखंड से प्रारंभ होकर जिले के नबीनगर, कुटुम्बा, देव, मदनपुर और औरंगाबाद प्रखंडों से होकर गया जिले में प्रवेश करती है। परियोजना कार्य पूरा होने से 1,11,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इसका अधिकांश हिस्सा बिहार में है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने उत्तर कोयल नहर के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और किसानों के हित में इसे जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने उत्तर कोयल नहर परियोजना के कार्यों में तेजी आने पर प्रसन्नता जाहिर की है और कहा है कि इस परियोजना के पूरा होने से औरंगाबाद तथा गया जिले के असिंचित इलाके में खुशहाली आएगी। भारत की जनगणना 2027 का कार्य जिले में सुचारू रूप से चल रहा है। जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा जनगणना कार्य की लगातार समीक्षा कर रही हैं। इसके तहत 2 मई से जिले में हाउस टू हाउस सर्वे का कार्य चल रहा है। इस कार्य में जिले के लगभग 5,031 प्रगणक सक्रिय रूप से अपने अपने क्षेत्र में घर घर जाकर सर्वेक्षण कर रहे हैं। मकान का चिन्हांकन और सूचीकरण का कार्य 31 मई तक चलेगा। जिलाधिकारी ने जनगणना कार्य में जिले वासियों से सहयोग करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत पर औरंगाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह, विधायक त्रिविक्रम नारायण सिंह, पार्टी के महामंत्री सतीश कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह ने इस सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सरकार के जनहित में किए गए कार्यों को दिया है। आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए जिले में पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने बताया कि 19 मई 2026 को जिले के सभी प्रखंडों के चुने हुए पंचायत में सहयोग शिविर का आयोजन होगा। शिविर में आम नागरिकों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर उनका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जिले के लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल में भगवान बुद्ध की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। लॉर्ड बुद्धा शैक्षिक विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय कुमार ने इसका उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि आज के प्रति स्पर्धात्मक और तनावपूर्ण युग में बुद्ध के सत्य, अहिंसा और करुणा के सिद्धांत पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक अम्बरीश राहुल ने मासिक अपराध गोष्ठी में पुलिस अधिकारियों को अपराध के मामलों में तत्परता से कार्य करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। 9 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार, परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अरुण कुमार और पुलिस अधीक्षक अम्बरीश राहुल ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। इसमें 2015 मामलों का निस्तारण किया गया, 5 करोड़ से अधिक का समझौता भी किया गया। जिले के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान सच्चिदानंद सिन्हा महाविद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा ने कहा कि सफलता की एकमात्र पूंजी कठिन परिश्रम और ईमानदारी है। भारतीय रेल और एनटीपीसी लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम भारतीय रेल बिजली कंपनी की नबीनगर स्थित परियोजना के विस्तार की पहल की गई है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक रंजन देहुरी ने बताया कि यहां 800 मेगावाट बिजली उत्पादन की एक इकाई स्थापित किए जाने को लेकर प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू की गई।

0: है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना विस्तार से भारतीय रेल बिजली कंपनी की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 1800 मेगावाट हो जाएगी। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा, रेड क्रॉस के अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह, ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर रवि रंजन ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर रेड क्रॉस के अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह ने कहा कि रक्तदान जीवन दान के समान है। एनटीपीसी लिमिटेड की नवी नगर परियोजना में इस वर्ष आयोजित होने वाले बालिका सशक्तिकरण अभियान की तैयारी शुरू हो गई है। कंपनी के कार्यकारी निदेशक एलके बेहरा ने बताया कि अभियान के तहत 60 बालिकाओं का चयन कर 12वीं कक्षा तक उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की ओर से बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मदनपुर में पत्तल निर्माण उद्योग की स्थापना की गई है। इसका उद्घाटन नाबार्ड के उप महाप्रबंधक सुशील कुमार सिंह और जिला विकास प्रबंधक कृष्ण कुमार ओझा ने संयुक्त रूप से किया।
1: अभी आप सुन रहे थे औरंगाबाद जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता कमल किशोर।
2: आकाशवाणी पटना से
3: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

यह आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की फिल्म नीलकमल में। गीत रचना साहिर लुधियानवी की और धुन रवि की। अगला गीत फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से, स्वर लता मंगेशकर का है, क्षमा करेंगे, स्वर आशा भोसले का है, गीत रचना अनजान की और धुन कल्याण जी आनंद जी की।

यह आवाज़ थी आशा भोसले की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म हाथी मेरे साथी से। गीत रचना आनंद बख्शी की और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है मैथिली साहित्यिक कार्यक्रम सिंगरहार

श्रोतागण नमस्कार। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहारक आजुक अंकक संग हम राकेश चंद्र नंदन। बंधु लोकनि, अपन कार्यक्रम सिंगरहारक माध्यमे जखन हमरा लोकनि एक संग जुड़ी गेल छी तऽ एखन सँ लऽ कऽ अगिला आधा घंटा धरि बहुत रास गप करब हमसभ।

गप अपन साहित्य केर, गप अपन समाज ओ सामाजिक परंपरा सभक, संगहि गप करब अपन कर्तव्यक सेहो, कारण सबसँ ऊपर स्थान रहैत छैक कर्तव्य केर। हम सब गोटे जखन अपन अपन कर्तव्यक निर्वहन करैत छी तऽ जे किछु मोनमे ठानि लैत छी ओ सफलतापूर्वक पूरा भऽ जाइत अछि। तैं कर्तव्यक महत्व सदिखन देल गेल अछि। बंधु लोकनि, भरि दिनक तिक्ख रौद वातावरणमे गर्मीक एहन संचार केने रहैत अछि जे दिनमे काज करब कठिन बुझना जाइत अछि। ओतहि पिहाड़ि पानि सेहो हमरा सबके ओहि रूपे फिरिसान केने अछि। कहबाक भाव ई जे अनिश्चितताक वातावरण चारू दिस बनल देखना जाइत अछि। देखू ने, आमक समय अछि मुदा गाछीक गाछी सुन्न देखना जाइत अछि। पहिने एहि समयमे गाछी सबमे बेस चहल पहल देखाइत छल, मुदा आब ने ओ गाछी सब बचल अछि आ ने कोनो चहल पहल। मौसम केर एहन स्थिति जे जखन पानि केर आवश्यकता नहि रहैत अछि तऽ मूसलाधार वर्षा भऽ जाइत अछि आ जखन खेती बाड़ीक बेर अबैत अछि तऽ वर्षा होइते नहि अछि। गाम गाम पानिक अभाव हमरा लोकनिकेँ देखना जाइत अछि। एते दिन हमसब ग्लोबल वार्मिंग केर जे गप सुनैत छलहुँ ओ आब सद्य अपना सोझा हमसब देखि रहल छी। प्रकृति केर संग हमसब नहि चलि पाबि रहल छी, ई नीक जकाँ बुझना जा रहल अछि। एहना स्थितिमे हमरा सबकेँ अपन स्थिति परिस्थिति ओ बात विचार व्यवहार एहिदा चिंतन करऽ पड़त, अपन कर्तव्यक निर्वहन निष्ठापूर्वक करऽ पड़त हमरा सबकेँ। प्रकृति संग जे हमरा लोकनिक संबंध, ओकरा आर मजगूत बनबऽ पड़त, तखने जाकऽ हमसब आगा आबऽ वला समयमे सुख शांतिक कल्पना कऽ सकैत छी। बंधु लोकनि, गपक क्रम तऽ अहिना चलिते रहत, मुदा आउ ने पहिने संवेद स्वरमे ई भगवती गीत सुनि लैत छी।

सम्वेद स्वरमे एखन हमरा लोकनि भगवती गीत सुनि रहल छलहुँ। बंधु लोकनि, हमसभ जखन कखनो अपन भाषा साहित्यक गप करैत छी तऽ हमरा सभकेँ 101 विद्वान लोकनिक स्मरण भऽ अबैत अछि। आजुक समयमे हमर सभक मैथिली भाषा साहित्य जाहि स्थान पर अछि ओकरा दिशा देबामे ओहि विद्वान लोकनिक बेस योगदान रहलनि अछि। एहने एक गोट सुविख्यात भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर सुभद्र झाक आइ पुण्यतिथि छनि। आजके दिन माने 13 मई 2020 हिनक निधन काशी में भेल छलनि। डॉक्टर सुभद्र झा मैथिली के भाषा वैज्ञानिक आधार प्रदान कयलनि। विद्यापतिक विशुद्ध पदावली सभक अंग्रेजी में व्याख्या क ओकर महत्व के विश्व स्तर धरि पहुँचेलनि। साहित्य अकादमी दिल्ली जखन मैथिली के अपन स्वीकृत भाषा सूची में सम्मिलित करबाक औचित्य जनबा लेल 5 गोट सुविख्यात विद्वान लोकनिक समिति गठित केने छल, ताहि में 1 गोट विद्वान डॉक्टर सुभद्र झा सेहो छलाह। मैथिली 1 गोट स्वतंत्र सुविकसित ओ श्रेष्ठ भाषा अछि। एहि प्रसंग हिनक अकाट्य तर्क सब सुनि कऽ ई समिति मैथिली साहित्यकेँ अकादमिक स्वीकृत भाषा सूची में सम्मिलित करबाक लेल अपन अनुशंसा केने छल। आउ ने हिनकहि पर केन्द्रित साहित्य साधक केर पूर्व प्रसारित अंक सुनैत छी। संकलन आ वाचन छनि डॉक्टर अमलेन्दु शेखर।

0: ठकर।
1: साहित्य साधक, नमस्कार। आई एह श्रृंखला में साहित्य साधक डॉक्टर सुभद्र झा। मैथिलीक जाहि विशाल साहित्य महल सँ हमरा लोकनि अभिभूत होइत रहै छी, जाहि महल केर सौंदर्य ओकर विशालता हमरा लोकनिकेँ गौरवान्वित करैत रहैत अछि, तकर शिलान्यासकर्ता लोकनिमे अनेकशः साहित्य साधक लोकनिकेर अवदान रहलनि अछि। एहिमे बहुत रास एहनो साहित्य साधक रहलाह जे कविशेखराचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुर, महाकवि विद्यापति, मनबोध ओ चंदा झा जकाँ अपन अवदान देलनि। एहिमे प्रमुख थिकाह आधुनिक मैथिली केर प्रख्यात भाषा शास्त्री डॉक्टर सुभद्र झा। मैथिली भाषा केर राष्ट्रीय स्तर पर संस्थापन में हिनको प्रमुख अवदान रहलनि। ई अपन सारस्वत साधना सँ मैथिली भाषा के तेहन निस्सन आधारशिला उपलब्ध करौलनि जे मैथिली के राष्ट्रीय स्तर पर अनेक उपलब्धि केर हेतु बनल। हिनक योगदानक जोड़ लगाएब सम्प्रति असंभव सन लगैत अछि। एहि अवदान में डॉक्टर सुभद्र झा केर सर्वप्रमुख भूमिका तो छनि है। हमरा लोकनि डॉक्टर सुभद्र झा केर ओहि वरिष्ठ छात्र मित्र केर सेहो ऋणी छी जे हिनकर नाम विज्ञान संकायक बदला कला संकाय में लिखबा देलथिन। डॉक्टर सुभद्र झा केर इच्छा छलनि जे चिकित्सक बनथी। मैट्रिक केर बाद एहि लेल सन्नद्ध सेहो भेला। विज्ञान विषय पढ़बा लेल कलकत्ता विदा भेला, मुदा एकटा वरिष्ठ छात्र हिनका बुझौलथिन आ हुनकर बात मानि कऽ ई मुजफ्फरपुर पहुँचि गेलाह। ओ छात्र हिनकर नामांकन विज्ञान संकाय में करयबाक बात कहि कऽ मुजफ्फरपुर लऽ गेल छलथिन, मुदा नाम लिखबा देलथिन कला संकाय में। एकरे सुपरिणाम भेल जे हमरा लोकनिकेँ मैथिलीक प्रख्यात भाषाविद डॉक्टर सुभद्र झा प्राप्त भऽ सकलाह। से तेहन भाषाविद जे मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, इटैलिक सहित 14 गोट देशी विदेशी भाषा में निष्णात छलाह। डॉक्टर सुभद्र झा के जन्म भेल छलनि मधुबनी जिलाक नागदह गाम में 9 जुलाई 1909 के। पिता छलथिन कुंजी झा आ माय कर नाम छलनि निरंजना देवी। पिता के मार्ग निर्देशन में प्राच्य विद्या संस्कृत सँ प्राथमिक शिक्षा आरंभ कयलनि। पछाति हिनकर नाम मधुबनी केर वाटसन स्कूल में लिखाओल गेल, जतऽ सँ मैट्रिक केर परीक्षा उत्तीर्ण भेला। एकर बाद GBB कॉलेज मुजफ्फरपुर सँ अंतर स्नातक केर डिग्री प्राप्त कयलनि। एकर बाद ओ कलकत्ता चलि गेला, जतऽ स्कॉटिश चर्च कॉलेज सँ 1932 में संस्कृत प्रतिष्ठा में स्नातक केर उपाधि प्राप्त कयलनि। पछाति 1934 में वेद विषय केर संग संस्कृत में MA आ 1935 में हिंदी में MA केर डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय सँ प्राप्त कयलनि। ओहिठाम प्रख्यात भाषाविद डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी सन शिक्षक केर सान्निध्य हिनका प्राप्त भेलनि। 1936 में बिहार संस्कृत एसोसिएशन सँ साहित्याचार्य केर उपाधि सेहो डॉक्टर सुभद्र झा प्राप्त कयलनि। 1936 में पटना विश्वविद्यालय सँ रिसर्च फेलोशिप प्राप्त भेलनि। मैथिली भाषाक उद्भव ओ विकास पर केंद्रित शोध कार्य में ई सन्नद्ध भेला आ 1940 में कलकत्ता जाकर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के सान्निध्य में शोध कार्य संपन्न कयलनि, जाहि पर हिनका डिलेट केर उपाधि प्राप्त भेलनि। 1946 में हिनका पटना विश्वविद्यालय सँ रिसर्च फेलोशिप प्राप्त भेलनि आ एहि अवधि में पेरिस केर यात्रा कयलनि आ एहि क्रम में स्कॉटलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली आदि केर परिभ्रमण सेहो कयलनि, जाहि पर

यात्रा साहित्य सेहो लिखलनि। डॉक्टर सुभद्र झा केर जे शोध से पछाति द फॉर्मेशन ऑफ द मैथिली लैंग्वेज केर नाम सँ प्रकाशित भेल आ यह पोथी आधुनिक काल में मैथिली भाषा के एकटा निस्सन आधार प्रदान कैलक। यह पोथी डॉक्टर सुभद्र झा के भाषा शास्त्री के रूप में संस्थापित सेहो कैलकनि। प्रख्यात भाषाविद डॉक्टर सुभद्र झा मैथिली में अपन यात्रा साहित्य प्रवास जीवन के संग यात्रा प्रकरण शतक के नाम सँ द्विगोट पोथी केर सर्जन कैलनि। एकरा अतिरिक्त नातिक पत्रक उत्तर नामक पोथी सेहो लिखलनि जाहि पर हिनका 1980 में साहित्य अकादमी केर पुरस्कार प्राप्त भेलनि। मैथिली में व्याकरण मीमांसा नाम सँ सेहो पोथी प्रकाशित छनि। अंग्रेजी में मैथिली विषयक पोथी छनि द फॉर्मेशन ऑफ द मैथिली लैंग्वेज आ विद्यापति गीत संग्रह और सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति। एकरा अतिरिक्त स्टडीज इन द पेम्पलाद संहिता ऑफ अथर्ववेद सरल संस्कृत शिक्षण विषय केर पाठ्यग्रंथ सेहो ई लिखलनि। मैथिली में विद्यापति गीत संग्रह आ मैथिली वृत्त ओ परिधि नाम केर पोथी हिनका संपादन में प्रकाशित भेल। एकरा अतिरिक्त प्रत्यंगिरा सूक्त अथर्ववेद पेम्पलाद संहिता आनंद भट्टोपाध्याय केर कर्ण संहिता भाष्य गीताक भास्कर भाष्य महाराज महेश ठाकुर केर कृति सर्वदेश वृत्तांत अथवा अकबरनामा धर्मशास्त्रीय व्यवस्था संग्रह शेष कृष्णकृत प्राकृत चंद्रिका हिनकर संपादित कृति छनि। डॉक्टर सुभद्र झा अनेक पोथी केर अनुवाद सेहो कैलनि। अंग्रेजी में जर्मन सँ रिचार्ड पेशेल केर पोथी ए ग्रामर ऑफ द प्राकृत लैंग्वेज केर अनुवाद कैलनि। एम विंटरनीज केर पोथी ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर एच विंडिस केर हिस्ट्री ऑफ संस्कृत फाइलोलॉजी चीनी भाषा सँ लुइस द्वारा फ्रेंच में कैल गेल अनुवाद केर अभिधर्म कोश केर अंग्रेजी में अनुवाद चीनी भाषा सँ अंग्रेजी में अनुवाद बुद्धदेव। एकरा अतिरिक्त संस्कृत में रिचार्ड पिशेल कृत प्राकृत व्याकरण तकरा संग जर्मन कर कृति अल्तन दिशे ग्रामेटिक एकर अनुवाद कैलनि। किछु एहनो अनुवाद कैलनि जे अप्रकाशित रहि गेल। विद्वान लोकनि कर मानव छनि जे बाणभट्ट कृत कादम्बरी केर ई अनुवाद कयने छलाह। तहिना प्रसिद्ध ग्रंथ वर्ड्स केर मैथिली में अनुवाद कैलनि। कबीरक मैथिली पद केर संग्रह कैलनि। लक्ष्मीनाथ गोसाई केर पदावलीक संग्रह कैलनि। मैथिली भाषाक धातुकोश आ निरंजना शब्दकोश केर सर्जन सेहो कऽ रहल छलाह मुदा ई सब अप्रकाशित रहि गेल। डॉक्टर सुभद्र झा आजीविका लेल अनेक ठाम रहलाह। सबसँ पहिने एम के मॉडल स्कूल कलकत्ता में 1940 में हेडमास्टर भेला। 1941 में सीएम कॉलेज दरभंगा में हिंदी विभाग में व्याख्याता नियुक्त कैल गेला। तीने बरखक बाद पटना कॉलेज में व्याख्याता हेबाक कारणे 1944 में पटना चली गेला। 1946 सँ 1951 धरि फेलोशिप कर क्रम में विदेश भ्रमण सेहो कैलनि। 1951 में वाराणसी गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज में पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में सेहो काज कैलनि। 1958 जखन वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित भेल तो पुस्तकालय अध्यक्ष के संगहि व्याख्याता के रूप में सेहो कार्य कैलनि। ओहिठाम सँ 1967 में सेवानिवृत्त भऽ गेला। 1968 में योगदा संस्कृत कॉलेज रांची केर प्रिंसिपल भेला। 1977-78 में पटना विश्वविद्यालय में एक बरखक लेल रिसर्च प्रोफेसर सेहो रहला। 1982 में सदाशिव केंद्रीय संस्कृत विद्यालय पूरी उड़ीसा में शास्त्र चूड़ामणि योजना केर अंतर्गत सेहो रहला। डॉक्टर सुभद्र झा के साहित्य अकादमी चेतना समिति मैथिली अकादमी संकल्प लोक आदि विभिन्न

0: संस्था सम्मानित कऽ कऽ गौरवान्वित भेल। मैथिली भाषाकर मानकीकरण आ वर्तनी निर्धारणमे सेहो डॉक्टर सुभद्र झा अपन योगदान देलनि। एहि महामानवकर महाप्रयाण 13 मई 2000 के भऽ गेलनि। एकरा संगहि सम्पन्न होइत अछि साहित्य साधक श्रृंखला केर आजुक ई कड़ी। आलेख एवं वाचन अमलेंदु शेखर पाठक केर, प्रस्तुतकर्ता अमरनाथ प्रसाद। साहित्य साधक।
1: साहित्य साधक डॉक्टर सुभद्र झा, पूर्व प्रसारित ई अंक अखन हमरा लोकनि सुनि रहल छलहुँ। आब देखू ने, बेर भऽ गेल अछि जे हमरा सबके शब्द विमर्श दिस सेहो चलऽ पड़त, मुदा ओहिसँ पहिने ई महेशवाणी।

बंधु लोकनि, स्नेहा झा गौल एहि महेशवाणीक बाद अब हमरा लोकनि चली शब्द विमर्श दिस। ओहिसँ पहिने अपने लोकनिसँ एक गोट आग्रह ई जे कार्यक्रम सिंगरहार अपने सबकेँ केहन लगैत अछि, अपने लोकनिक जे प्रतिक्रिया, अपने लोकनिक जे सुझाव, ओकर प्रतीक्षा रहैत अछि हमरा सबकेँ। सत्य कही तऽ अपने लोकनिक सुझाव हमर सभक सम्बल बनैत रहल अछि। जँ अपने लोकनि पत्र द्वारा अपन प्रतिक्रिया आकि सुझाव प्रेषित करऽ चाहैत छी, एहि लेल हमर सभक पता अछि कार्यक्रम सिंगरहार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिनकोड अछि 8460004। बंधु लोकनि, अपने लोकनि आकाशवाणी दरभंगा @gmail.com पर सेहो ईमेल द्वारा हमरा सबकेँ अपन प्रतिक्रिया आकि सुझाव पठा सकैत छी। आ आब शब्द विमर्श। एकटा शब्द अछि दुबर, दुर्बल, कमजोर वा पातर लेल हमरा लोकनि दुबर शब्द केर प्रयोग करैत रहलहुँ अछि। आ दुरि भेल बिगड़ल वा नष्ट। तहिना हमरा लोकनि कहै छी दुरि करब मने बिगाड़ब, आ दुरि जायब भेल बेकहल भऽ जायब, नष्ट भऽ जायब। तऽ एहि शब्द विमर्शक संग आब हमरा यानी राकेश चंद्र नंदनकेँ चलबाक आज्ञा देल जाओ। नमस्कार।

अभी आप मैथिली साहित्य कार्यक्रम सिंगरहार सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: 5 लोगों को गिरफ्तार किया, देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में

0: आशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। CBI ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। CBI इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: कि ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect।
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
1: चार यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत, जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा

0: हमें पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉक्टर सरमा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
1: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95.70 रुपए पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees.

0: स्पीड डबल लाइन प्रोजेक्ट से मुतालिक काबीना का फैसला मुल्क के रेलवे जदीदकारी के सफर में एक अहम संग मील है। वजीर आजम ने कहा कि काबीना से मंजूर शुदा जमीन की सतह के करीब के कोयले और लिग्नाइट से गैस की पैदावार के प्रोजेक्टों को फरोग देने की स्कीम तवानाई की यकीनी फराहमी को मजीद मुस्तहकम करेगी, सरमायाकारी में इजाफा करेगी और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करेगी। मरकजी तहकीकती ब्यूरो यानी CBI ने नीट UG 2026 इम्तहान से मुतालिक मुबैना बेजाबतगियों और पेपर लीक के मामले में 5 मुलजिम अफराद को गिरफ्तार किया है। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 5 मुलजिमों में से 3 का ताल्लुक जयपुर, 1 गुरुग्राम और 1 का ताल्लुक नासिक से है। फिलहाल मुतादिद दिगर मुश्तबा अफराद की जांच की जा रही है। एजेंसी ने आज मुल्क भर के मुख्तलिफ मकामात पर भी तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। तलाशी और गिरफ्तारी के दौरान एजेंसी ने मोबाइल फोन समेत मुतादिद काबिल एतराज अशिया और इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त किए हैं। एजेंसी राजस्थान के खसूसी ऑपरेशंस ग्रुप के साथ भी मिलकर कार्रवाई कर रही है, जिसने मामले की शुरुआती जांच की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम ने मोदी जुमे को मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में आज शाम मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने मुतला किया कि अपने दौरे के पहले मरहले के तहत जनाब मोदी जुमे के रोज UAE पहुंचेंगे, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात के साथ साथ खास तौर से तवानाई के सिलसिले में इश्तराक समेत बाहमी मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई तक 5 मुल्कों का दौरा करेंगे, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात और 4 यूरोपीय ममालिक नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल हैं। वजीर आजम के दौरे का आगाज 15 मई से होगा, जिसके तहत वो UAE पहुंचेंगे, जहां वो UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात के साथ साथ तवानाई में इश्तराक पर बाहमी बातचीत करेंगे।
0: जनाब जॉर्ज ने कहा कि अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत वजीर आजम उसी दिन नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इस दौरान जनाब मोदी शाह विलियम अलेक्जेंडर और मलका मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे और वजीर आजम रॉब जेटन्स के साथ बातचीत करेंगे। अपने दौरे के तीसरे मरहले के तहत जनाब मोदी इतवार के रोज स्वीडन पहुंचेंगे। वजीर आजम ने मोदी की ईंधन के इस्तेमाल में कमी की अपील का गहरा असर देखने में आया है, जिसके नतीजे में पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम किया जा रहा है। वजीर आजम ने इसकी नज़ीर कायम करते हुए खुद अपने काफिले का हजम नुमाया तौर पर कम किया, जिसके बाद BJP के कई वज़रा आला और दीगर रहनुमाओं ने भी इस तर्ज अमल को अपनाया। वजीर आजम की अपील को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सरकारी गाड़ियों के काफिले में फौरी तौर पर 50% कमी करने की हिदायत दी है। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने भी ऐलान किया कि वो अपने काफिले में कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे और अपने वजीरों को भी ऐसा करने को कहा है। उन्होंने आवाम को सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की भी तरगीब दी। मगरबी एशिया में जारी तनाज़े के दौरान वजीर आजम ने इतवार को आवाम से पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कमी लाने और ज़रे मुबादला की बचत के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की थी। वजीर आजम ने मोदी ने हरियाणा के बल्दियाती इंतखाबात में BJP की कामयाबी पर आवाम का शुक्रिया अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस जीत ने एक बार फिर वाजे कर दिया है कि आवाम ने अपना मुसलसल एतमाद जाहिर किया है। वजीर आजम ने कहा कि यह कामयाबी इस बात की भी अलामत है कि हरियाणा के आवाम रियासत की डबल इंजन हुकूमत पर भरपूर एतमाद रखते हैं। वजीर आजम ने उन तमाम पार्टी कारकुनों को मुबारकबाद दी जिन्होंने BJP की इस कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फलों, सब्जियों, तिलहन, गजाई अजनास, मवेशियों के इस्तेमाल की अशिया और दिगर लाजमी मसनूआत की बैन रियासती नकल व हरकत पर तमाम पाबंदियां हटा दी हैं। साबिक TMC हुकूमत ने इन अशिया पर पाबंदी आयद की थी। इख्तदार में आने से कबल BJP ने किसानों को पाबंदियां हटाने की यकीन दहानी कराई थी। दूसरी तरफ एक अहम कदम उठाते हुए मगरबी बंगाल हुकूमत ने टीचरों, म्यूनिसपैलिटी और कोऑपरेटिव की भर्ती में हुए

0: चर्चा का विषय है।
1: दुनिया की नब्ज पश्चिमी एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक, आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है।

0: जब हॉर्मुज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व सीएमडी ओएनजीसी के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
2: थैंक्स आनंद।
0: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। जो इस समय हॉर्मुज की मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
2: आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मुज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मुज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी एक का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
0: पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
3: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें, जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरते, तेल की खपत कम करें खाने के तेल, तो इससे देश और हमारी शहर दोनों को लाभ होगा।
0: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी एसपीआर की भी चर्चा होती है और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये 3 सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त है?
1: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील

0: अर्थव्यवस्था है जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है। और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहाँ खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे। और उसका भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है, क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है, ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और हम इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको SPRs बोलते हैं, वो हैं लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि वह हमने जो है कहीं ना कहीं से हम तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पे पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है।
1: जी
0: और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं
1: जी
0: और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, ईरान, इनके लिए आवश्यक होता है भारत से अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहां सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है। तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक हम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पर जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
3: जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी

है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का। तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है, और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन, अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए, बिकॉज कोल के

0: अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए, बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई। बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट, तो आपको ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है वो एक पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा। इनफैक्ट उससे ये होगा, आपको दोनों एक टाइमली एनर्जी भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ के लिए, जो इंडिया अगेन हैज कमिटेड टू कंफॉर्म विद द ग्लोबल कमिटमेंट्स टू फॉर ए क्लीन एनवायरनमेंट, तो उसको भी अचीव करने में एक सहायता मिलेगी। तो इंडिया को एक्चुअली चाहे वो बायोफ्यूल हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो जो पोटेंशियल सीबीजी का हो, वो सब कुछ हार्नेस करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी आवश्यकताएं आज ही बहुत बड़ी हैं और आगे आने वाले दिनों में, जबकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 25 से 30 ट्रिलियन इकोनॉमी जो कि 6 गुना के बराबर होती है आज के स्तर से, तो उसके लिए ये सब तरह के साधन, और यदि डोमेस्टिक है तो ये सोने पे सुहागे की तरह है।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कोयला गैसीकरण आपके लिए अगर नई चीज है तो ये होता क्या है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है, और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामयिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं, और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है। और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
3: कि हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला, कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है, इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में भी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है, और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका भी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है, लेकिन ये है कि देश उस

0: तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जो सबसे जरूरत चीज यह है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हर एक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत। साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पर, विश्व की अर्थव्यवस्था पर, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है, एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध है जैसे क्वाड के अंदर है उसको, साथ में इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है, आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय रही रहने वाला है, उस सबका यूज करा जा रहा है जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए। जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, और भारत तो उन गिने चुने देशों में है खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में जहां अभी तक सप्लाई का डिसरप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा ये मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो हम देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है, तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है। और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करी है खुले प्लेटफॉर्म पर, प्रधानमंत्री की ब्रेन स्टॉर्मिंग और संवाद यह है दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं खुल के, जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या है और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए, उनके विचार जो है वो आम आदमी से साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल, और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड as India is to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by strong policy frameworks and a significant financial outlay.
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिमी एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहाँ जाना है और 2070 तक कहाँ जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूँ कि बहुत जरूरी है, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है,

0: उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनबीसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसके यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन के सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है, या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है। ऑफ कोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद लेट से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए। और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती हैं। तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाई चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सकें। तो
1: जी
0: और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगा।
1: जी
0: तो मैं
1: बिल्कुल
0: सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ।
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की, और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
2: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाइड डिस्ट्रप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है। परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
3: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध है और लॉन्ग टर्म संबंध है, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं या ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है। लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों को हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपए की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता आता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रख के चलना है। लेकिन साथ साथ मुझे

0: लगता है आवश्यक हमारे लिए यह है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है, उत्पादन है, उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको यह भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो प्रगति है, जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते, और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था को, और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है, और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में। एक नया वेस्ट एशिया बनेगा ये जब भी युद्ध समाप्त होता है, ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा, तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा, और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। तो मुझे लगता है युद्ध तो है, लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है, और हमारे इतने अच्छे संबंध हैं तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है, तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट है तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा, हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो, या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो, लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उभरेंगे बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यू जॉन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीतों का विशेष कार्यक्रम लोक माधुरी।

कार्यक्रम लोक माधुरी में आप सबों का स्वागत है। आज के इस अंक के साथ मैं हूं दीपक कुमार झा। श्रोताओं, गीत संगीत के विभिन्न हिस्सों की अगर बात करें तो उसमें से एक आता है कीर्तन करने की विधा। कहीं कहीं पर इसे हम एक परंपरा के रूप में भी देखते हैं। कीर्तन संगीतमय पूजन या सामूहिक भक्ति का स्वरूप है, जो बंगाल के एक विशेष संप्रदाय में प्रचलित था, अभी भी है। ईश्वर उपासना की संगीत नृत्य समन्वित एक विशेष प्रणाली को कीर्तन कहा जाता है। इसके प्रवर्तक देवर्षि नारद कहे जाते हैं। कीर्तन के माध्यम से ही प्रहलाद, अजामिल आदि ने परम पद प्राप्त किया था। मीराबाई, नरसिंह मेहता, तुकाराम आदि संत भी इसी परंपरा के अनुयायी थे। इसमें अगर गायन की बात करें तो आमतौर पर कीर्तन में एकल गायक द्वारा एक छंद गाया जाता है, जिसे उसके बाद संपूर्ण समूह तालवाद्यों के साथ दोहराता है। कई बार गीत के स्थान पर धार्मिक कविताओं का भी पाठ होता है। भगवान के नाम की भी पुनरावृत्ति या नृत्य होती है। कीर्तन के गीतों में अक्सर मानव आत्मा और ईश्वर के संबंधों का वर्णन, विष्णु के अवतार कृष्ण और उनकी प्रेमिका राधा के संबंधों, महादेव के गुणों, उनके वंदना, देवी के गीतों आदि को वर्णित किया जाता है। कीर्तन संध्या कई घंटों तक चल सकती है, जिसमें उसमें शामिल होने पर कई बार धार्मिक आनंदातिरेक की अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से स्थानीय लोगों द्वारा ढोलक, झाल, मृदंग, करताल, कंसी आदि वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। आइए सुनते हैं एक लोकगीत। कलाकार हैं अरविंद कुमार झा।

कीर्तन में विकास तथा रूप की अगर बात करें तो कीर्तन को पूजा के स्वरूप के रूप में 15वीं 16वीं शताब्दी में बंगाल के रहस्यवादी चैतन्य महाप्रभु ने लोकप्रिय बनाया, जो ईश्वर के अधिक प्रत्यक्ष भावनात्मक अनुभव का लगातार प्रयास करते रहे, ऐसा सुनने को आता है। कीर्तन का विकास मुख्य रूप से ईश्वर को रिझाने के लिए किया गया। कीर्तन का संकेत बंगाल के पाल नरेशों के समय से ही मिलता है, किंतु इसका चरम विकास महाप्रभु चैतन्य के समय में हुआ। कृष्ण नाम के आधार बनकर मृदंग अथवा करताल के ताल पर भक्तिपूर्ण गीतों के गायन के साथ भावोन्मत्त होकर नाचना इसकी विशेषता है। 15वीं सदी में कीर्तन की अनेक पद्धतियों के संयोग से गंगा नारायण चक्रवर्ती ने इस रूप को विकसित किया और इसमें चंडीदास और विद्यापति के पदों का विशेष महत्व था। कीर्तन के अन्य दो उल्लेखनीय रूप हैं रेणेती और मंदरणी। बंगाल में इन कीर्तन स्वरूपों से ही असम के मणिपुरी नृत्य और मिथिला के कीर्तनिया नाटक का विकास हुआ है। श्रोताओं, कार्यक्रम में

उस समय के जो घटनाक्रम थे, इन सबों को मिलाकर भक्तिपूर्ण गीतों के गायन के साथ भावोन्मत्त होकर इसे गाया जाता है। इसमें ईश्वर के अधिक प्रत्यक्ष भावनात्मक अनुभव का लगातार लोग प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि कीर्तन के माध्यम से किस तरह से वो अपने इष्ट देवता के नजदीक जा सकें, उनका सानिध्य पा सकें और एक भावनात्मक जो जुड़ाव है इस कीर्तन के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। मिथिला की अगर बात की जाए तो जब किसी के यहां कोई शुभ कार्य हो, किसी ने कोई मन्नत कर रखा हो, सत्यनारायण भगवान की पूजा हो, कोई पर्व त्योहार हो या फिर ऐसे ही अवसरों पर कीर्तन का आयोजन किया जाता है। प्रायः समाज के लोग इसमें साथ देते हैं, लगभग सभी के सभी, और मिलजुल कर यह आयोजन संपन्न कराया जाता है। इसमें कोई किसी भी भेदभाव को मिटाकर समाज के लोग आपस में एकजुट होते हैं और जो धार्मिक अनुष्ठान या जो भी कार्य किसी के घर पे हो रहा होता है उसे संपन्न करवाते हैं और इसी क्रम में कीर्तन में भी सारे लोग एक साथ बैठकर आनंद लेते हैं और गाते बजाते हैं। आइए सुनते हैं एक और लोकगीत। कलाकार हैं कल्याणी सिन्हा और सहेली।

कीर्तन संगीतमय पूजन या सामूहिक भक्ति का स्वरूप है जो संपूर्ण भारत में प्रचलित है। विशेषतः कृष्ण नाम को आधार बनाकर या राधा के नाम को आधार बनाकर या

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में अब सुनते हैं एक महादेव को समर्पित गीत नचारी। कलाकार हैं शारदा सिन्हा।

श्रोताओं, शारदा सिन्हा के गाये इस नचारी के साथ ही लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक माधुरी अब यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के लिए निर्माण और वाचन था दीपक कुमार झा का, प्रस्तुतकर्ता थे विनीत कुमार ठाकुर और संयोजन था अमरनाथ प्रसाद का। नमस्कार, शुभ रात्रि।

लोक माधुरी। अभी आप लोक गीतों का ये विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया है।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम गीतों के रंग।

लेकर आपके बीच आए हैं वो है परदेशी। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिल्म दाग द फायर से, आवाजें उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की है, गीत रचना समीर की और धुन राजेश रोशन की।

ये आवाज़ें थीं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की फिल्म दाग में। गीत रचना समीर की थी और धुन राजेश रोशन की। आइए अब सुनते हैं अनवर की आवाज़ में फिल्म हम हैं लाजवाब का ये गीत।

ये आवाज़ थी अनवर की फिल्म हम हैं लाजवाब में। आइए आप सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म गुमराह का ये गीत, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने और धुन तैयार की है रवि ने।

ये स्वर था आशा भोसले का फिल्म गुमराह में। साहिल लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा था रवि ने। आइए आप सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बरसात का ये गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

ये आवाज़ थी लता मंगेशकर की फिल्म मेरे हमसफर में। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को अब फिल्म जब जब फूल खिले में।

0: इस गीत के साथ ही गीतों के रंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीस का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है,

0: और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera Semi-High-Speed Double Line Project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support